मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैसाख मास की 26वीं तिथि तदनुसार 16 मई सन 2026 5:57 होने को हैं। प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने

0: मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले समूह स्वर में सुनते हैं चंद्रदेव सिंह की ये मातृवंदना।

अभी आपने सुना हेमा देसाई के स्वर में मीराबाई का यह भक्ति पद। लीजिए अब सुनिए नंदिनी शरण के स्वर में यह भक्ति पद।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्रीमती निशा रहाट गांवकर का है।
1: मनुष्य का जीवन भी दैनिक उपयोग में आने वाले सिक्के जैसा है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के भी दो पहलू होते हैं, जिनका नाम है सुख और दुख। रोजमर्रा के जीवन को चलाने वाले भौतिक सिक्के के पहलू इंसान के लिए कोई मायने शायद नहीं रखते, क्योंकि वो उसके मूल्य के अनुरूप उसे खर्च करता जाता है। इस सिक्के के पहलू का महत्व खेलों में टॉस करते समय बहुत अधिक होता है। बाकी समय में मनुष्य शायद चित और पट का विचार ही नहीं करता, परंतु जीवन के सिक्के के जो दो पहलू हैं, सुख और दुख, उसमें से वो सुख को ही चाहता है, दुख को वो गले लगाना नहीं चाहता। आज इस 21वीं सदी का मनुष्य भौतिक सुखों को इतना भोगना चाहता है कि उसे ऐसे लगता है ताउम्र यही स्थिति बनी रहे, ताकि दुख उसे कभी छू भी न सके। इसे पाने की लालसा दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है, और सारे प्रयासों के बाद जब ये सुख सुविधा उसे प्राप्त नहीं होती तो वो निराश और उदास हो जाता है। जब हमने सोचा कि वो दुख से इतना क्यों दूर भागता है, क्यों घबराता है, तो हमें उत्तर मिला, समाधान का नितांत अभाव ही मनुष्य की इस अवदशा या सोच का मुख्य कारण है। जिसमें समाधान नहीं है वो हमेशा पाने की चाह में दुखी ही रहेगा, कभी सुखी हो ही नहीं सकता। पुराने समय का इतिहास साक्षी है कि हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, फकीर सभी में समाधान समाया था, तभी तो वे सुख का जीवन जीते थे और हमें भी जीने की कला सिखाते थे। कबीरदास जी का ही उदाहरण ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि वे कितने अधिक समाधानी थे। वे ईश्वर से मांगते समय कहते थे, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुम समाए,

0: मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तात्पर्य ये कि उनकी इस याचना में कहीं भी लालच या लोभ नहीं दिखता था। समस्या का समाधान ही समस्या को दूर करने का उपाय है। दूसरी तरफ अपनी वाणी में फक्कड़ कबीर ने ही ललकारा है। वे लालची मनुष्य से सीधी भाषा में बात करते हुए कहते हैं, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख वीरानी चूपड़ी मत ललचाए जीव। मतलब ये भी कि हमारे पास जो भी रूखा सूखा उपलब्ध है हम उसे स्वीकार करें, किसी अच्छे व्यंजन की चाह में हम भूखे ही रह जाएंगे, हमारा पेट ही नहीं भरेगा। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने से कम संसाधन वालों पर गौर करना चाहिए। कई लोग इस दुनिया में हमसे भी बदतर जीवन जी रहे हैं, जब उसे देखेंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा कि मालिक ने हमें जो कुछ दिया है वो ठीक ही है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने से उच्च वर्ग के रहन सहन की ओर जाएंगे तो ताउम्र दुख ही पाएंगे। एक बार की घटना है, एक दुखी व्यक्ति अपना दुखड़ा सुनाने एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए बोला, महात्मन, मैं जानना चाहता हूं कि ईश्वर ने मेरे ही भाग्य में इतना अपार दुख क्यों लिखा कि मैंने आज तक सुख देखा ही नहीं। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम अपने सारे दुखों का ब्यौरा एक कागज पर उतार लाओ और कल मुझसे मिलो। उस व्यक्ति ने महात्मा के कहे अनुसार अपना पूरा दुख सिलसिलेवार कागज पर उतारा और महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने उस व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि उस कक्ष में जाओ, वहां जो दुखों का अंबार लगा है उससे मिलान करो कि किसका दुख कम है किसका ज्यादा। उस व्यक्ति ने पूरा कमरा छाट डाला और यह पाया कि सारे कागज और चिट्ठियां जिन दुखों से भरी थीं, उस व्यक्ति का दुख उनके सामने नहीं के बराबर था। व्यक्ति समझ गया कि महात्मा से जो शिकायत उसने की है वो सही नहीं है। महात्मा बोले, अब तुम्हारा समाधान हो गया कि परमात्मा ने तुम्हारे ही नहीं अनेक लोगों के जीवन में दुख लिखा है, इसे मिटाने के लिए समाधान आवश्यक है।
1: चिंतन। अभी आप सुन रहे थे आलेख श्रीमती निशा रहाट गांवकर का था। मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम तथा वनवासियों से हृदय स्पर्शी स्नेह प्राप्त हुआ। ग्राम वधुओं ने सीता जी के चरण छूकर उनकी मंगल कामना की, उन्हें आशीष दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है उनका सुहाग बना रहे, वे पार्वती की भांति पति का प्रेम प्राप्त करें और वन से लौटते हुए इसी मार्ग से जाएं। लक्ष्मण ने जब विनीत भाव से आगे का मार्ग पूछा तो ग्रामवासियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। कर्म की गति कोई नहीं जान सका है, ऐसा मानकर वनवासियों ने उन्हें सुगम मार्ग बता दिया। स्नेह सिक्त वचन से श्री राम ने उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया। लौटते हुए स्त्री पुरुषों को ये विषाद है कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं। यदि उसे इन्हें वनवास ही देना था तो व्यर्थ ही भोग विलास के साधन बनाए। व्यथित ग्रामवासी विधाता की करनी का विश्लेषण करते हैं। किसी को लगता है कि ये ब्रह्मा के बनाए न होकर अपने आप प्रकट हुए हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा इनका अनुपम रूप देखकर इन पर मुक्त हो गया होगा और इन्हीं की छवि में स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा, किंतु बहुत यत्न करके भी अपनी रचना को इन जैसा सुंदर नहीं बना सका होगा, तो ईर्ष्यावश इन्हें वन

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। इसके संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। मुख्य गायक स्वर वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर का था। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा में कृषि में युवाओं की भूमिका की जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बीएस राजपूत।
1: महत्वपूर्ण अंग है देश का। मैं अपने देश के सभी जो युवा हैं, युवती हैं, उनसे आह्वान करना चाहता हूं। कृषि में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। हम लोगों को देखना है कि कृषि में ज्यादा से ज्यादा अवसरों का लाभ लें। कृषि बहुत बड़ा विस्तृत, अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, तो कृषि में स्टेट लेवल पर, और जैसे कि आज अगर जो है कोई भी युवा है वो चाहे जो है कृषि क्षेत्र में उसको डिग्री या डिप्लोमा हो या ना हो, वो कृषि में रोजगार के अवसर देख सकते हैं। आप अगर बात करते हैं कि ऐसे फुल टाइम रोजगार और पार्ट टाइम रोजगार, दोनों ही जो है रोजगार कृषि में उपलब्ध है। गांव के स्तर से लेकर जो शहरी क्षेत्रों तक कृषि का रोजगार में असीम संभावना है। ऐसे फसलों का उत्पादन है, चाहे दलहन तिलहन, चाहे आपके धान में फसलें हैं, या जो है बात करें दूसरी तो उद्यानिकी फसलें हैं। उद्यानिकी फसलों में फल है, फूल है, सब्जियां हैं, और फल एवं सब्जी परिरक्षण है। इसके बाद जो तीसरा जो विषय आता है वो जो है डेयरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस है, जिसमें कि बहुत ज्यादा संभावना है। खेती का एक आधारभूत स्तंभ है। बिना जो है पशुपालन के खेती संभव नहीं है, और बिना खेती के पशुपालन संभव नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है लाइव स्टॉक।

0: में आप अगर बात करेंगे तो डेयरी व्यवसाय एक बहुत बड़ा कैश नगदी का व्यवसाय है। इसके बाद बात करते हैं तो अपन मुर्गी पालन एक दूसरा व्यवसाय है। इसी के साथ साथ जो बकरी पालन है वो तीसरा व्यवसाय है। इसी के साथ साथ छोटे छोटे जो पक्षी है उनका भी जो है जैसे बटेर पालन है, अन्य दूसरे जो है व्यवसाय है वो उसमें भी काफी संभावना है। इसके बाद बात आती है मधुमक्खी पालन, इसमें भी बहुत सारी संभावना है। ये तो बात हो गई उत्पादन से संबंधित कृषि में। अगर कोई बात करता है जो है वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग, तो वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग में जाते हैं तो सबसे पहले जो बीज का व्यवसाय है सीड इंडस्ट्रीज, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जो है कृषि में। इसी के साथ साथ वैल्यू एडिशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो बहुत बड़ा विषय है। इसमें अगर अपन सब्जी फल इनका अगर जो है वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं तो इसमें भी अपार संभावना है। इसी के साथ साथ अगर आपको फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण में अगर जो है संभावना देखना है तो आप किसी भी दलहनी या तिलहन से संबंधित या धान्य फसलों से संबंधित चावल का इंडस्ट्री है, चावल मिल है, या जो आटा उद्योग मिल है, या आप मक्के का पोहा है, का तेल है, चाहे आप सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, और अन्य तेल भी जो है इनका भी व्यवसाय चालू कर सकते हैं। कोई नव युवा लोग हैं वो कंसल्टेंसी के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। एक मछली पालन बहुत बड़ा व्यवसाय है एग्रीकल्चर में ही, नर्सरी का व्यवसाय भी है, और लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग आप एजेंट कमीशन एजेंट का काम कर सकते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर का काम कर सकते हैं। अनेक बहुत सारी संभावना है। मैं जानता हूं कि जितनी संभावना एग्रीकल्चर में है उतनी संभावना किसी अन्य सेक्टर में नहीं है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है।
1: कृषि चर्चा में युवाओं की भूमि कृषि में युवाओं की भूमिका की जानकारी दे रहे थे डॉक्टर बीएस राजपूत। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2026 का समय होगा रात 10 बजे। इसमें आप सुनेंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का ख्याल गायन। रात 9:30 पर प्रसारित होगा चित्र साहित्य पत्रिका चित्र भारती। और स्पोर्ट्स सेशन का समय होगा रात 8:30 पर। इन कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 11:40 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिएगा दादरा गायन। कलाकार होंगी बागेश्वरी देवी। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का समय होगा सुबह 8:30। इसमें आप सुनेंगे राष्ट्रीय आयुष मिशन और बीमारियों से सुरक्षा पर छत्तीसगढ़ आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुनील दास से रमाशंकर की बातचीत। आकाशवाणी संग्रहालय से इस कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे सुनेगा हम अनान छत्तीसगढ़िया का भाग 16। इसमें आप सुनेंगे गोंड उराव जनजाति पर केंद्रित रूपक, लेखक श्री तपन बैनर्जी और प्रस्तुति लखनलाल भौर्य की होगी। बातों बातों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9 बजे। इसमें आप सुनिएगा गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी, इस विषय पर डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुतकर्ता होंगे विकल्प रंजन शुक्ला। हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर का समय होगा सुबह 7:05। प्रस्तुत करेंगे देवव्रत भगत। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन सुनेगा दोपहर 1:30 पर। इसमें आज के गूठ में चर्चा

0: विषय होगा एक दूसर संग शांति ले रहा। साथ ही सुनेगा छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहिनी। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रसारित होगा। अपन गोठ में चर्चा होगी मन के अंदर के ऊर्जा ला विकसित करो। नियमित क्रम में सुनेगा आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर, इसमें आज की बात का विषय होगा पशुधन पर पौष्टिक चारा अजोला। शाम 7:30 पर किसानवाणी में आज की सलाह में परंपरागत तरीके से मछली प्रसंस्करण के बारे में बताएंगी फिशरीज पॉलिटेक्निक धमधा की सहायक प्राध्यापक देवती जायसवाल। छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर आप सुनेंगे अमचीरी बाई और साथियों को। शाम 6:30 पर जवाहर बघेल के गाये छत्तीसगढ़ी गीत आप सुन सकेंगे। चित्रपट संगीत का आप आनंद उठा सकेंगे सुबह 9:15, सुबह 10:30, दोपहर 1:05, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। सुबह 10 बजे सुनेगा नई फिल्मों से और सुबह 11:05 का समय होगा सदाबहार नगमों के लिए। दोपहर 12:30 पर आप सुनेगा श्रोताओं का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गुड़ सुनेगा शाम 5 बजे। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और उसके बाद फिर हिंदी में समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां संपूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमंत्री मोदी डच देशस्य प्रधानमंत्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखांच मिलिष्यति। प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री मोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारं आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् 23 रूप्यकाणां अपेक्षया 16 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किम राज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किम राज्यस्य राज्यत्व दिवस समारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओम प्रकाश माथुरः, सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेंग सिंह तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोपि उत्सवेस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते

0: संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति। या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति। एताः अन्तर्जालीयमाध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसङ्गतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। उतो वा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिङ्ग्टन् नगरे सञ्जातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः पञ्चचत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य द्वित्रिदिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1 धावनाङ्कस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनाङ्कानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम

0: बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत कर रहे हैं देवव्रत भगत।

नमस्कार रायपुर, मैं हूं देवव्रत भगत, लेकर आया हूं दिन की सबसे प्यारी शुरुआत नमस्कार रायपुर के साथ। मई का महीना यानी वो वक्त जब रायपुर की सड़कें सुबह से ही तपने लगती है, लेकिन इस बार मौसम भी थोड़े अलग ही मूड में है। कभी शाम होते होते बादल घिराते हैं, कहीं हल्की बारिश हो जाती है, तो कभी सुबह तेज बारिश में चाय के साथ खिड़की पर बारिश की बूंदें दस्तक दे देती हैं, जैसा कि कल हुआ। अब रायपुर वाले भी इस सोच में हैं कि ये गर्मी है या मौसम ने अचानक अपना अंदाज बदल लिया है। कभी उमस, कभी ठंडी हवा, तो कभी बादलों की हल्की दस्तक। लेकिन सच कहें दोस्तों, तो शहर की यही बात सबसे खास लगती है। यहाँ मौसम भी बिन बताए कहानी बदल देता है। तो अगर आपकी सुबह भी आज थोड़ी ठंडी हवा और चाय की खुशबू के साथ हुई है, तो इस खुशनुमा सुबह में अब बातों का सिलसिला भी होगा और संगीत का मौसम भी। और इसी प्यारे एहसास के साथ सुनते हैं ये गीत, जिसके बोल कह रहे हैं मौसम प्यार का।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: दोस्तों, अब वक्त है आज के दिन के उन पन्नों को पलटने का जिनमें केवल तारीखें नहीं बल्कि किस्से हैं, फैसले हैं और वो पल है जिन्होंने दुनिया की दिशा बदली। आज के ही दिन साल 1919 में इतिहास ने पहली बार आसमान के रास्ते समंदर को पार करने की कोशिश देखी थी। न्यूयॉर्क से पुर्तगाल तक अटलांटिक पार उड़ान की शुरुआत हुई। सोचिए, उस दौर में जब हवाई सफर ही लोगों के लिए अजूबा था, तब किसी ने समंदर के ऊपर उड़ने का सपना देखा। और अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आज का दिन हॉलीवुड के लिए भी बेहद खास माना जाता है। साल 1929 में पहली बार ऑस्कर पुरस्कार समारोह का आयोजन आज के ही दिन हुआ था, यानी वो मंच जहां दुनिया ने सिनेमा को केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक कला के रूप में सम्मान किया। आज ही के दिन साल 1960 में दुनिया ने रोशनी की ताकत का एक नया रूप देखा। भौतिक वैज्ञानिक थियोडोर मेमन ने पहली बार कार्यात्मक लेजर का प्रदर्शन किया। जिस तकनीक का इस्तेमाल आज अस्पतालों से लेकर इंटरनेट और अंतरिक्ष तक में हो रहा है। और भारत के इतिहास में आज का दिन इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि 1975 में सिक्किम आधिकारिक तौर पर देश का 22वां राज्य बना था। वहीं साल 1996 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनकी आवाज, उनके शब्द और उनकी राजनीति का अंदाज आज भी लोगों के जहन में अलग जगह रखता है। और अब आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी बात की तरफ जो आज भी रिश्तों को बहुत खूबसूरती से समझाती है। उन्होंने कहा था कि रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे को समझने में होती है। और सच कहें, रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि निभाने से खूबसूरत बनते हैं।

0: साथियों, आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। डेंगू को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इससे बचाव के तरीके को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डेंगू और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च भी लगातार चल रही है, ताकि भविष्य में इन बीमारियों को बेहतर तरीके से रोका जा सके। इन्हीं विषय पर हमने बात की NIMR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के फील्ड यूनिट एक्सपर्ट डॉक्टर DP सिन्हा से। साथियों, आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। डेंगू और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च के लिए देश में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के तहत कई संस्थान काम कर रहे हैं। रायपुर में मौजूद NIMR की फील्ड यूनिट भी मच्छरों और उनसे फैलने वाली बीमारियों पर शोध करती है। खास बात यह है कि यहाँ मच्छरों के लिए एक माहौल तैयार किया जाता है, ताकि उन पर रिसर्च किया जा सके। और इसी विषय पर बात करेंगे NIMR के फील्ड यूनिट रायपुर के इंचार्ज डॉक्टर DP सिन्हा से। सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज क्योंकि राष्ट्रीय डेंगू दिवस है, तो ये दिवस मनाने का मकसद क्या है?
1: तो डेंगू दिवस का अगर मूल उद्देश्य देखो तो डेंगू बुखार की जो रोकथाम है
0: जी,
1: और नियंत्रण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना
0: जी,
1: मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने में सामुदायिक भागीदारी हो
0: जी,
1: उनको इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करना और इस बीमारी से और बीमारी से होने वाले जैसे मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या निदान हो सकता है और समय पर चिकित्सा देखभाल को कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं या बढ़ावा दें, लोगों को पता चले, इसका मूल विषय यही है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि रायपुर NIMR में जो फील्ड यूनिट है, यहाँ पे भी ये रिसर्च होता है बीमारियों को लेकर, तो यहाँ पे किस तरह का ये पूरा रिसर्च है और मच्छरों को पालने के लिए किस तरह का माहौल आप लोग लैब में तैयार करते हैं?
1: रायपुर देखिए, ये फील्ड यूनिट जो है एक्चुअल में ये मलेरिया पे काम करता है, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि डेंगू भी छत्तीसगढ़ में फैलने लगा है
0: जी,
1: तो इस टाइप की जो मच्छरों से फैलने वाली जो बीमारियां हैं
0: जी,
1: उस पे मुख्यतः यहाँ पर रिसर्च किया जाता है
0: जी।
1: तो रिसर्च में तीन मेन अगर देखें तो पार्ट है। पहला जैसे डायग्नोस्टिक किट या परीक्षण किट जो होता है
0: जी जी,
1: उसके थ्रू क्या बेटर तरीके से या अच्छे तरीके से हम प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं जो मच्छर जो फैलाते हैं बीमारियां
0: जी,
1: तो वो किट जो काम कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है
0: जी,
1: और क्या इसमें कुछ अलग ऐड करें जिससे बेटर हो, टाइम कम हो या अच्छा निदान हम तुरंत या परीक्षण कर सके समय पर, एक पार्ट तो ये हो गया
0: जी जी।
1: दूसरा सपोज जो दवाइयां बनती है उससे फैलने वाली बीमारी, मलेरिया की बात करूं या डेंगू की बात करूं
0: जी,
1: तो समय के साथ इसमें भी प्रतिरोधक क्षमता आ जाता है, तो समय

0: समय पर हमें इस दवाइयों का भी परीक्षण किया जाता है कि इसमें प्रतिरोधकता क्षमता आ तो नहीं रहा है, तो ये एक पार्ट हो गया। और तीसरा पहलू पे जाऊं तो कीटनाशक प्रतिरोधकता, ये मुख्य रूप से जो पहले जो डीडीटी जो पहले होता था उसमें प्रतिरोधक क्षमता आ गया तो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया
1: जी।
0: कि नया जो कीटनाशक जो चल रहा है अभी उसमें भी मच्छरों का कितना प्रभाव है
1: जी,
0: वो इन सब बातों को लेकर रिसर्च किया जाता है और समय समय पर हम रिसर्च करके जो रिपोर्ट होता है उसको आईसीएमआर को हम हैंड ओवर करते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी बनता है इनको लेकर इस तरह का रिसर्च होता है। तो इसमें एक चरणबद्ध तरीके से हम देखें तो बहुत सारा जो कारक है इसमें, पहली जैसा देखूं तो जैसे जलवायु नियंत्रण या तापमान और नमी मच्छरों को पालने के लिए मुख्य कारक है, तो तापमान और नमी का मुख्य रोल है इस लैब में।
1: मतलब मच्छरों का पूरा जो जीवन चक्र है वो यहाँ पर रिसर्च किया जाता है और उसके बाद टेस्टिंग से दवाओं की क्या टेस्टिंग में काम आता है क्या तरीके?
0: हाँ बिल्कुल, जो है आप सही प्रश्न किए हैं
1: जी।
0: क्योंकि जो पहले मैं बोल रहा था जैसे प्रतिरोधकता क्षमता है
1: जी,
0: तो लैब के मच्छर और फील्ड से भी मच्छर लाया जाता है
1: बिल्कुल,
0: और उसको हम समय समय पर देखते हैं कि जो दवाइयां छिड़काव हो रहा है उसका कितना असर है उसमें, तो समय समय पर ये काम होता है। और लैब कंडीशन को मेंटेन करने के लिए प्रकाश और अंधेरे का चक्र भी बहुत जरूरी है मच्छरों के लिए, जो दिन और रात का उनको इस चीज का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 12 घंटे की हम इस लैब के अंदर क्या है कृत्रिम रोशनी देते हैं, फिर 12 घंटे का बिल्कुल अंधेरा, तो ये सब चीजें ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू मेंटेन करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एडल्ट को हम ब्लड मिल भी देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो जैसे चिकन का ब्लड हो गया या फिर रैबिट का हम बाहर से अरेंज करके
1: जी।
0: उनको ताकि आगे की अपना जनरेशन को आगे बढ़ा सके, तो ये इन सब मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं लैब में मेंटेन करने के लिए मच्छरों का।
1: एक बात ये भी है कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं विशेषकर उन्हें कैसे पहचाने और विशेष सावधानियां क्या होनी चाहिए डेंगू से बचने के लिए?
0: आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, ये डेंगू का मच्छर दूर से पहचाना जा सकता है इसको
1: जी।
0: जैसे इसको टाइगर मॉस्किटो बोल देते हैं कई लोग, इसमें मच्छर के बॉडी में देखेंगे तो व्हाइट कलर के डॉट डॉट डॉट दिखेगा पैरों में उसके बॉडी पे, और दो प्रजाति मुख्यतः इसमें, एक एडीज है और दूसरा अल्बोपिक्टस है
1: जी जी।
0: तो अल्बोपिक्टस को उसके माथे पे ही एक फोरहेड में एक व्हाइट कलर का जैसे तिलक लगाते हैं ऐसा दिखेगा
1: जी।
0: और पूरे बॉडी में कहना चाहिए पूरा व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स रहेंगे, तो आसानी से इसको दूर से ही देख सकते हैं। दूसरा डेंगू के मच्छर क्या है कि दिन में ही काटता है जनरली।
1: अच्छा।
0: तो शाम के समय ज्यादातर एक्टिव होते हैं
1: जी जी।
0: तो इस समय या तो हम फुल स्लिप्स का पहने या फिर अपने आप को बचाने के लिए घर में जो मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें
1: बिल्कुल,
0: आसपास के जो जहां पर मच्छर पनप रहे हैं
1: जी।
0: वो रोकथाम करें, उसको बिल्कुल पनपने ना दें, आसपास बिल्कुल मॉनिटरिंग रखें कि कहीं पानी तो जमा नहीं हो रहा है, पानी जमा हो रहा है तो उसमें मच्छर तो पैदा नहीं हो रहा है
1: जी।
0: घरों में कूलर चल रहा है तो कूलर के अंदर जो जनरली चेक नहीं करते हैं तो वहां पर मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं, तो अपने आसपास को बिल्कुल निगरानी पे रखें कि मच्छर पनपने ना पाए
1: बिल्कुल। डॉक्टर सिन्हा आप हमारे साथ जुड़े इसके बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: कुछ प्रमुख साइबर फ्रॉड के तरीकों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे प्रमुख तरीका में से एक है फेक वेबसाइट स्कैम। इसमें ठग असली वेबसाइट की तरह दिखने वाले हूबहू नकली वेबसाइट बना लेते हैं। इनका URL ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है, जैसे flipkart.com की जगह लिखा रहेगा flipkart.offers.in। इस प्रकार के वेबसाइट में बहुत कम कीमत में सामान बिक्री करने के लिए उपलब्ध होता है, या किसी बहुत फेमस होटल्स के ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नकली साइट तैयार की जाती है और सस्ते दर पर रूम की बुकिंग होने का ऑफर दिया जाता है। जैसे ही आप ऐसे फर्जी वेबसाइट पर कोई सामान लेते हैं या होटल

0: के रूम को बुक करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, आपके साथ ठगी हो जाता है। आपके निजी बैंकिंग संबंधी जानकारियां भी चोरी होती है। आप सतर्क और जागरूक रहें, हमेशा आधिकारिक एप्लीकेशन या सुरक्षित साइट पर ही जाकर शॉपिंग करें या किसी होटल्स की रूम की बुकिंग करें। फिर भी किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
1: साथियों, आज विश्व प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। विज्ञान से लेकर तकनीक और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक प्रकाश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इंटरनेट, लेजर, फाइबर तकनीक और सोलर एनर्जी जैसे कई क्षेत्र पूरी तरह प्रकाश आधारित विज्ञान पर टिके हैं। प्रकाश के वैज्ञानिक महत्व और ऊर्जा के रूप में उसके उपयोग को समझने के लिए हमने बात की पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीकांत चौरे से।
2: श्रोताओ, जिस प्रकाश यानी रोशनी जो केवल हमारे जीवन को उजाला ही नहीं देती बल्कि विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और संचार जैसे क्षेत्रों की आधारशिला भी है। प्रकाश की वैज्ञानिक दुनिया और उससे जुड़े रोचक पहलुओं को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के फिजिक्स विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीकांत चौरे जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
3: जी नमस्कार।
2: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को यही बताइए कि विश्व प्रकाश दिवस से क्या समझना चाहिए और प्रकाश का हमारे जीवन में किस तरह से महत्व है।
3: देखिए, जैसे ही हम प्रकाश शब्द सुनते हैं
2: जी,
3: तो सुनते ही हमारे मन में सूर्य की पहली किरण
2: जी,
3: खिलाओ इंद्रधनुष के रंग, ये रात के अंधेरे में चमकता कोई तारा आ जाता है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश केवल रोशनी नहीं है, प्रकाश ऊर्जा है, सूचना है और इससे हम मापने में उपयोग कर सकते हैं, चिकित्सा के लिए औजार है
2: जी, जी।
3: संचार की रीढ़ है
2: जी।
3: और सबसे बड़ी बात है, ब्रह्मांड को पढ़ने की एक भाषा है। तो प्रकाश इतना महत्वपूर्ण है
2: जी।
3: तो इसको 16 मई को हम इसलिए मनाते हैं कि इसी दिन 1960 में
2: जी,
3: एक साइंटिस्ट जो इंजीनियर भी थे, थियोडोर मेमन ने सबसे पहले सफल लेजर चलाया था
2: जी। जी,
3: उस समय लोगों ने सोचा नहीं था कि आगे चल के आज हम लेजर से आंखों की रोशनी की सर्जरी करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, बार कोड स्कैनर में, उद्योग में और अंतरिक्ष में और बहुत सारे टेक्नोलॉजी में उसका यूज होता है।
2: और आमतौर पे हम प्रकाश को केवल रोशनी ही मानते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में अगर देखें तो वास्तव में प्रकाश है क्या?
3: प्रकाश जैसा हम समझते हैं, जिसको हम देख पाते हैं
2: जी,
3: वो प्रकाश के एक प्रकार का कहना चाहिए कि प्रकाश का जो साम्राज्य है उसका एक हिस्सा है। और जैसे हम उसको सिर्फ एक ज्यादातर तरंग के रूप में हम समझते हैं
2: जी,
3: लेकिन
2: जी।
3: प्रकाश विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से कण जैसा भी व्यवहार करता है, जिसको हम फोटॉन बोलते हैं
2: जी।
3: और यही वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक सिद्धांत है जो क्वांटम क्रांति का एक बड़ा आधार है।
2: बिल्कुल, और क्योंकि ये भी माना जाता है कि प्रकाश की गति जो है वो सबसे तेज होती है, तो क्या ये एक खासियत है और विज्ञान में इसका क्या हम ये माने महत्व?
3: प्रकाश निर्वात में लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है
2: जी,
3: लेकिन ये अधिकतम गति केवल एक संख्या नहीं है, ये एक प्रकार का एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, अर्थात एक प्रकृति की एक मूलभूत सीमा है
2: जी।
3: तो इससे ये तय होता है कि हम अंतरिक्ष में कितनी दूर देख सकते हैं, जीपीएस की कितनी सही स्थिति बता सकता है
2: जी,
3: और ब्रह्मांड में कारण और परिणाम मतलब कॉज एंड इफेक्ट कैसे जुड़े हुए हैं
2: जी, जी।
3: और इस सब के पीछे प्रकाश की गति छिपी हुई है।
2: और अभी हम ये देख रहे हैं कि जैसे आज के समय में फाइबर ऑप्टिकल हो गया, लेजर हो गया, सोलर एनर्जी, यहाँ पे प्रकाश की जो भूमिका है वो अलग ही देखने को मिल रही है, ऊर्जा के तौर पे ले लें या फिर और भी कई मायनों में।
3: जैसा आपने पूछा है कि फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर और सोलर एनर्जी जैसे तकनीकी चीजों में प्रकाश की जो भूमिका

0: भूमिका है
1: जी।
0: तो आज के आधुनिक दुनिया में प्रकाश एक तकनीकी शक्ति है
1: जी जी।
0: फाइबर ऑप्टिक्स में प्रकाश कांच या प्लास्टिक के बहुत पतले रेशों के भीतर चलता है
1: जी,
0: और यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है
1: जी।
0: प्रकाश रेशे के भीतर बार बार परिवर्तित होता हुआ लंबी दूरी तक सूचना ले जाता है। हम इसके माध्यम से मतलब अंतर महाद्वीपीय डेटा ट्रांसफर और सूचना का ट्रांसफर कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, और अभी जिस तरह प्रकाश आधारित जो तकनीक है सर, उसमें किस तरह के बदलाव जो है वो दिखाई देते हैं?
0: प्रकाश आधारित तकनीकी में बदलाव की जगह में मैं उसको बोलना चाहूंगा कि क्या मतलब उसमें संभावनाएं है और भविष्य में
1: जी जी।
0: तो भविष्य में प्रकाश और इसको हम फोटोनिक्स कह सकते हैं
1: जी,
0: कि इसका बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है प्रवाह। वैसे ही फोटोनिक्स में फोटान से सूचना ऊर्जा और संकेतों को नियंत्रित किया जाता है
1: जी जी।
0: सबसे बड़ी संभावना है इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स, यानी चिप पर ही प्रकाश को नियंत्रित करना
1: जी। एक और ऐसा सवाल है जो लोगों के जहन में आता है कि प्रकाश की तो हम बात करते हैं, लेकिन अंधेरा क्या होता है? क्या अंधेरा भी कोई चीज है या केवल प्रकाश की अनुपस्थिति को ही हम अंधेरा कहेंगे?
0: एक बात तो ये है कि प्रकाश का न होने को हम अंधेरा बोल सकते हैं
1: जी जी,
0: लेकिन मैं यहाँ पे आपके माध्यम से दर्शकों को एक चीज कहना चाहूंगा
1: जी।
0: प्रकाश जितना जरूरी है उतना जरूरी अंधेरा भी है। जहाँ पे अंधेरे का जरूरत है
1: जी,
0: रोशनी रात के आकाश को धुंधला कर देती है
1: जी,
0: और इतना मतलब उसको आप बोलेंगे कि प्रकाश का प्रदूषण एक प्रकार से हो रहा है।
1: बिल्कुल, और
0: जहाँ प्रकाश चाहिए वही प्रकाश हो
1: जी,
0: और जहाँ अंधकार प्रकृति की आवश्यकता है
1: जी,
0: वहाँ पर अंधकार को भी हमको सम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, अंधकार भी आवश्यक है।
1: बिल्कुल, और डॉक्टर साहब आखिर में जो भी ऐसे युवा हैं, छात्र हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च या करियर बनाना चाहते हैं?
0: तो जो फिजिक्स के आधार पे आगे रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं, उनको तो अभी सबसे जो प्रकाश या लेजर या फोटोनिक्स या और भी क्वांटम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एडवांस चीजों में काम करना है
1: जी जी,
0: उनको सबसे पहले तो जो बेसिक जो साइंस के विषय है उनको पहले अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पे वो आगे कुछ कर पाएंगे। अंधकार केवल रात नहीं है, ज्ञान है, अंधविश्वास है, जड़ता है, ये सब अंधकार है, और प्रकाश केवल दीपक नहीं है, जिज्ञासा है, प्रमाण है, प्रयोग है, विवेक है। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के अवसर पे संकल्प लें कि हमारा जो गति होना चाहिए जीवन में वो तमसोमा ज्योतिर्गम्य की तरह होना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की गति होनी चाहिए व्यापक अर्थों में।
1: बिल्कुल, डॉक्टर चौधरी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। धन्यवाद।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: साथियों, रायपुर में इन दिनों कई पेट्रोल पंपों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं लंबी कतारें लग रही हैं तो कहीं लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील कर रहा है ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। इसी विषय पर हमने बात की रायपुर के अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर जी से। साथियों, रायपुर में इन दिनों कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। प्रशासन लगातार लोगों से संयम बनाने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील कर रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं रायपुर के अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि रायपुर में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर जो भीड़ अभी देखने को मिल रही है, इसको प्रशासन किस तरह से देख रहा है?
2: रायपुर में अचानक लोग पैनिक होकर के जो पेट्रोल डीजल का क्रय कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा क्रय कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ कल 20-22 ऐसे पेट्रोल पंप थे जिनके ड्राई होने की सूचना मिली थी। उसके बाद प्रशासन ने जो डिपो के जो तीन हमारे यहाँ मुख्य डिपो हैं, जैसे IOCL के, HPCL, BPCL के, पेट्रोल पंप के जो मालिक है, उनकी तीनों की बैठक बुलाई थी। और बैठक में ये आया कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन जो पैनिक बाइंग हो रही है, जो आदमी हड़बड़ा कर की पेट्रोल की कीमतें महंगी होंगी या भविष्य में पेट्रोल नहीं मिलेगा, इसके चक्कर में जो एक्स्ट्रा बाइंग हो रही थी उसके वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। और प्रशासन लगातार जो है ड्राई पेट्रोल पंपों पर नजर रखे हुए है और कोऑर्डिनेशन करके उनको पेट्रोल पंपों को फिर से उस पर पेट्रोल रिफिलिंग करा करके लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।
1: सर, ये जो अजीब सी स्थिति बनी, इसका कारण क्या था और प्रशासन लोगों से इस संबंध में क्या अपील करना चाहता है?
2: नहीं, वो मेरे लोगों से ही अपील है कि ये पैनिक बाइंग है। जैसे पहले ही आपको बताया कि इस प्रकार स्टॉक की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कमी केवल जो पब्लिक जो एकदम पैनिक होकर के कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा करके, जो अचानक जो 2 लीटर भराते थे तो 100 रुपए का पेट्रोल भरते थे, आज पेट्रोल टंकी फुल करा रहे हैं, हम दे भी रहे हैं सबको, तो इसकी वजह से हुई है। तो मेरा लोगों से यही निवेदन है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक और डीजल उपलब्ध है, पैनिक बाइंग मत करें। पैनिक बाइंग नहीं करेंगे तो अगले 2 से 3 दिन में हम स्थिति को संभाल लेंगे और नॉर्मल स्थिति में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो जाएगा।
1: अभी फिलहाल प्रशासन की ओर से जो स्थिति है उसको सामान्य बनाए रखने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
2: उसके लिए 4 कदम उठाए हैं। जैसे हम लोगों ने IOCL डिपो को साफ कर दिया है कि आप 24/7 अब सप्लाई करें पेट्रोल उसकी। दूसरा, जो कालाबाजारी अगर कोई कर रहा है, हो सकता है या कोई मौके का फायदा उठा करके कालाबाजारी कर रहा हो, उसको भी हम लोगों ने कहा है, उसके लिए भी कॉल सेंटर, जो मार्केट सेंटर नंबर मीडिया के नंबर उससे शिकायत कर सकता है। और तीसरा, हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि जितनी जरूरत हो उतना ही जो है डीजल या पेट्रोल खरीदे, कि जो हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी है वो डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि अभी जितना जो डिमांड है उतनी तेजी से हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक होने के बाद, क्योंकि सप्लाई के भी हमारे टैंकर, ऑयल टैंकर एक सीमित है, सीमित मात्रा में ही सप्लाई कर सकते हैं। तो डिमांड अगर आई होगी तो ये सप्लाई कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगी, लेकिन स्थिति पूरी नजर रखे हुए है और लगभग आज तो ऐसा कोई ज्यादा मुझे खबर नहीं आई है कि ज्यादा पेट्रोल पंपों में स्थिति मारामारी है। कल थोड़ी स्थिति थी, आज थोड़ी नॉर्मल हुई, और अगर पब्लिक थोड़ा सहयोग करेगी तो अगले 102 दिन में सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी।
1: बिल्कुल, जनता के सहयोग की आवश्यकता है, और क्योंकि ईंधन बचत को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी अपील की है। जिला प्रशासन की ओर से ईंधन बचत को लेकर के आप क्या कहेंगे आम जनता से कि बचत को कितना जरूरी है?
2: जैसे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लोगों से अपील की है कि सीमित मात्रा में ही पेट्रोल का उपयोग करें, जैसे पूल वाहन करें। हमारे जिला प्रशासन ने भी कलेक्टर साहब

0: योजना पहल की थी। अब जो सुशासन बिहार में अधिकारी अब एक गाड़ी में ना जाके एक गाड़ी में 3-4 अधिकारी जा रहे हैं, इस तरह से आम जनता से भी अपील है कि पूलिंग करे और कम से कम मतलब संसाधन उपयोग करे, जरूरत के हिसाब से उपयोग करे, उतना स्टाफ भी है लेकिन इसका अपव्यय मत करे और सीमित मात्रा में और दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से इस स्थिति से हम तेजी से उभर रहे हैं।
1: कार पुलिंग जैसे छोटे से प्रयास को आम नागरिक किस तरह से अपना सकता है सर?
0: बिल्कुल, जैसे एक ही मोहल्ले के, जैसे कि एक ही कॉलोनी के 3-4 लोग रहते हैं,
1: जी,
0: अगर एक ही किस्त में जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो अगर कार पुलिंग कर ले, एक आदमी एक दिन एक की कार, एक दूसरे की कार, इस तरीके से कार पुलिंग करे तो 7 दिन में अगर 4 लोग बन जाए तो एक ही दिन कार चलेगी, एक ही कार में 4 लोगों को हम इस तरह की कार पुलिंग कर सकते हैं। और आमतौर पर अगर पुलिंग तो उपयोग कर सकते हैं, अगर आप बिलासपुर दूर लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो ट्रेन से सफर करें, लगातार ट्रेन की इस तरीके का प्रयास करके थोड़ा सा अगर पब्लिक सहयोग प्रयास है और आम जनता सहयोग करे तो निश्चित तौर से हम इसकी जो खपत में कमी है।
1: और ऐसे समय में आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए सर आपके हिसाब से?
0: मैं पहले ही आप कर चुका हूँ, दो चीजों पर ध्यान देना है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल का मित्रता से उपयोग करें। दूसरा, जो पैनिक बाइक कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल मिलेगा, ये दोनों चीजें में अगर आम जनता थोड़ा सा धैर्य रखे, पेट्रोल पर पहले बोल चुका हूँ कि पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है, और दूसरा जो पेट्रोल डीजल का मित्रता तौर से स्थिति एक दो दिन में हम सामान्य कर लेंगे।
1: बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, आपका भी धन्यवाद।

साथियों, आज के नमस्कार रायपुर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है ये बातें आपके दिन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता जरूर जोड़ेंगे। मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने आती हैं। इसी विश्वास के साथ मैं देवव्रत भगत आपसे अनुमति चाहता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर, इसे आपकी सेवाओं में प्रस्तुत किया देवव्रत भगत ने। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं, अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी की दिल्ली
1: केंद्र। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में $5 अरब के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर

0: हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।

0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्स ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं, वागदेवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, NEET UG की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, CNG के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना UAE पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के

0: विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Prime Minister Narendra Modi reaches Netherlands on second leg of his five-nation tour. Prime Minister Modi rejects media report imposing tax on foreign travel. CBSE announces window for re-evaluation of answer sheets for class 12 students. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Malaysian duo in semi-finals of Thailand Open. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सम्मानित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसमें आइए सुनते हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन और बीमारियों से सुरक्षा पर छत्तीसगढ़ आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुनील दास से रमा शंकर की बातचीत।

0: श्रोताओ नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक होता है। स्वस्थ रहने पर ही हमारा समस्त जीवन अच्छे से हम बिता सकते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हमें अपनी दैनिक क्रियाकलापों पर संयम रखना चाहिए। खाने पीने, अपने सोने जागने जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए हमें सजग रहना चाहिए। श्रोताओं, बीमारी से बचने के भी कई तरीके होते हैं और सरकार द्वारा इस हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लाभ आम जनों को भी मिलते हैं। और श्रोताओं, इसी में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर सुनील दास, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन में। तो डॉक्टर सुनील दास जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है और इसका क्या उद्देश्य है।
1: राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इसके माध्यम से जो है व्यक्तियों को समग्र स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो सके, यह कार्य राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ समन्वय कर संपूर्ण स्वास्थ्य जो है मनुष्य मात्र को उपलब्ध कराना, यह इसका उद्देश्य है। इसके कई सारे घटक हैं। इसके अंतर्गत जो है आयुष सेवाओं का विकास करना, आयुष शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, आयुष की दवाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और इन सब के प्रचार प्रसार का कार्य इस आयुष मिशन के माध्यम से किया जाता है।
0: जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति आती हैं?
1: इसके अंतर्गत आयुष की पूरी चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं। आयुष मतलब आयुर्वेद, वाई फॉर यूनानी,
0: जी
1: वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एस फॉर सुवारिकबा और होम्योपैथी, ये चिकित्सा पद्धतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को संपूर्ण समग्र स्वास्थ्य प्रदान करना, ये आयुष मिशन का कार्य है।
0: जी जी। तो डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में इस मिशन से स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में क्या लाभ लोगों को मिल पा रहा है?
1: इसके माध्यम से लोगों को बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जैसे आयुष मिशन के द्वारा कुछ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स प्रारंभ किए गए हैं
0: जी,
1: लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सुप्रजा
0: जी।
1: सुप्रजा जैसे सर्वविदित है कि जब

0: बच्चा माता के गर्भ में आता है तब से ही उसके संस्कार प्रारंभ होते हैं। और हमारे महर्षियों के द्वारा यह निर्देश दिया गया है, आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया हुआ है कि माता के गर्भ में जब कोई भ्रूण पल रहा है उसको अच्छे वातावरण देना, अच्छे संस्कार देना और अच्छी शिक्षा देना, इसके माध्यम से जो है वह जब गर्भ परिपक्व होता है तो गर्भ में जो पल रहा होता है शिशु उसका भी उसी प्रकार से विकास गर्भ से ही प्रारंभ होता है। ये एक सुप्रजागा कार्यक्रम
1: जी।
0: आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस मस्कुलोस्केलेटल डिजीज ऐसा एक प्रोग्राम है
1: जी,
0: जिसके अंतर्गत जो है ऐसे मैं कहूँगा कि पूरी आबादी में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगे 70-80 से 90% जिनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई दर्द ना हुआ हो, कोई पीड़ा ना हुई हो
1: जी।
0: और खास करके हमारे भारतीय परंपरा में तो ये माना जाता है कि 60 के बाद शरीर में वात का जो है प्रकोप होना शुरू होता है, वात हो गया, वात रोग हो गया है, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सब जानते सुनते हैं
1: जी जी।
0: तो उसके रोकथाम के लिए, चिकित्सा के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक आयुर्विद्या का कार्यक्रम है, उस आयुर्विद्या के कार्यक्रम में 4 स्तर उसका बनाया गया है
1: जी।
0: प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर
1: जी।
0: तो उस अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग विषय वस्तु तैयार किए गए हैं और जो विद्यार्थी हैं उनके मन में प्रकृति के प्रति लगाव, अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से उनका परिचय, ताकि आगे चल करके वो बच्चे जो है अपने आगामी जीवन के लक्ष्य के रूप में आयुर्वेद को स्वीकारें, आयुर्वेद के पाठ्यक्रम को वह जो है सहज रूप से अपनाएं और समाज में आकर के समाज को समग्र स्वास्थ्य देने के लिए कार्य करें, ऐसा एक आयुर्विद्या का यह कार्यक्रम संचालित होता है
1: जी जी।
0: NPCDCS है जो जीवन पद्धति जन्य रोगों की रोकथाम और उसकी चिकित्सा
1: जी,
0: यह भी आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि आज के इस भागदौड़ के जीवन में व्यक्ति शुद्ध आहार से वंचित होता जा रहा है
1: जी।
0: भौतिकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उत्पादकता बढ़ाने के पीछे जो है कृषक खेतों में अनावश्यक रासायनिक खाद, कीटनाशक, इन सब औषधि का छिड़काव कर जब फसल का उत्पादन किया जा रहा है तो उस फसल में भी वह कीटनाशक और उस प्रकार के वो जो सारी चीज़ें उस फसल में भी आ रही हैं, तो व्यक्ति जो है वह स्वाभाविक रूप से कई ऐसे असाध्य रोगों की ओर अग्रसर हो रहा है। उसका रोकथाम का उपाय भी जो है यह NPCDCS कार्यक्रम के माध्यम से करने का, ये आयुष मिशन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये NPCDCS कार्यक्रम का जो पूर्ण रूप क्या है?
0: नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड स्ट्रोक,
1: एन
0: फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोग्राम, एंड सी फॉर कैंसर, डी फॉर डायबिटीज, एस फॉर स्ट्रोक, NPCDCS।
1: तो डॉक्टर साहब, हम देखें कि हमारी अनियमित दिनचर्या और जो आजकल मिलावटी खान पान है इसका काफ़ी असर पड़ता है स्वास्थ्य पर, और इस तरह की बीमारी जो NPCDCS में आपने बताया इससे वो व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं, तो इसके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो इसके अंतर्गत इन बीमारियों के लिए क्या कार्य किए जाते हैं?
0: एक तो इन बीमारियों के लिए शास्त्र में जैसे निर्देश दिया गया है, महर्षि चरक कहते हैं कि तत्र मात्रा सी, व्यक्ति को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आहार अभी पुनरग्नि वाला पेक्षिणी, अर्थात आपको जैसा भूख हो उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। ऋतुचर्या के बारे में बताते हैं, अभी ग्रीष्म का ऋतु है, स्वाभाविक रूप से बाहर की गर्मी जो है बहुत तेज, बाहर का तापमान बहुत तेज बढ़ा हुआ है, तो आपके अंदर का तापमान स्वयं जो है शांत है, तो आप अगर अभी के समय में गरिष्ठ भोजन लेंगे, गुरु आहार लेंगे, तो निश्चित ही जो है आपका आहार पचेगा नहीं, क्योंकि आपकी अग्नि उतनी प्रबल नहीं है और आपका आहार नहीं पचेगा तो आपका आहार जो है फिर आम दोष में परिवर्तित हो जाएगा, और आम दोष जो होता है वह सभी रोगों का उत्पत्ति का कारण, ऐसा हमारे आयुर्वेद के मनुष्यों ने और हमारे भारतीय परंपरा में भी लोक जीवन में भी यह बात जो है स्वीकार्य है, सर्वमान्य है कि इस भोजन जब नहीं पचता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, तो ये आम जनों में ये है। तो एक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये बीमारियाँ जो है मुख्य रूप से आहार और अभिहार, निद्रा सही तरीके से नहीं होना, मन में अनावश्यक तनाव रखना, इन सब कारणों से ये बीमारियाँ होती हैं। और इसका उपचार आधुनिक चिकित्सा शास्त्र कहता है कि इसका उपचार है ही नहीं, इसका सिर्फ जो है दवाई खा करके इसको मैनेज किया जा सकता है, किंतु अगर आयुर्वेदी आहार विहार लेकर के आयुर्वेद वैद्य के परामर्श को मानकर अगर कोई चलता है तो निश्चित रूप से जो है इस रोग से वह मुक्त हो सकता है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम है एक छोटा सा अंतराल।

0: और चाहेंगे कि आपकी पसंद का हमें गीत सुने।
1: चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो।
0: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील दास जी, जो संयुक्त संचालक हैं आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का क्या महत्व होता है?
1: आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र जो है इसका बहुत महत्व है
0: जी।
1: आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की हम पूर्ण रक्षा करेंगे
0: जी,
1: उसके उपरांत अगर वह व्याधिग्रस्त होता है तो उसका उपचार करेंगे
0: जी जी।
1: तो यह जो स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र हैं, जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष ऐसा हम कहते हैं, और हमारे प्रदेश में 400 केंद्र संचालित हैं
0: जी।
1: उन केंद्रों से हम प्रतिदिन
0: जी
1: योग की शिक्षा देते हैं, उसके बाद आयुर्वेद रस रसायन का प्रयोग कैसे करना है इसकी शिक्षा देते हैं, दिनचर्या ऋतुचर्या आहारचर्या इसकी शिक्षा हमारे वैद्य जो वहाँ पर पदस्थ हैं वे देते हैं। और ये प्रयास यह है कि एक ग्रामीण जनता

0: जहाँ पर हमारा औषधालय है वह पूर्ण आरोग्य को प्राप्त हो और वहाँ पर कोई भी रोगग्रस्त ना हो
1: जी।
0: ऐसा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष का जो है यह प्रयास है और यह उसका उद्देश्य भी है।
1: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें कितने घटक हो सकते हैं?
0: आयुष मिशन के घटक, जैसे आयुष मिशन क्या है बताएं, उस समय ही मैंने बताया। आयुष मिशन में सर्विसेज है प्रमुख रूप से, सेवाएं
1: जी,
0: शिक्षा
1: जी,
0: आयुष सर्विसेज को जो है बढ़ावा देना, आयुष की शिक्षा को गुणवत्ता युक्त करना
1: जी,
0: और इसके और जो भी घटक छूट जाते हैं उसके लिए उसमें जो फ्लेक्सी पुल का भी है उसके अंतर्गत जो है और अन्य घटकों को समाहित करके हम भारत सरकार को प्रेषित करके भारत सरकार से इसके लिए हम सहायता प्राप्त करते हैं।
1: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें आयुर्वेद एक बहुत महत्वपूर्ण इसका अंग है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद का क्या महत्व है, और जब हम देखते हैं बच्चों के संदर्भ में तो इसमें कुछ स्वर्ण प्राशन जैसी जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
0: स्वर्ण प्राशन ऐसा है, स्वर्ण को जो है मेधा बुद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। उस स्वर्ण का जब हम प्राशन करवाते हैं या उस स्वर्ण को घृत और मधु के साथ में जब हम पुष्य नक्षत्र के समय एक तत्काल जन्म लिए हुए बच्चे से 14 साल तक के बच्चे को जब उसका उपयोग कराते हैं तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि, उसकी कांति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें सब में पर्याप्त वृद्धि होती है और वह एक स्वस्थ बालक जो होता है, स्वस्थ शिशु जो होता है, वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक स्वस्थ नागरिक के रूप में परिणत होता है और वह उसके जीवन में रोगग्रस्तता जो है नहीं के बराबर होती है
1: जी।
0: और यह स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम जो है प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में हमारे आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर में संचालित है और जिसको जनता का जो है बहुत ही ज़्यादा उनका विश्वास प्राप्त हो चुका है। हजारों लोग उस दिन जो है स्वर्ण प्राशन के लिए अपने बच्चों के साथ हमारे चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं।
1: जी जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं और आयुष मिशन की बात करते हैं तो योग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हम हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो आयुष मिशन के अंतर्गत योग का क्या महत्व है?
0: जैसे कि आयुष मिशन के अंतर्गत हम सभी भारतीय पद्धतियों को शामिल करते हुए एक समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं और इसमें योग तो है ही है, बहुत महत्वपूर्ण अंग घटक है उसका योग जो है। और प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे यहाँ 400 संचालित हैं हमारे छत्तीसगढ़ में
1: जी,
0: उन 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमने योग प्रशिक्षक रखा हुआ है और एक योग प्रशिक्षक, प्रत्येक योग प्रशिक्षक को हमने 32 घंटे के योग के सत्र लेने के लिए उनके लिए वह समय सारणी तय करके उन्हें दिया हुआ है। साथ ही योग वेलनेस सेंटर भी हमारे इस प्रदेश के अंदर में संचालित हैं। उस योग वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रत्येक दिन योग का अभ्यास तो करना ही है, साथ ही योग के षटक्रिया को भी लोगों के बीच में हम एक लाभकारी और लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे सामान्य सी समस्या बड़ी विकराल रूप न ले और जो समस्या प्रारंभ हुई है तत्काल हमारे आयुर्वेद और योग के माध्यम से उसका समाधान हो सके। इसलिए योग बहुत बड़ा, इसमें उसकी योग की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: तो डॉक्टर साहब, जब हम रोगों की बात करते हैं तो आयुर्वेद जो है इससे बचने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक पद्धति मानी जाती है, तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो असाध्य होते हैं, जिनका इलाज किया गया है लेकिन जो है व्यक्ति काफ़ी अंत समय में और गंभीर समय में डॉक्टर के पास पहुंचा है, उस समय रोगी के बचने की या जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में एक पैलिएटिव केयर का जो विकल्प दिया जाता है, तो इसका क्या महत्व होता है?
0: पैलिएटिव केयर, देखिए, प्रशामक उपचार, ऐसे रोगी जो बिस्तर में बंध गए हैं, घर में बंध गए हैं और न उनकी रोग ठीक होने की संभावना है और न तत्काल उनके कहना चाहिए कि मृत्यु की संभावना है, तो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए, उन्हें मानसिक शांति के लिए यह जो प्रशामक उपचार जिसे पैलिएटिव केयर कह रहे हैं, इसकी भी प्रावधान हमारे आयुष मिशन के अंतर्गत किया गया है
1: जी।
0: इसके तहत हमारे चिकित्सक जो है, अभी हमारे रायपुर और बिलासपुर आयुर्वेद महाविद्यालय जो हैं इसके नोडल हैं और उनके माध्यम से यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर चल रहा है
1: जी,
0: जिसमें हमारे चिकित्सक ऐसे रोगियों का चिन्हांकन करते हैं जो कि बिस्तर पर बंध गए हैं और घर में बंध गए हैं और ऐसे असाध्य रोगों से ग्रसित हो गए हैं जिसका रोग तो ठीक होना ही नहीं है, तो ऐसी

0: थे, में हमारे चिकित्सक उनके घर जा कर के उस रोगी के साथ, परिवार के लोगों के साथ संवाद करते हैं, उनके साथ समन्वय करते हैं, और परिवार वालों को भी जो है उस रोगी के प्रति उनके मन में सदैव एक ऐसा प्रेम का भाव बना रहे, और रोगी को भी यह आश्वस्त करते हैं कि भाई आपका रोग जो है वह ठीक होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते, किंतु आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप कभी न कभी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसा उनके साथ संवाद करके रोगी को और परिवार को आश्वस्त करते हैं, और उनको एक दूसरे के प्रति, जैसे रोगी के प्रति परिवार के सदस्य यदि नहीं करेंगे तो वो रोगी और परेशानी आएगा उसको, तो दोनों के बीच भी सामंजस्य, हमारे चिकित्सक उनके परिवार के साथ, रोगी के साथ सामंजस्य रख करके इस कार्यक्रम को अच्छे से चला रहे हैं, ताकि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे एक सुखपूर्वक मृत्यु मिले और वह शांत होकर के इस दुनिया से जाए, ऐसा इसका उद्देश्य है।
1: जी जी जी जी, ये बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर सुनीता जी। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले चाहेंगे आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना होता है क्यों तेरी ओर चला, मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ।
1: जी जी जी, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोता, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुनील दास जी से, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से हम रोगों से ग्रसित ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए।
1: रोगों से ग्रसित ना हो इसके लिए ही आयुर्वेद है
0: जी।
1: तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हर व्यक्ति से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, आयुष औषधालय में, और हमारे चिकित्सक से परामर्श लें, स्वस्थ रहने का परामर्श लें। रोगों का उपचार तो हम करते ही हैं, किंतु हमारा आयुर्वेद स्वस्थता से स्वास्थ्य रक्षण बोला हुआ है, तो हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें
0: जी।
1: उसके लिए महर्षि चरक हैं, महर्षि सुश्रुत हैं, महर्षि वाग्भट हैं, ये बृहत्त्रयी जो महर्षि हैं, इन्होंने कई सारे हमें निर्देश दिए हुए हैं। एक निर्देश तो जैसे मैंने बताया आहार को लेकर ही, क्योंकि इस यह आहार ही हमारे शरीर के लिए औषधि है, यह आहार ही हमारे शरीर के लिए विष है। तो इस आहार का हम किस प्रकार भक्षण करें, कौन से ऋतु में कैसा आहार खाएं। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, इस ग्रीष्म ऋतु में यदि हम बहुत भारी भोजन करेंगे जो पचने में बहुत विलंब हो, तो उससे निश्चित रूप से हमें व्याधि होगा ही होगा
0: जी, जी।
1: जैसे ये सर्वविदित है कि ग्रीष्म ऋतु जाता है, प्रावृत्त ऋतु जब आता है, हल्की सी बारिश होती है, तो आप देखिएगा कि लोग जो है बहुत से बीमार पड़ते हैं
0: जी।
1: तो क्या वह बीमार पड़ने की घटना एक दिन में होती है
0: जी, जी।
1: नहीं
0: जी।
1: वह बीमार पड़ने की घटना जो है उसके पूर्व के 2-3 माह से प्रारंभ होती है
0: जी।
1: जब व्यक्ति अपने मुख के स्वाद के लिए अपने जिह्वा लोलुपता के कारण से जो उसे नहीं खाना चाहिए या उसके मात्रा से ज्यादा मात्रा पूर्वक खाना चाहिए, मात्रा का उल्लंघन कर जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में आप मद्यपान करेंगे, ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान तो निषेध ही है। ग्रीष्म ऋतु के समय में बहुत कहना चाहिए कि कड़ा व्यायाम, यह भी निषेध है। और ग्रीष्म ऋतु के समय में हल्का तरल भोजन लेना, और कहीं पर भी हम ग्रीष्म में अपने कार्य के कारण से कहीं पर भी हम जब प्रस्थान करते हैं, कहीं जाते हैं, सिर पर गमछा होना चाहिए, और गर्मी से बचाव के सभी उपाय करके हमें जाना चाहिए। पर्याप्त जो है पानी पीते रहना चाहिए, शरीर में पसीना बहुत होता है तो उसे नमक की कमी ना हो, यह ध्यान में रखते हुए इसका भी उपयोग करना चाहिए। प्रातःकाल जो है आयुर्वेद ने ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही उपयोगी माना है
0: जी।
1: सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटा पूर्व जागरण, और साथ ही जागरण करने के उपरांत जो है आप एक अच्छे शौच के उपरांत आप अपने शरीर के लिए कुछ समय दें। योग है, प्राणायाम है, व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है, ये सबको अपने अपने शरीर के हिसाब से, अपने अपने सुविधाजनक हिसाब से, यह सभी प्रकार का कार्य व्यायाम इन्हें करना चाहिए। व्यायाम से जो है शरीर का दृढ़ीकरण कहा गया है आयुर्वेद के अंदर में, व्यायाम से जो है आपके रूप और आपके कांति में निखार आती है ये कहा गया है, और व्यायाम जो होता है वो अग्निवर्धक होता है
0: जी।
1: अर्थात हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, और उसके बाद जब हम आहार करते हैं तो वह समग्र रूप से पचता है, और समग्र रूप से पचा हुआ आहार जो है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण करता है, जिससे हमारे शरीर में न रक्त की कमी होती है, न हमारे शरीर का अस्थि क्षय होता है, न हमारे शरीर का मांस क्षय होता है, और हम एक बलिष्ठ और सुंदर रूपमान और एक शक्तिशाली और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में इस जीवन का आनंद ले सकते हैं
0: जी। जी जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आज आपने राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुर्वेद से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में जो जानकारी दी वो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण थी, और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता डॉक्टर साहब की कही गई बातों का पूरा ध्यान रखें और बीमार ना हो इसके लिए कार्यक्रम में आज जैसा बताया गया है इस प्रकार की खान पान और इस प्रकार की दिनचर्या को अपनाने की कोशिश करें। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आप सुन रहे थे राष्ट्रीय आयुष मिशन और बीमारियों से सुरक्षा पर छत्तीसगढ़ आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुनील दास से रमाशंकर की बातचीत। मीडियम व्यू एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं, प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें आइए सुनते हैं गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला।
1: श्रोताओं नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, प्रदेश में मौसम का मिजाज पिछले करीब एक हफ्ते में बदला है। हालांकि भीषण गर्मी का दौर फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे मौसम में लापरवाही स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लोगों को डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त, चक्कर आना, सरदर्द, बुखार और लू जैसी गंभीर समस्याओं की चपेट में ला सकता है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बाहर काम करने वाले लोग इस मौसम में अधिक जोखिम में रहते हैं। लू लगने के मामलों में हर साल बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन सही जानकारी और समय पर सावधानी बरतकर इससे बचा जा सकता है। आखिर लू लगने के प्रमुख लक्षण क्या है, किन परिस्थितियों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, गर्मी के दिनों में खान पान कैसा हो, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं और धूप में निकलते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के रायपुर जिलाधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय जी। श्रोताओं, हम डॉक्टर राय से गर्मी से बचाओ, लू के लक्षण और स्वस्थ रहने के जरूरी उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है, हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: देखिए, गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है शरीर को कभी भी डिहाइड्रेट ना होने देना, मतलब शरीर में पानी की कमी ना होने देना। साथ ही सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। ढीले सूती कपड़े पहनना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहने। घर के अंदर पंखा, कूलर, एसी का इस्तेमाल करें, लेकिन अचानक ठंड से गर्म में ना जाएं, ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी पानी और नारियल पानी का हमेशा सेवन करते रहना है। और पुरानी बीमारियों के जितने भी मरीज हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग और किडनी से संबंधित रोगों के जो मरीज हैं, समय समय पर दवा लेते रहें और अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क बनाए रखें।
1: डॉक्टर साहब, ये हीट वेव जिसे लू भी कहते हैं और सामान्य गर्मी में क्या फ़र्क होता है, किस तरीके से ये आमजन को प्रभावित करती है?
2: देखिए, सामान्य गर्मी में वातावरण का तापमान बढ़ जाता है लेकिन इसे शरीर सहन कर लेता है। हीट वेव की कंडीशन तब मानी जाती है जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो जाए या पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो जाए। यह स्थिति कम से कम 2 या 3 दिन तक लगातार बनी रहे तो उस स्थिति को हम हीट वेव की स्थिति कहते हैं। हीट वेव में शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता बहुत तेज़ी से कम हो जाती है, खतरा कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इन मामलों में हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
1: हीट स्ट्रोक अगर लग जाए, लू जिसे कहते हैं, जो लू लग जाए, तो ये पहले बात तो ये कैसे पता चले कि अभी जो व्यक्ति है उसे लू लग चुकी है और उससे किस तरीके से बचाव किया जाए?
2: देखिए, लू लगने के शुरुआती जो संकेत होते हैं उसमें व्यक्ति को प्यास

0: ज्यादा लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी लगती है, उल्टी जैसा लगता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐठन होती है, पसीना आता है और साथ ही व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान लगती है। यह तो प्रारंभिक और मॉडरेट कंडीशन होती है, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी हीट स्ट्रोक कहते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है, पसीना आना बंद हो जाता है और जो मरीज बेहोश होने लगता है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है
1: जी।
0: हो सकता है मरीज को दौरे पड़ जाएं और चिड़चिड़ापन बेहोशी तक की स्थिति आ सकती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, हमें इसमें विशेष एहतियात बरतना होता है और तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है।
1: क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जो लोग बाहर काम करने के लिए अक्सर जाते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होता है?
0: देखिए, जो लोग घर से बाहर काम करने के लिए अक्सर जाते हैं उन्हें लू से बचने के लिए तमाम सावधानियों का ध्यान रखना होगा। सुबह 8 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद उन्हें अपने कार्य को करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही सफ़ेद हल्के रंग के टोपी गमछा का प्रयोग करना चाहिए, सिर को ढक कर रखना चाहिए और हर एक घंटे में लगभग 10 से 15 मिनट का उन्हें आराम करना चाहिए, छाया में रहना चाहिए। साथ ही पानी की बोतल और ORS साथ में रखना चाहिए। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि व्यक्ति को अकेले काम नहीं करना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए ताकि यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो तत्काल सहयोग मिल सके।
1: जी, मौसम चाहे कोई भी हो डॉक्टर साहब, बच्चों और बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी अलग बातों का ख्याल रखना होता है। किन किन बातों का खास ध्यान गर्मी के मौसम में बुजुर्गों और बच्चों के लिए रखना हो?
0: जी हाँ, आपने सही कहा, बच्चों और बुजुर्गों के लिए हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को दिन में बाहर खेलने जाने से रोकना चाहिए, वो धूप में न खेलें। साथ ही उन्हें इंडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके कपड़े सूती कपड़े होने चाहिए, ढीले ढाले हवादार कपड़े पहनाने चाहिए। बार बार पानी पिलाना चाहिए, ऐसा न हो कि केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना है। बिना प्यास लगे भी उन्हें समय समय पर पानी देते रहना है। डिहाइड्रेशन के लक्षण देखते रहना है, जैसे कम पेशाब का होना, होंठ सूख जाना, त्वचा का शुष्क होना, इन परिस्थितियों में विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही बुजुर्गों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं। बुजुर्गों को अकेले नहीं छोड़ना है, उन्हें समय पर दवाइयां देना है, कमरे को ठंडा रखना है, रोजाना शरीर का तापमान चेक करना है। यदि किसी भी तरह की समस्या आती है तो तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करना है।
1: जी, पानी के अलावा डिहाइड्रेशन कम करने के लिए और किस तरीके के आहार लेना चाहिए, क्या पेय पदार्थ लेना चाहिए?
0: देखिए, पानी के अतिरिक्त जो पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं और जिन्हें प्रेफरेंस देना चाहिए, उसमें नारियल का पानी लिया जा सकता है, छाछ या मठा सबसे अच्छा पेय माना जाता है, नींबू पानी लें, शहद नमक का सेवन किया जा सकता है, ORS दिया जा सकता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और चाय और कॉफ़ी लेने से बचना चाहिए, ये नुकसानदायक साबित हो सकता है।
1: जी, खान पान की बात चल रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने बताया कि किन किन पेय पदार्थों को पीना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन खाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके का खाना गर्मी के मौसम में ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को खाने के लिए?
0: जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। खाने पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गर्मी के दिनों में सादा भोजन का सेवन करना चाहिए। सादी भोजन में दाल, चावल, दही और सलाद का सेवन करना स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। सब्जियों में लौकी, तोरई, परवल, पालक, टमाटर का सेवन किया जा सकता है। फल में गर्मी में मिलने वाले फल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, संतरा, आम का सेवन किया जा सकता है। खाना आपका हल्का होना चाहिए, कम मसालेदार होना चाहिए और रात का खाना हल्का रहना चाहिए। साथ ही तला भुना मसालेदार स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए।
1: क्योंकि खान पान की ही बात चल रही है डॉक्टर साहब, बीते दिनों हमने देखा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आई, लोग बीमार हुए। तो पहली बात तो यह कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, ये कैसे हम पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग हुआ है? दूसरा यह कि इस तरह के मामले अक्सर गर्मी के मौसम में क्यों बढ़ जाते हैं?
0: देखिए, फूड पॉइजनिंग में गर्मी के दिनों में फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ जाते हैं, अस्पताल में इनके मरीज ज़्यादा आते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि या तो भोजन दूषित हो या बासी भोजन का सेवन किया गया हो। इन परिस्थितियों में फूड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, क्योंकि गर्मी में बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। यदि खाना बासी है, बाहर रखा हुआ है, तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। साथ ही दूध, मांस, मछली, मिठाइयाँ, ये सभी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब होते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमेशा ताज़ा भोजन का ही सेवन किया जाए।
1: जी, कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं गर्मी के मौसम में तेज़ी से फैलती हैं?
0: गर्मी के मौसम में बहुत सारी बीमारियाँ बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे डायरिया, फूड पॉइजनिंग,

0: चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, क्योंकि मच्छरों की भी संख्या बढ़ जाती है, साथ ही गर्मी से संबंधित बीमारियां, हीट रिलेटेड इलनेस, साथ में कई मरीजों को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने लगता है क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में पानी की कमी हो जाती है और पेशाब कम हो जाता है, तो इसकी वजह से उनके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और स्किन इन्फेक्शन भी इन दिनों काफ़ी बढ़ जाते हैं यदि मरीज फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट इस सीजन में ज़्यादा आने लगते हैं।
1: जी, मौसम बहुत लगातार अभी पिछले कुछ दिनों में बदला है, सुबह धूप और शाम को बारिश हो जा रही है, ऐसी परिस्थितियों में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: देखिए, सुबह धूप और शाम को बारिश हो रही है, ये बदलता हुआ मौसम में हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इन दिनों सुबह शाम जब पानी गिरने का समय बताया जा रहा है, इन समय हमें अपने साथ छाता, रेनकोट हमेशा रखना चाहिए ताकि हम भीगने से बचें, और सपोज़ यदि भीग जाते हैं तो भीगे हुए कपड़े में हमें ज़्यादा देर नहीं रहना है, इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ अचानक ठंडा गर्म होने से भी बचना चाहिए, शाम को मच्छर से बचाव जरूर करना चाहिए।
1: अब प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश हैं, डॉक्टर साहब, उसके बारे में बात करते हैं। प्रशासन किन किन बातों का निर्देश देता है और साथ ही क्या क्या व्यवस्थाएं जो हैं आम लोगों के लिए, जो गर्मी से बचाव के लिए जो शासन की जिम्मेदारी है वो दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होती हैं?
0: शासन स्तर पर गर्मी से बचाव के लिए, हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। हमारे जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएँ हैं, सभी संस्थानों में लू से बचाव के सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और मरीजों को ORS काउंटर बनाकर उन्हें ORS प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही यदि मरीज कोई गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है, हीट स्ट्रोक का मरीज है, गंभीर है, तो उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजकर उसके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।
1: आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत सारे हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, अगर वो बीमार पड़ रहे हैं या उनमें किसी तरीके के लक्षण आ रहे हैं तो उन्हें त्वरित तौर पर सबसे पहले क्या करना होगा?
0: देखिए, त्वरित तौर पर यदि किसी भी लू लगने के लक्षण लग रहे हैं तो प्रारंभिक अवस्था में तो घर में ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उन्हें तत्काल किसी छाँव में ठंडे स्थान पर लिटा दिया जाए, उनके बदन को गीले कपड़े से पोछा जाए और ORS का घोल पिलाया जाए। इन परिस्थितियों में सामान्य अवस्था तो कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन यदि मरीज बेहोश होने लगे, उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर होने लगे, तो तत्काल 108 नंबर पर फ़ोन करके जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर मरीज को हमें तत्काल पहुँचाना है ताकि उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
1: कहाँ कहाँ मिल सकती है स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य केंद्रों में किन किन स्वास्थ्य केंद्रों में किन किन जगहों पर किस तरह की व्यवस्थाएं शासन की ओर से की जाती हैं?
0: हमारे प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हमर क्लिनिक, सभी जगहों पर गर्मी और लू से बचाव के सारे संसाधन उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी के दिनों में क्या सिर्फ पानी पीना पर्याप्त है और डिहाइड्रेशन के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होता है?
0: नहीं, केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जाता है, क्योंकि प्यास लगना डिहाइड्रेशन का एक लेट साइन है, देर से आने वाला संकेत है। डिहाइड्रेशन के संकेत होते हैं गहरे पीले रंग का पेशाब होना, कम पेशाब का आना, सूखे होंठ, मुंह का सूखापन, थकान, चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द होना, त्वचा का सूखना। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोजाना कम से कम 3.5 से 4.5 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, काफ़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली है, अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या ज़रूरी सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: मैं सभी श्रोताओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि गर्मी से हमें लड़ना नहीं है, गर्मी के साथ जीना सीखिए, पानी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, शरीर की बातें सुनिए, थकान, चक्कर, कम पेशाब, ये सारी चेतावनियाँ हैं, इन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही समाज में बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई लक्षण दिखे तो तत्काल 108 पर कॉल करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के रायपुर जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंटवार्ता। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

0: बातों बातों में इस कार्यक्रम में आपने सुना गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुत करता थे विकल्प रंजन शुक्ला। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास की रचना। धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है और फिल्म है सती सावित्री।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश, नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।

0: अभी आपने सुना फिल्म दुनियादारी का एक गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। गीत लिखा था विश्वेश्वर शर्मा ने और संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

लीजिए सुनिए आनंद बख्शी की रचना, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, स्वर हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के, और फिल्म का नाम है मांग भरो सजना।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

अभी आपने सुना फिल्म सुहागरात का गीत, आवाज़ तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीत लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत मदन मोहन का था। इसी के साथ चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। आप चित्रपट संगीत का आनंद पुनः सुबह 10:30 मिनट पर उठा सकेंगे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं अमचीरी बाई और साथी। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले अमचीरी बाई और जगदीश कुलदीप के स्वर में सुनते हैं ये गीत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, इसमें छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार थी अमचीरी बाई और साथी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में द्वीपती योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य शासन 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाएगा। ये अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए द्वीपती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी, जिन्हें सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसी ऊर्जा सुविधाओं का संचालन करेंगी। योजना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर के कुछ समूह पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाने के बाद अब विभिन्न जिलों में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप को बरामद करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसके लिए सुरक्षा बलों द्वारा सतत रूप से अभियान चलाया जा रहा है। कांकेर जिले में इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप से 50 से अधिक हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया है। इसमें SLR 303 राइफल, सिंगल शॉट देसी गन, BG

0: लॉन्चर, भरमार बंदूक, देशी कट्टा और कुकर बम सहित विभिन्न हथियार शामिल हैं। जगदलपुर में कल डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के लगभग 180 ग्रामीण डाक सेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए महानिदेशक डाक सेवाएं जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक दूरस्थ क्षेत्रों में डाक, बैंकिंग, बीमा और सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कल वर्चुअल माध्यम से मनेन्द्रगढ़ में कुटुम्ब न्यायालय के नए भवन और जनकपुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के बैगा बहुल ग्राम सिंघारी में विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 50 सीटर छात्रावास भवन का भूमि पूजन किया। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने विधानसभा थाना क्षेत्र में 620 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में द्वीपती योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, पेश है कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम में ये सबसे पहले सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां की आवाज में मनोज मुंतशिर की रचना। संगीत तनिष बख्शी का है और फिल्म का नाम है बादशाह।

अभी आपने सुना डेंजरस इश्क का ये गीत, आवाज़ थी राहत फतेह लिखा और तुलसी कुमार की, गीत लिखा था शबीर अहमद ने और संगीत हिमेश रेशमिया का था। लीजिए अब सुनिए मनोज शानंद किरकिरे की रचना, इसे संगीत से संवारा है शांतनु मोहित्रा ने, आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और बोनी चक्रवर्ती की, फिल्म का नाम है बॉबी जासूस।

और शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंद

लीजिए अब कुमार की रचना सुनिए। संगीत राघव सचर का है और आवाज़ें हैं तुलसी कुमार और राघव सचर की। फिल्म का नाम है बिट्टू बॉस।

आइए अब सुनते हैं जावेद अली की आवाज में संजय मासूम की रचना, संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है जन्नत 2।

नई फिल्मों से। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे मीडिया वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का, ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कामचोर से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत राजेश रोशन का है।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइस। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

आइए अब सुनते हैं रवि के संगीत से सजी फिल्म खानदान का ये गीत। रविंद्र कृष्ण के बोल हैं और आवाज लता मंगेशकर की।

आइए अब सुनते हैं फिल्म हरियाली और रास्ता का एक गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जय किशन का है।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए एक सूचना। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 19 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेषज्ञ मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 को 11:30 पर से लेकर 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म भरोसा का एक गीत। संगीत रवि का है, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म भरोसा का एक गीत, आवाज थी महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत रवि का था। इसी के साथ चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबूधाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. दग्गुबाती पुरेंद्रेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। निचले सदन के सदस्यों में हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में सुधा मूर्ति, पीटी उषा और स्वाति मालीवाल सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां स्थापना राज्य मना रहा है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था।

0: बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होना है। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडर मौसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म खानदान के इस गीत से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल है नक्श लायलपुरी की और संगीत खय्याम का है।

0: अभी आपने सुना लता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी फिल्म आसपास का गीत। बोल आनंद बख्शी के थे और आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर। सुना

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत से सजी फिल्म देश परदेश का गीत। इसे लिखा है अमित खन्ना ने, आवाजें हैं किशोर कुमार, अमित कुमार, मनहर और विजय की।

आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा था राहुल देव बर्मन ने। आवाजें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा। आइए एक बार फिर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वर में सुनते हैं गुलशन बावरा की रचना। संगीत एक बार फिर राहुल देव बर्मन की है। फिल्म का नाम है कस्मे वादी।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

सौदागर, देश परदेश, आसपास, खानदान, कस्मे वादे, हरे कृष्णा हरे रामा, डॉन आदि फिल्मों के गीत सुने। इसी के साथ सदाबहार नगमे का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:45 हुए हैं। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बागेश्वरी देवी का दादरा गायन। इसके बोल हैं चलो रे नैनो मिलाए परदेसिया। तबले पर आपके साथ संगति की है सती शंकर पांडा ने। हारमोनियम पर हैं सतीश इंदूरकर और वायलिन पर हैं हिमांशु विश्वरूप।

0: अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बागेश्वरी देवी का गाया धाधरा। आपके साथ तबले पर संगत की थी सती शंकर पांडा ने, हारमोनियम पर थे सतीश इंदुरकर, वायलिन पर हिमांशु विश्वरूप। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं, अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं, आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार आप सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और गोला बारूद बरामद, और महासमुंद पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव की बात है। राज्यपाल रमन डेका ने कबीरधाम जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्यपाल ने हर पक्के भवन और प्रधानमंत्री आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने तथा खेतों में डबरी निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए डंप से 50 से अधिक हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया है। इसमें एसएलआर 303 राइफल, सिंगल शॉट देसी गन, बीजीएल लॉन्चर, भरमार बंदूक, देशी कट्टा और कुकर बम सहित विभिन्न हथियार शामिल हैं। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 14 मई को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे कार से ओडिशा ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहन को रोक लिया और अपहृत युवक को सुरक्षित मुक्त कराया। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने उधारी की रकम वसूलने के लिए युवक का जबरन अपहरण किया था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार जब्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील का समर्थन करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने आवास से संकल्प भवन तक 3 किलोमीटर साइकिल चलाई। इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और वर्चुअल मीटिंग को फिर शुरू करने का आह्वान अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच व्यापक राष्ट्रीय हित में है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कल वर्चुअल माध्यम से मनेन्द्रगढ़ में कुटुंब न्यायालय के नए भवन और जनकपुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जगदलपुर में कल डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के लगभग 180 ग्रामीण डाक सेवकों ने हिस्सा लिया। बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी के पुनर्जीवन और इको रिवरफ्रंट विकास परियोजना के तहत कल यूएवी ड्रोन सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया। बिलासपुर में 7 वर्ष पहले 2019 में हुए विराट अपहरण कांड में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी 5 आरोपियों की अपील खारिज कर उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। और आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देशभर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने राज्य के पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग

0: द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों और नागरिक केंद्रित सुधारों की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और गोला बारूद बरामद और महासमुंद पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे हैं। आकाशवाणी संग्रहालय से अब प्रस्तुत है धारावाहिक हमन आन छत्तीसगढ़िया का भाग 16, उरांव जनजाति। लेखक हैं श्री तपन बनर्जी और प्रस्तुतकर्ता हैं लखनलाल भौर्या।

0: कवि हृदय को उद्वेलित करने वाली सांवली सलोनी, उरांव कन्या के माथे पर गुदी हुई तीन रेखाओं का रहस्य क्या है? चांद से मुखड़े को बुरी नजर से बचाने के लिए कोई ढिठोना है, या सौंदर्य को द्विगुणित करने के लिए रचा गया कोई श्रृंगार, या जातीय स्मृति से जुड़ने वाला कोई प्रतीक चिन्ह? इसका सटीक उत्तर श्रीमती प्रेममणि के पास है।
1: हमारे पुरखे लोग जब रोहतासगढ़ में थे तो उस समय युद्ध हुआ करता था, और फिर युद्ध हुआ तो हमारे उरांव जनजाति लोग तीन बार विजय हासिल किए, तो वो तीन बार विजय हासिल करने का ही ये माथे पर तीन डंडे का निशान गोदना के रूप में गुदवाए, और वो आज तक प्रचलित है। और उसके बाद फिर घुटने में भी गोदना गुदवाते हैं, और फिर पैर में गोदना गुदवाते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि पहले जमाने में हम जब मर जाएंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं साथ में जाएगा, गोदना है ये कभी मिटता नहीं है, हम मर भी जाएंगे चला जाएगा हमारे साथ में। ऐसे
0: उरांव समाज में गोदना की अपनी ही महिमा है, वो श्रृंगार का स्थायी स्वरूप है। उरांव समाज पर गहन शोध करने वाले बोनिफास तिर्की कहते हैं,
2: रोहतासगढ़ से जब उरांव लोगों को पलायन करना पड़ा तब उन्होंने क्या किया, अपनी महिलाओं को, अपने बहु बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए या उनके लिए एक पहचान देने के लिए उन्होंने गोदना शुरू किया, और इस गोदने में उनके कपाल में तीन खड़ी लकीर का गोदना उन्होंने करना शुरू किया, और साथ में पैरों में एड़ी का पूरा हिस्सा गोदना से भरती थी। इनका मतलब होता था, लोग जैसे अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार भूत प्रेतों पर विश्वास जरूर करते थे, और इसलिए जो बुरी नज़रें हैं उनसे बचने के लिए गोदना उन्होंने लगाना शुरू किया था।
0: गोदना के अलावा भी श्रृंगार के प्रति स्त्रियों में सहज आकर्षण होता है।
1: कान में पहनते थे, ताड़पत्ता से बना रहता था, और फिर कान को बड़ा सा छेद करके उसमें डाल के पहनते थे, और फिर गले में हंसली बोलते हैं, चांदी का या गिलट का बना होता था, हंसली पहनते थे, और फिर ये लाल लाल जंगल में फलता था, बीज होता है एक घुनसी करके बोलते हैं उसको, तो उसको गूंथ करके लोग बाग गले में भी पहनते थे, और फिर हाथ में, बाँह में, कलाई में ये हल्का और बाजू कहते हैं उसको, ये दोनों हाथ में, कलाई में और बाँह में पहनते थे, और पैर में पैजनी पहनते थे।
0: सरगुजा में निवास करने वाली जनजातियों में उरांव एक प्रमुख जनजाति है। इसके आदि स्थान के बारे में इतिहासकारों में

0: मत भिन्नता है, किंतु इस बात पर सभी सहमत हैं कि इनके आश्रय और विस्तार में छोटा नागपुर के पठार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरगुजा, जशपुर, उत्तरी उड़ीसा, रांची और पलामू क्षेत्र में इनकी सर्वाधिक आबादी बसती है। इनकी उत्पत्ति के बारे में बोनिफास तिर्की कहते हैं,
1: मनीषी जिन्होंने कुरु जाति पर काफ़ी गहन अध्ययन किया है, उनकी राय है कि उरांव लोग दक्षिण भारत में, जिसको हम कहते हैं कर्नाटक का एक हिस्सा, डेक्कन, कोंकण का क्षेत्र, यहाँ तिन्नेवेल्ली शहर के पास में तम्बरापर्णी एक नदी है, उसी के तट पर एक गांव है कोरकई। वैज्ञानिकों की राय है कि यह जाति इसी कोरकई नामक जगह से ही उत्पन्न हुई है और यह कोरकई कुरुख शब्द से समानता रखती है और इसी समानता को लेते हुए उरांव लोग अपने आप को कुरुख कहते हैं, जिसको हम उरांव में ही अगर कहें तो व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँगा एन कुरुखन और बहुवचन में कहेंगे नाम कुरुखत। वहाँ से कोरकई नामक स्थान से निकलकर उरांव पश्चिमी समुद्री तट से होते हुए नर्मदा नदी के मुहाने तक पहुँचे और नर्मदा नदी को ही अपना पथ बनाते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़े और पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए उन्होंने विंध्याचल और अमरकंटक पार करते हुए बिहार के शाहबाद जिले में प्रवेश किया और जहाँ पर उन्होंने रोहतासगढ़ नामक गढ़ स्थापित किया और वहाँ वर्षों तक वे अपना शासन करते रहे।
0: उरांव समुदाय का हर सदस्य गर्व से बताता है कि कभी बिहार के रोहतासगढ़ में उनके पूर्वजों का शासन था। जो इतिहासकार ये मानते हैं कि उनका विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ है, वे भी रोहतासगढ़ को मान्यता देते हैं। कुछ इतिहासकार उरांव जनजाति के आव्रजन को उत्तर से दक्षिण की ओर मानते हैं।
1: एक दूसरी राय के अनुसार ये उरांव सबसे पहले सतलज नदी के किनारे हड़प्पा में पाए जाते थे, जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व तक उनके कुछ अवशेष के साक्ष्य मिलते हैं और वह बाह्य आक्रमण की वजह से वे वहाँ से पलायन गए और उन्होंने हरियाणा और यमुना के समतल मैदानों से होते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जैसे आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर होते हुए, वे भी पहुँचे कहाँ, वही रोहतास, और यह है शाहबाद जिला में, और यह समय था लगभग ईसा पूर्व 800 और 900 के बीच। और रोहतासगढ़ में उरांव वर्षों तक शासन करते रहे, अपना शासन व्यवस्थित किया, जो कि पंचायत की व्यवस्था थी, और वहाँ से उनका पलायन शुरू हुआ ईसा पूर्व 100 साल पहले। रोहतासगढ़ से पलायन करते हुए उरांव दक्षिण की ओर बढ़े और जो वर्तमान में छोटा नागपुर का वह हिस्सा अभी झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा है, इसी क्षेत्र में वे आकर बस गए।
0: उरांव समाज की स्मृतियों में सुदूर अतीत तक वनों की घनी छाया बसती है। वनों में ही इनके धार्मिक विश्वास और आस्था ने जन्म लिया है। वन और वन्य प्राणियों से ही इनके गोत्रों का जन्म हुआ है। इनके पर्व और उत्सवों का सीधा संबंध वनों से है। छोटा नागपुर का पठार साल वनों के लिए प्रसिद्ध रहा है। साल वृक्षों की पूजा अर्चना में उरांव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस पर्व को सरहुल कहा जाता है। निर्मल राम कहते हैं,
2: जब सराय में फूल आ जाता है तब जो है सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। इसमें लोग जो है जब नया फसल बोनी का जो त्यौहार होता है यहीं से जो है शुरू हो जाता है। त्यौहार को जो है पूरे गांव के लोग जो है और बैगा ये सराई पेड़ के नीचे जो है पूजा पाठ करता है। गांव वाले आते हैं और वहीं पर जो है ये गांव के जितने भी नाचने गाने वाले हैं सब मांदर ढोला जो है लाके जो है वहीं पर सरहुल त्यौहार मनाते हैं।
0: उरांव समाज में दो वर्ग हैं, धर्मांतरित और पारंपरिक, लेकिन सरहुल का उत्सव दोनों ही वर्ग धूमधाम से मनाते हैं। पी तिर्की कहते हैं,
3: जहाँ जहाँ सराय का झुंड रहता है वहाँ वो सरना के नाम से उन लोग जानते हैं और वहीं पे उन लोग साल में एक बार ये सरना पूजा के नाम पर सब जमा होते हैं और वहाँ जैसे मुर्गा का छोटा छोटा बच्चा को लेके वो चावल के साथ खिचड़ी पकाते हैं और उसका सेवन करते हैं और वहीं पे जैसे हड़िया उड़िया कुछ बनवाते हैं और गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग केवल सरना पूजा में सम्मिलित होकर हड़िया

0: और खिचड़ी भात का सेवन करते हैं।
1: सामाजिक उत्सव के समय डोमकच गाया जाता है। इसके गीत समाज में अत्यंत लोकप्रिय हैं।

0: उरांव समाज में विवाह के बंधन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। समाज में तलाक की इजाजत नहीं है। विवाह के रस्म पारंपरिक होते हैं। इशाक एक्का कहते हैं,
1: लड़के के माँ बाप गांव के कोई बुजुर्ग अगुए को ले जाकर के शुरू में 2-3 जन जाते हैं। इसको हम लोग उरांव भाषा से बोलते हैं डंडा हिरना। जब हम लड़की देखने जाते हैं लड़की के घर में, उस समय एक डंडा ले जाते हैं साथ में 2-3 बुजुर्ग जाते हैं, 1-2 महिलाएं भी जाती हैं, तो इसको डंडा खेरना कहते हैं। बाद में जब ये लोग जाते हैं उसके पश्चात में यदि लड़की पक्ष को सहमति है तो फिर वो डंडा को वहां खोस के लौटे रहते हैं, उस डंडे को फिर लड़के के पक्ष में लेकर आते हैं। उसके लिए ये लोग खबर करते हैं कि हम लोग अमुक दिन को आपके यहाँ डंडा लौटाने जा रहे हैं। तो उधर से भी लड़की पक्ष से भी मेडिएटर के रूप में गांव वाले बुजुर्ग लोग आते हैं, के बाद में फिर तब लड़के पक्ष में डंडा को वापसी करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने जो डंडा लड़की देखने गए थे और जो डंडा हमारे यहाँ रखे थे उस डंडे को तब हम लोग वापस कर रहे हैं, आप लोग जो रिश्ता लेकर के आए थे रिश्ता हमें स्वीकार है।
0: उरांव समाज में दहेज का रूप एकदम भिन्न है। नकदी रकम का आदान प्रदान नहीं होता, अलबत्ता चावल या दूसरे किस्म के अनाज का लेन देन होता है।
2: तो वो तय होता है कितना लेना है, 2 खाड़ी लेना है, 3 खंडी लेना है चावल दाल, इस प्रकार से तय होता है। 2 खंडी 3 खंडी ऐसे दाल तेल लिया जाता है और उसके बाद में वहीं पे शादी का दिन तारीख रखा जाता है। लड़की पक्ष को देना होता है। इसमें नकदी का लेन देन नहीं होता है, सिर्फ चावल दाल लेन देन होता है। और जैसे उसी चावल दाल को जैसे हम बारात जाएंगे, इधर से लड़के पक्ष से बारात जो जाएगा उसी को खिलाएगा वो।
0: उरांव समाज में कुड़ुक सादरी और सरगुजिया बोली बोली जाती है। लोकगीत भी इन तीनों जबान में गाए जाते हैं। शादी के उत्सव में जम कर नाच गाना होता है।

0: उड़ाव में शगुन विचार भी होता है।
1: अपशकुन भी हमारे रीति रिवाज में देखा जाता है कि जब लड़की देखने जा रहे हैं, मान लीजिए रास्ते में जाते समय कोई खाली घड़ा लिए हुए पानी भरने जा रहे हैं तो उसको अशुभ माना जाता है। साथ में जब वो ये लोग पहुंच जाते हैं, मान लीजिए सुबह का समय में पहुंच गए हैं और घर द्वार झाड़ू बुहार हो रहा है तो फिर उसे भी अशुभ मानते हैं। और जब लड़की देखने जाते हैं शुरू में, उस समय भी ढिबरी या लालटीन जो कुछ भी मतलब प्रकाश करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ढिबरी या लाल

0: लालटेन उसको रात भर जलाए रखते हैं। मान लीजिए वो लालटेन या ढिबरी रात में बुत गई, उसको भी अशुभ माना जाता है और बात वहीं से कटुफ कर दिया जाता है, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती है। उल्लू का बोलना और साथ में सियार का बिल्ली का रास्ता को काटना ये भी अशुभ माना जाता है, और जब ये हो जाता है तो फिर वहीं से वापस लौट जाते हैं।
1: विवाह के अवसर पर शगुन विचार का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि शादी के गीतों में प्रकृति पूरी तरह गुंथी होती है। इस लोकगीत में कहा गया है कि जेठ के महीने में कोयल बोलती है और आषाढ़ में झिंगूर, किंतु फागुन के आते ही मनुष्य का मन आह्लादित हो उठता है और तन थिरकने लगता है।

0: उरांव जनजाति में जन्म संस्कार धूमधाम से संपन्न किया जाता है। प्रसूता जब तक शुद्ध नहीं हो जाती तब तक छूत माना जाता है। फिलोमन टोप्पो कहते हैं,
1: हम लोग के समाज में उरांव सब जनजाति में उसको कुसुरैन बोलते हैं। वो महिला लोग जो एक या दो महिलाओं को बुलाते हैं कुसुरैन बोलते हैं उनको। तो ही महिला लोग जब तक उनके बच्चे नहीं हो जाते हैं तब तक मतलब उनको देखरेख करते रहते हैं और वहां दूसरे लोगों को और अन्य पुरुष वर्ग सबको जाने नहीं देते हैं। वहां पे तो महिला लोग ही उनकी देखरेख करते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उसका नाभि वो तांबे के सिक्का में काटते हैं और उसको वो छुरी से काटते हैं। जब नाभि को काटते हैं तो उसको रस्सी से बांध देते हैं और उसको बुडरी काटना बोलते हैं। और बच्चा पैदा हो जाने के बाद जब तक नाभि नहीं गिरता है तब तक उसको छुआछूत मानते हैं, उसको घर के अंदर खाना पीना बनाने के लिए नहीं देते हैं। जब नाभि गिर जाता है उसकी माँ वो दरवाजा के पास ही गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं। उसके बाद में वो नहाने जाती है और नहा धो के आती है और उसी दिन से उसका छुआछूत खत्म होता है।
2: इस तरह जब नहाने के लिए जाती है कुआं में या नदी में या झरने के पास, नहा धो लेती है तो फिर कुएं में जो लकड़ी का होता है उसमें वो सिंदूर लगा के आती है। उसी से पूरा जानकारी हो जाता है कि अब ये पवित्र हो गई है, अब वो कहीं भी आ जा सकती है या कहीं भी आ सकती है।
0: शिशु के आगमन पर परिवार पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। चारों ओर उत्सव का माहौल बन जाता है। नृत्य गीत से नवजात का स्वागत किया जाता है।

0: छट्ठी करते हैं, उनका बाल उतारते हैं। तो बाल उतारने के लिए भी जो उनके बच्चे के भाई हो या तो उसके दादा हो, वो सब मतलब कि उसके बाल को उतारते हैं। फिर उसको एक दोना में रखते हैं, बाल को दोना में रखने के बाद में उसको एक बर्तन लाते हैं, कांसे का बर्तन, और या तो उसमें पानी रखते हैं। फिर धान लाते हैं एक दोना में, और उसमें पहले पितर उतारते हैं। पितर उतारने के लिए एक दाना धान को मतलब कि पूरा उसके छिल निकालेंगे, उसके उसको डालेंगे ईश्वर के नाम से। उसके बाद में वहां जो उपस्थित रहते पंच के नाम से डालते हैं। उसके बाद में उसका जो पितर उतारते हैं, जिसके नाम से पितर उतारते हैं, तो उसके शुरू में तो उसके दादा के नाम से करते हैं। तो अगर वो तीनों अगर जुट जाता है तब वो बोलते हैं कि हाँ उसके पितर मतलब कि दादा के पितर से है। और यदि वो नहीं जुमते, अलग अलग मतलब कि घूमता है पानी में तैरता है, तब उसकी दादी के नाम से उतार और दाना डालते हैं। जब उससे भी जब नहीं पकड़ता है तब उसके नाना के तरफ वाला को लेते हैं। तो वो यदि वो सब मिल जाते हैं तब बोलते हैं कि सब वो नाना नानी दादा दादी सब आए हैं बोल के, और नहीं मिलते तब तक डालते रहेंगे उसको। और जिसको देखेंगे जिसके नाम से वो दाना सट गया, वो पंच वो पहले उसको सटाते हैं। अगर वो दोनों सट जाता है तब बोलते हैं कि हाँ इसके नाम से पीतर है। जब वो सट जाता है तो उसको पानी में डुबा देते हैं। पानी में डुबाने के बाद में पानी को छानी में फेंक देते हैं या तो बच्ची के ऊपर ही डाल देते हैं उसको, और बच्ची को लेके जहां पानी गिरता है छानी से वहीं पर सुला देते हैं वहां पे। और उसके बाद बाल जो उतारते हैं उसको लड़की रहती है उसको नदी में बहा देते हैं, और लड़का रहता है या तो उसको डाड़ी वो कहीं चुआ रहता है पानी उस जगह में लेके रख देते हैं। और वो मानना है कि ये दोनों बाल मतलब कि बरसात में बह के जिसे वहां दोनों मिलते हैं आगे जाके, जो जिस लड़की के साथ मिलता है या तो लड़के के साथ मिलेगा उसी के साथ उसकी शादी का संबंध जुड़ता है, इससे मतलब कि विश्वास था उस समय।
1: पारंपरिक उरांव समाज में महुआ से बनी शराब और अनाज से बने हड़िया का चलन काफी ज्यादा है। सरगुजा की जनजातियों में ऐसे मनीषियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने शराब के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ा। इनमें राजमोहिनी देवी और गहिरा गुरु के नाम उल्लेखनीय हैं। गहिरा गुरु का पारंपरिक उरांव समाज पर गहरा असर पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने मांस मदिरा का त्याग किया और भगत कहलाए जाने लगे, लेकिन पारंपरिक आस्था और विश्वास की धारा वैसी ही बहती रही। अंधविश्वास बना रहा। हारी बीमारी में डॉक्टर से ज्यादा भरोसा बैगा पर किया जाता रहा।
2: जैसे गांव में एक बैगा के नाम से जाना जाता है, अभी भी मतलब वो खत्म नहीं

हुआ है गांव में कि एक मुखिया पुजारी रहता है जिसको बैगा कहते हैं, वही मतलब पूजा पाठ करता है, कहीं मतलब एक जगह निश्चित करके कहीं पाठ हो या ये सरना हो, तो वहीं वो कोई भी गांव में घर में बीमारी आता है पशु पक्षी जानवर के लिए या आदमियों के लिए, तो उनका विश्वास है कि नहीं भगवान मतलब हम लोग से नाराज हो गया, और इसीलिए उन लोग वहीं पे मतलब वो बैगा को बोलते हैं, तो वो मुर्गी उर्गी इसको काट के मतलब उसके

0: अब जैसे बुखार भी आ जाता है तो तेज बुखार हो जाता है या माथे में चढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाने के बाद बच्चा या कोई भी व्यक्ति सीरियस हो जाता है, तो फिर ये बैगा लोग जो होते हैं ओझा मती करने वाले, उनको बुलवा के फिर सुपा मंगवाते हैं। सुपा फिर थोड़ा चावल करके फिर उसको अपना जो मंत्र है जिस बीमार व्यक्ति के पास रख करके फिर वो सुपा में हाथ लगाता है और बजाता है सुपा को, फिर अपना जो मंत्र है उसको बोल बोल करके उसको उस बीमारी को या उसके ऊपर कोई भी शंका समाधान है अंधविश्वास का जो है उसको हटाने की वो मंत्र पढ़ता है।
1: अन्य जनजातियों की तरह उराव में भी गोत्र का बहुत महत्व है। गोत्र की उत्पत्ति प्रकृति के उपादानों से हुई है।
2: हम लोगों को ये पता है कि एक्का को बोलते हैं गोत्र में केछुआ, किंडो बोलते हैं वो भी मछली होता है, मींज बोलते हैं वो भी मछली होता है, खेस बोलते हैं वो धान होता है, बंदर जो कहते हैं तिग्गा गोती है, टोपो होते हैं वो भी केरकेटा होते हैं, चिड़िया होता है।
1: कुड़ुख एक समृद्ध बोली है। शोधकर्ताओं ने हाल फिलहाल कुड़ुख बोली का शब्दकोश तैयार किया है। कहा जाता है कि इस बोली की पहले लिपि भी थी।
3: कहा तो जाता है कि कुड़ू बोली की स्क्रिप्ट है जो कि उराव के लंबे प्रवास के दौरान कई उथल पुथल से गुजरते हुए उन्होंने वह जो लिपि है वह खो दिया है, और अभी झारखंड में इसके लिए कुछ जोर किया जा रहा है जो कि एक नई लिपि का इजाद किया गया है जो अभी तक प्रचलित नहीं हुआ, प्रचलन उसका नहीं हुआ है। झारखंड सरकार उसको बढ़ावा जरूर दे रही है, परंतु अभी तक कि उराव लोगों के उनकी अपनी लिपि थी उसके लिए स्पष्ट और कहें कि प्रमाणित कोई सबूत अभी हमारे हाथ में नहीं है।
1: धर्मांतरित उराव मृतक को दफनाते हैं, जबकि पारंपरिक उराव सुविधा अनुसार दोनों प्रथाएं अपनाते हैं।
4: मर जाते हैं तो अपने अपने आदमी को सबको बुलाते हैं और आ जाते हैं तो उसको नहवाते हैं, धोवाते हैं और तेल उल लगाते हैं और मस्त सिंगार के घर से दफना निकल ले जाते हैं। जलाते भी हैं, दफनाते भी हैं, दोनों करते हैं। और वहाँ ले जाके धान ले जाते हैं और दाल उल ले जाते हैं। मरने के बाद अब खाना बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, वहाँ गड्ढा के पास चाहे वो लकड़ी के पास ले जाके वहाँ डालते हैं, फिर जला देते हैं।
1: समय के साथ उराव समाज के रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं और रहन सहन में बहुत फर्क आया है, किंतु एक चीज आज भी नहीं बदली। यह समाज अपने पुरखों को बेहद शिद्दत से याद करता है। उनकी स्मृति में प्रतिदिन भोजन से पहले एक छोटा सा अंश जमीन पर डाला जाता है। पुरखे ही तो थे जिनके कारण आज भी उनका अस्तित्व बना हुआ है। पुरखों को याद किए जाने वाले गीतों में कृतज्ञता का भाव स्पष्ट महसूस किया जा सकता है।

आकाशवाणी संग्रहालय से जो केंद्रित था औरांव जनजाति पर। लेखक थे श्री तपन बनर्जी और प्रस्तुतकर्ता थे लखनलाल भौर्य। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।

आपकी मीत ये गीत सुन रहे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के आपके मीत ये गीत कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम के पहले गीत के लिए फरमाइश अपने पोस्टकार्ड्स में भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। भूमिया सांकरा से विष्णु साहू, लक्ष्मीन साहू, दीपक कुमार, रोशन कुमार, खुशी कुमारी साहू, पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान, पूजा प्रधान, अरमरी खुर्द दुर्ग से चूरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे, त्वेषा और अक्षत वार्डे, सिर्री गातापार से लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज, प्रभुराम साहू, पेलर गांव सिहावा पर्वत अंचल से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, रहमानिया चौक भाटापारा से मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नईम और मोहम्मद ताहिर, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन, शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, करही भदर से पुरुषोत्तम भाई निर्मल, शारदा देवी निर्मल, लोचन विद्यार्थी, लल्ली गिन्नी और परी। इसी गीत को सुनवाने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने अपने ईमेल में की है। सहसपुर लोरमी से सतीबाई साहू, उर्वशी, माही, अंशु, दामिनी, पार्वती, रामकिशन साहू, सहसपुर से छोटकू, मोहित, मोहित राम, लोकेश, रामकिशन, दुलीचंद, सत्यम साहू, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, भूपेश, दीपेश वर्मा, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरु शब्द सिंह राहुल, मरकोना भाटापारा से लक्ष्मी नारायण यदु, वैभव यदु, फुलझर घटारानी गरियाबंद से योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान साहू, हर्षिता साहू, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, नेवई उतई से विक्की देवांगन, उर्वशी, जतिन, जयंत, कोनिका देवांगन, टेकापार बालोद से चिंताराम यादव और रवि प्रकाश यादव, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान, पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू, गणेशधाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतिन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, मेघा, नेहा, येशु भीमटे, नांदघाट कातल बोर्ड से भागसिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, धरसीवा बस स्टैंड से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था यादव, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर और एकांश गवहाणकर, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और कंवर कॉलोनी बढ़वा खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुने फिल्म एनिमल का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने, संगीत श्रेयस पुणारिक का है।

एनिमल फिल्म के इस गीत के बाद अब बारी है फिल्म शेरशाह के गीत की, जिसके लिए आवाजें असीज कौर, जुबीन नौटियाल और तनिष्क बागची की हैं। और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने पोस्ट कार्ड में की है हमारे इन श्रोताओं ने। बाजार पारा बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, भगवान सिंह राजपूत, बाटापारा से ही नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश यदु, आरती यदु, हथनीपारा भाटापारा से चोवाराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी वर्मा और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा, डोंगरगांव राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये, सिर्री गातापार से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका और पूनम साहू, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान, सिकंदर, अशरफ खान, अयाज अल्फैज खान, सादिया खान, बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानो, रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे।

शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी ओजल वर्मा, सुंदरपारा रोहासी से डगेसर राम साहू, घनश्याम साहू, नूतन, अलका जानवी और गौरव साहू। इसी गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने ईमेल्स में की है हमारे इन श्रोताओं ने। पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल और सावित्री बाई देवांगन, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, भड़गा कोदवा गोडान से श्याम से मरावी, राजकुमारी, रानी, रजनी, राहुल, पूजा मरावी, कुई ग्राम भंगी टोला से ननकाराम ध्रुवे, जामनबाई ध्रुवे, फिरत राम और मालती ध्रुवे, बागामोड़ा कोमाखान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, मेचका सोंढूर नगरी से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा, लिखिल और तरुणदीप नाग, बाजारवाड महासमुंद से भीष्मदास, नर्मदा, हिरमनी, दीपक और लक्ष्यदास, पलारी से नीलू देवांगन, संजू, ओम, वैभव और निधि देवांगन, बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, कोरासी से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता, दीपिका साहू, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, गुढ़ा सोनपुरी से दिलीप पाठक, रेखा, दीप्ति और दादू पाठक, ओबरेठी पारा भाटापारा से अनिता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू, कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णेन्द्र और साहिल चंद्राकर, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, सिंगारपुर पैलीमेटा से चिंताराम ध्रुवे, कामिन चंद्रध्वज, सानू ध्रुवे, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वी चौहान, माई इंदुरकर, शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी, नीरज, शुभम, सौरभ रावत, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नुहानकर, निर्मला नुहानकर, विशाल नुहानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेक, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन और पीहू स्वर्णकार। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म शेरशाह का ये गीत।

फिल्म शेरशाह के इस गीत के बाद कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत में अब बारी है पुष्पा फिल्म के गीत की, जिसके लिए आवाज़ जावेद अली की है। गीत लिखा है रकीब आलम ने, संगीत देवी श्री प्रसाद का है और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने पोस्टकार्ड में की है हमारे इन श्रोताओं ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, सिरमुंदा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई दामले, राजेंद्र कुमार दामले, कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी देवी, गीतिका लालिमा खिलेश, भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद, धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे, अमलीपदर देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची तिवारी, ममता तिवारी, सिमगा से सविता जैन, प्रदीप जैन, मोनिका, बीना, देवेंद्र और आदेश जैन, हरदेव लाल पारावाड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, दत्रेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना, लक्ष्मीना यदु, लालपुर से लुकेश साहू, समीर साहू और इसी गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने ईमेल्स में हमारे इन श्रोताओं ने की है। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम, आदिबा, दानिश, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारेमपुर बक्सर से राज एस डी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतम, संदीप उगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, नई दिल्ली उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, बन बघेरा जिला राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस सीताराम, साहिल कांगड़ा, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन, आशा देवी, गुरु तेग बहादुर मार्केट अहमदगढ़ पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, आफिया जावेद, जस्मीन शकीला, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन बिलासपुरिया, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष और कान्हा आदित्य देवांगन, पहरा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पुरानी भिलाई 3 पदम नगर से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, पंकज, काजल, सीमा मानवी, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला प्रजापति और वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खरसे, ललिता खरसे, गणेश, कार्तिक परी और स्वाति प्रयाग चौधरी। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म पुष्पा का ये गीत जावेद अली की आवाज़ में।

फिल्म पुष्पा के इस गीत के बाद कार्यक्रम के अंत में आइए अब आपको सुनवाएं फिल्म राधे का गीत कमाल खान और पायल देव की आवाज़ों में। गीत लिखा है शबीर अहमद ने, संगीत हिमेश रेशमिया का है और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने पोस्टकार्ड्स में की है हमारे इन श्रोताओं ने। भाटापारा दत्तरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा। हटरी बाजार भाटापारा से मोहम्मद जावेद, एकता यदु, पूजा यदु, रेशमा निषाद। देवरी भाटापारा से कन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। धवलपुर गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांति, अर्चना, धनंजय मिश्रा। शंकरनगर दुर्ग से मानिक सिंह बैस, कावेरी, विनीता, लल्ली, लेखमणि बैस। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र, ब्रजकांत सारथी। और चनागांव से कोमल शोरी, गेंद मरकाम, जैनू राम शोरी, गजानन नेताम, नंदलाल मरकाम और विशु साहू। इसी गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने ईमेल में की है हमारे इन श्रोताओं ने। आम्बेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, नीरा ज्योति, प्रहलाद वर्मा। लोरमी ग्राम तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार, मालती, मयंक मरावी। हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका देवांगन। सिवनी खुर्द रेंगाखार से मंशाराम पटेल, बुद्धियाबाई पटेल, पानु प्रताप पटेल और पायल पटेल। नागरकोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू। सेक्टर 8 बिलाई।

नगर से अशोक श्याम कंवर, प्रमिला श्याम कंवर, आसमा श्याम कंवर, हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर राजकुमारी पटेल, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन, भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय कुमार ठाकुर, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन, आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम से जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष, नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, ओशिका आदित्य, अंजलि जंघेल, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, दत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश वर्मा और पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म राधे का ये गीत कमाल खान और पायल देव की आवाजों में।

फिल्म राधे के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मीत ये गीत यहीं समाप्त करने की आप अनुमति दीजिए। आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार।

0: इमीद ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

लता मंगेशकर की आवाज़ में असद भोपाली का लिखा गीत अभी आपने सुना, संगीत राम लक्ष्मण का था, फिल्म थी मैंने प्यार किया। आइए अब सुने फिल्म चांदनी का गीत लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत शिवहरी का है।

चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म साहेबा से। आवाज अनुराधा पौडवाल की, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, संगीत एक बार फिर शिवहरी का है।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये था फिल्म साहिबा का गीत। कार्यक्रम के आखिर में आइए अब सुने चमत्कार इस फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। साथ दिया हल्का याग्निक ने, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत है अनु मलिक का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स कैन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती सुनिएगा 9:30 पर। और 10:00 होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे पंडित कैवल्य कुमार गौरव का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आज के गोट में चर्चा होगी एक दूसरे संग शांति ले रहा, साथ ही होगा छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश क्रम जोहार बहिनी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट होगा शाम 5:00। शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में। इसमें आज अपन गोट का विषय होगा मन के अंदर के उजाला विकसित करो, और होंगे क्रम आपन की चिट्ठी और माटी के गीत भी। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे जवाहर बघेल और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे अमचिरीबाई और उनके साथी। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा पशुधन पर पौष्टिक चारा अजोला। 7:30 पर किसान वाणी में क्रम आज की सलाह में परंपरागत तरीके से मछली प्रसंस्करण, इस विषय पर जानकारी देंगी देवती जायसवाल सहायक प्राध्यापक फिशरीज पॉलिटेक्निक धमधा दुर्ग। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर भी।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, आज रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स कैन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती आप सुनेंगे रात 9:30 पर, और रात 10 बजे होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे पंडित केवल या कुमार गौरव का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

जिहां माया के दिया बरथे उहां अंधियार के गड्ढा पटा जथे, और जिहां विश्वास के डोरी कसाए रहते उहां आंखी ले भाखा जना जथे। यही भाव संग घर आंगन कार्यक्रम सुनैया जम और बहनी मल्ला संगीता वर्मा के राम राम। बहनी हो, आज वट सावित्री व्रत के आप जम्मो बहनी मल्ला बहुत बहुत शुभकामना है। बहनी हो, हमार सियान मन कतका सुघर जोरा करे है ना, हमार आस्था श्रद्धाला परिवार के खुशहाली माया विश्वास संग प्रकृति ला जोड़े के। काबर वो जानत रहे पेड़ सिर्फ छाव नहीं देवाए, वो जीवन देते। पेड़ ला देवता माने, काबर उही हवा देते, पानी बचाते, जीव जंतु के आसरा बनते और धरती ला हरियर बनाते। आज वट सावित्री माँ हमार बहनी मन व्रत राख के अपन परिवार पति के सुख समृद्धि लंबा उम्र के कामना करत है। बहनी हो, एला तो हम सबो जानथन कि दूसर के भले ही करे जैसे कोनो धर्म नहीं है, और दूसर ला दुख दे जैसे कोनो पाप नहीं है। सिर्फ तो बताए बहनी हो, घर हो या बाहिर, पारा परोस, जहाँ सब जन एक दूसर संग हिल मिल के माया अपनापन और शांति ले रहे थे ना, वही मेर खुशी बगर थे। आज के बदलत बेरा में हम देखथन छोटे छोटे बात माँ मन मुटाव हुआ थे, रिश्ता टूट जाते, तो हम कोशिश यही करन नान नान बात ला बड़का झन बनावन, शांति ले बात ला सुलझालन। और सब ले जरूरी बात बहनी हो, हम अपन बर मान सम्मान माया दुलार चाहथन ना, तो हमला दूसरों ला उही मान दे बर लागी। और ये तो हर मनखे के मानवीय स्वभाव हरे कि वो खुश रहना चाहते, शांति चाहते। और ये ला तो सबो जानथन कि मीठ भाखा ले बिगड़े बात घलो सुधर जाते। बहनी हो, जिहा सुमत और आदर भाव रहते ना, वहां सरक बरोबर लागते और उन्हें बरकत तको आते। और बहनी हो, यही माया पीड़ित के तार आप मन संग तको जोड़े है। कार्यक्रम जोहार बहनी ले, काबर जतिक अगोरा आप मल्ला रहते कार्यक्रम के, उतके अगोरा हमला रहते आप मन संग गोट बात करे के। ता आवो सुनथन फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी, और आप मन संग गोट बात हो है हमरे यानी संगीता वर्मा के, संपादन और गीत संकलन बीर भान साहू के, और प्रस्तुति है रमा शंकर के।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण है। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

0: रगरग रगरग घाम करत हे, मुंह कान घलो ऐ लागे, चिरई चिरगुन के कंठ सुखागे, एक ठन नहीं दू ठन जेठ आगे। बहनी हो, जेठ महीना के बाढ़त गर्मी हमला एक घौ फेर चेतावत हे कि पहली जेन गलती हमर मन से होइस और प्रकृति अपन संतुलन लखोइस, ओ गलती ल सुधारन और सब मिलके प्रकृति के संरक्षण बर आगू बढ़न। आवो ये परन करन कि अवैया बरसा मा घर के पानी ला घर मा, खेत के पानी ला खेत मा छेकन, मेड़ पार तरिया पार और खाली जगह मा पेड़ लगावन और प्रकृति के रक्षा करन। यही भाव संग आप मन के मन पसंद फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी मा आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। औ अब आवाज देखथन कौन बहनी के पहली फोन कॉल आ है तेन। जोहार बहनी।
1: हेलो।
0: हाँ जोहार बहनी।
1: नमस्ते दीदी।
0: हाँ नमस्कार बहनी, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था भाई?
1: मैं है ना ग्राम कुटेना पोस्ट पांडुका जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ लेना कुमारी झामेश्वरी साहू बोला था दीदी।
0: अच्छा झामेश्वरी बहनी, आपके हमर जोहार बहनी माँ बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ हाल चाल है बहनी?
1: सब बढ़िया है दीदी, गर्मी के आनंद लेवा था, गर्मी है बहुत बाढ़ गए।
0: हाँ वाह बढ़िया बहनी, और का काम बूता करत हस्ता गर्मी में?
1: मैं पढ़ाई करत हूँ दीदी, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी चला थे।
0: अच्छा बढ़िया,

0: बहनी
1: हाँ
0: और आप मन ये बताओ बहनी, आप मन घर में कौन कौन रही था?
1: हमारे घर में मम्मी पापा और भैया भाभी और दो जन भतीजा और मैं।
0: अच्छा अच्छा, हमेश्वरी बहनी, यानी आप मन पूरा मिल के रही था संग्रह, संयुक्त परिवार है ना?
1: हाँ संयुक्त परिवार। हाँ
0: हाँ, तो झामेश्वरी बहनी, संयुक्त परिवार में रहे ले आपला खा फायदा दिखते?
1: संयुक्त परिवार में रहे ले वही अच्छा लगती कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होए और वही मतलब कि खाए पिए में हर चीज में सुविधा हो जाती थी,
0: सबके सहारा मिलते, सबके माया दुलार मिलते है ना?
1: जाते हाँ, कहीं भी आए जाए पर सब साथ देते।
0: हाँ
1: तो तबियत वगैरह खराब होगी तो कर लिए सहायता मिल जाते, हर चीज में सहायता मिलती दीदी संयुक्त परिवार में रह ले।
0: बढ़िया है बहनी।
1: हाँ।
0: और अभी हमन हर साल 15 मई के विश्व परिवार दिवस मनाथन है ना, और एक उद्देश्य तक ही है बहनी कि सब छन संग्रह मिल के रहान, सबके माया दुलार संस्कार हमला मिलत रहा है और हर काम काज में तको एक दूसर के सहारा बनन है ना। जैसे मोती गूथ के बनथे सुघर हार, दुआ करो भगवान ले टूटे छन परिवार। झामेश्वरी बहनी, आपसे गोट बात करके बड़ अच्छा लागी से। अब बताओ आप अपन पसंद के कौन से गीत ला सुनना चाहत हो?
1: मोलाना कुलेश्वर ताम्रकार के शर में बिहाव गीत ला सुना दू, कबर के अभी बिहाव के सीजन चला थी।
0: अच्छा हाँ बहनी, ठीक है।

0: जोहार बहनी।
1: हाँ जोहार बहनी।
0: कौन बोलत हो भाई, कहाँ ले बोलत हो?
1: चित्ररेखा साहू, रानी गांव नगरी ले।
0: अच्छा चित्ररेखा बहनी, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ धन्यवाद दीदी।
0: आप तो हमारे जुन्ना श्रोताओ बहनी है ना, तो
1: हाँ।
0: आपके परिवार में कौन कौन है बहनी, ये बताओ।
1: हाँ परिवार में सास ससुर है, दो जन लड़का है।
0: अच्छा
1: दो जन। अब
0: अच्छा यानी पूरा सब जन मिल के संग्रह रही था, संयुक्त परिवार कहानता है ना। तो ये बताते हो बहनी, परिवार के हमर जीवन में का महत्व होते?
1: एक दूसरा सुख दुख में साथ दे में सहयोग होते ना दीदी। ऊंच नीच शरीर तबियत में भी सबके सहयोग करे बार होते, खान पान में ध्यान देवे।
0: तो परिवार ही हमार जिंदगी के सब बड़े बड़े आधार आए बहनी है ना, और परिवार ले ही माया संस्कार मिलते, अपनपन मिलते है ना, हर सुख दुख के सहारा बन जाते कहान तो परिवार है ना।
1: चैनल भी मिलते परिवार में रहे थे।
0: तो दो लाइन कहा था बहनी आपके पर, घर परिवार बड़े हो या छोटे, माया पीड़ित रहना चाहिए, रिश्ता माँ माया दुलार हो ही, तभी परिवार सुखी हो ही। चित्ररेखा बहनी, आज आप अपन पसंद के कौन गीत ला सुनना चाहत हो बताओ?
1: रमेश यादव ऊपर साथी मन के स्वर में है दीदी। झूले तुर मोंगरा पहुँचे ला दीदी का वो वही, झूले तुर मोंगरा ये गीत ला सुना दो दीदी।
0: अच्छा बढ़िया गीत है बहनी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हो तेकर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जोहार बहनी।
1: हाँ जोहार बहनी।
0: कहाँ ले बोला था भाई, कौन बोला था?
1: मैं ग्राम पंचायत मेचका सोनपुर ले बोला था, पूर्णिमा नाग।
0: अच्छा पूर्णिमा बहनी, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। का काम बुता चलत बहनी, का हाल चाल?
1: सब बढ़िया, कुछ काम नहीं चलत है, घर में रहता।
0: अच्छा अच्छा, तो ये बताते हो बहनी, अभी अमन 15 तारीख के विश्व परिवार

0: दिवस मनावत हन, है ना, तब परिवार के समाज में का फायदा होते परिवार ले?
1: समाज में परिवार में क्या फायदा होते, मतलब
0: यानी परिवार ले हमारे समाज में क्या फायदा होते बहनी?
1: सम रहो सब,
0: हाँ
1: करके समाज में बताती।
0: और परिवार बढ़िया रही तो हमारे समाज तक उन्नति करही, है ना। और का हाल चाल बहनी, का काम बहुत अच्छा थे? अभी गर्मी में किसी चीज ऐसी तैयारी करत हो आप?
1: तेंदू पत्ता तोड़ी चला थे।
0: अच्छा, आपन ओडर तेंदू पत्ता तोड़ी करत हो? अच्छा बढ़िया है बहनी। अच्छा, आप आज अपन पसंद के कौन से गीत सुनना चाहत हो?
1: ममता चंद्राकर के गाना सुना दे तोला, कौन बन भेटा और करुणा वाला।
0: अच्छा बहनी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हो तो करवा आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाओ अपन पसंद के ये गीत ला।

0: जोहार बहनी।
1: हेलो।
0: हाँ जोहार बहनी।
1: हाँ जोहार बहनी।
0: कौन बोला था भाई, कहाँ ले बोला था?
1: मैं प्रणीता वर्मा बोला था, किल्दा से, रायपुर जिला।
0: अरे वाह, आपके हमार जोहार बहनी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। का काम बूता चला?
1: धन्यवाद बहनी, धन्यवाद बहनी। हाँ अभी तो छुट्टी चला थे मोर, मैं हाँ शिक्षिका हूँ।
0: अच्छा,
1: छुट्टी चला थे।
0: अरे वाह, यानी लड़का मन ला आप शिक्षा देता है ना? बढ़िया काम करत हो बहनी, लड़का मन ला पढ़ाए के काम करत हो, मतलब ज्ञान दे के काम करत हो, है ना? प्रणीता बहनी, आप ये बताते हो कि जैसे हमन लड़का मन ला आजकल अच्छा शिक्षा देवर बाहर भेजथन, है ना, ओकर बेहतर विकास बर बाहर भेजथन, तो लड़का मन ला पढ़े बर तो जाते तो ओकर सुरक्षा बर पढ़े के साथ साथ और का शिक्षा देना चाहिए?
1: लड़का मन बाहर जाते तो बहुत सारे सुरक्षा के जरूरत पड़ते, जैसे कि मोबाइल तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ते, लेकिन मोबाइल लोग ना पहली से मतलब लड़का मतलब बता था कि कोई भी अनजान कॉल आते थे ना रिसीव मत करू, अनजान व्यक्ति मन अगर कुछ भी पिन कोड वगैरह मंगत है।

0: पासवर्ड मंगत है या कुछ भी बताए कहा रहते हैं बिल्कुल मत बता रहे थे ही के
1: हाँ।
0: अनजान व्यक्ति से थी बात मत करे कार की कई प्रकार के व्यक्ति रही थे कुछ भी लुखावना व्यवहार करके अपन तरफ आकर्षित कर सकते थे तेकर से भी बचे करो ऐसे ही बोलथन। और फिर लड़का मन बाहर जाते तो बहुत सुरक्षा की जरूरत पड़ते आसपास के वातावरण देखे बार पीजी में रहते आसपास के वातावरण देख के रहो से भी बात मत करो ऐसे ही के। और फिर पढ़ाई बार भी अच्छा अच्छा पुस्तक जिन हावे से ही मतलब उपयोग करो कोई भी गलत पुस्तक इस्तेमाल मत करो ताकि तुम उनके भविष्य अच्छा बनाए ऐसे ही के।
1: वाह बढ़िया जानकारी दे बहनी आप।
0: बस बस में चला थे तो बस में भी अकेला रात का सफर मत कर तू ज्यादा रात का मत जाए कर तू बस में ऐसे बोल संकार के आजकल बहुत हादसा हुआ रही थे अकेला है तब कोई भी कुछ भी हादसा हुआ रही थे जिसे निर्भया कांड देखे हो कलकत्ता में कहीं कहीं ओ मन से बच के चले करो ऐसे ही बहुत सारा सुझाव दे लगते लड़का मन।
1: हाँ हाँ बहनी और लड़का मन कोई दूसरा अनजान आदमी कहीं देवा थे तेरों ने खाना चाहिए है ना।
0: हाँ,
1: और अच्छा स्पर्श और खराब स्पर्श के तको जानकारी देना चाहिए है ना।
0: हाँ,
1: संस्कार के संग संग ओला समझदारी के तको सीख पाठ पढ़ाए लगते अपन लड़का मन बाहर जाता चिंतित लागे थे है ना। बहुत अच्छा लगी इस बहनी आप सन गोड पाठ करे हन ता। अच्छा ठीक है बहन हमन आपकी पसंद के ध्यान रखत एक ठन गाना सुनावा था।

0: जोहार बहनी।
1: जोहार बहनी।
0: कौन बोला था भाई, कहाँ ले बोला था? अरे
1: मैं भोज कुमारी बोला था, रामपुर से।
0: अच्छा बहनी, आपके हमारे जोहार बहनी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: का काम बुता चलत बहनी?
1: अभी दीदी अभी गर्मी है तो बस घर में सिलाई विलाई सी का काम चला था। अभी
0: अच्छा बढ़िया। आप घर के कपड़ा सिलता यानी कि बाहरों का सिलता?
1: नहीं, घर बस सिला।
0: अच्छा, और हमारे रेडियो के कार्यक्रम सुनता होगा बहनी आप?
1: हाँ दीदी, घर में सुनता हूँ मोबाइल में।
0: कतेक दिन ने सुना था? कई साल से जुड़े हो रेडियो से आप?
1: अभी 3-4 साल से।
0: और कौन से कार्यक्रम के आप लोग इंतजार रहे थे? कौन कार्यक्रम ला ज्यादा सुनता?
1: दीदी छत्तीसगढ़ी गाना है मस्त, मम्मी मस्त, अच्छा अच्छा छत्तीसगढ़ी गाना सुनता।
0: हाँ बहनी, जानकारी के संग संग कामों तक हो जाते बढ़िया। आप सिलाई करत रही था, इतनी रेडियो चलत रही थे, है ना? तो ज्ञान के संग संग मनोरंजन तक हो जाते, है ना? बढ़िया बहनी, इसने रेडियो सुनत रहा और अपन विचार और सुझाव तक हमारे भेजत रहा भाई चिट्ठी के माध्यम ले। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े हो तेकर बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बताओ आप, हम आज अपन पसंद की कौन सी गाना सुनना चाहते हो
1: दीदी? अच्छा।

नारी घर समाज देश दुनिया की ताकत बनत है, हिम्मत ऊंचा ऊर्जा ले भरे हर काज करत है। आत्मविश्वास ले भरपूर नारी हर क्षेत्र में आगू बढ़ाओ, यही भाव संग आज के जोहार बहनी बस आज इहे तक। आप मन संग गोट बात करत रहे हो, मैं संगीता वर्मा और आप मन के पसंद के सुघर सुघर गीत ला जोड़े रहिन बीरभान साहू और प्रस्तुति रहिन रमाकांत। अवैया जून महीना के जोहार बहनी माँ फोन करे के नेवता के संग लेवा मोर।

बहनी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी। अउ आप मन ला आज के कार्यक्रम कैसे लागिस, पाती या ईमेल के माध्यम ले अपन विचार जरूर पठो बहनी हो, हमला अगोरा रही। और बहनी हो, एक खुश खबर है कि अब आप हमार आकाशवाणी रायपुर के प्रमुख प्रमुख कार्यक्रम ला हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी रायपुर मा तको आप सुन सकते हो। तो हमार यूट्यूब चैनल ला झटकुन सब्सक्राइब करो और कार्यक्रम ला सुन के अपन भाव विचार ला जरूर व्यक्त करो बहनी हो। अब घड़ी सारा करत है कि कार्यक्रम ले जाए के बेरा हुआ थे, आप मन संग अवैया कार्यक्रम मा फिर भेंट हो ही, यही वादा संग अपन बहनी संगीता ला दो विदा और लेवा मोर मयाले भरे राम राम।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म इश्क से, आवाजें कुमार सानू और विभा शर्मा की हैं।

0: कुमार सानू और विभा शर्मा की आवाजों में फिल्म इश्क का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत अनु मलिक का था।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने, संगीत अनु मलिक का है, फिल्म का नाम है बाजीगर।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर लवली निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी

0: अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारी

0: अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।

0: मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

ये गीत है फिल्म सलामी इश्क से। आवाजें सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, साधना सरगम, शंकर महादेवन और साथियों की। गीत समीर का है और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फॉर वॉइस। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्थल बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत में दे
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।

0: कुछ कहने को मन करता है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
3: सुनिए

अभिजीत, अलका याग्निक, चौडी अयूब और साथियों की आवाजों में लीजिए सुनिए सलीम बिजनौरी का लिखा गीत। संगीत डब्बू मलिक का है, फिल्म का नाम है मैंने दिल तुझको दिया।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: त काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते और एक

0: असन कई ठन कार्यक्रम हवय जेला सुने बर तैं बैठबे ना त कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवय संझा कुन 5:10 ले जेन शुरू होते ना वर्षा तेना 6 बजे तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाई।

श्रोताओं, हमें खेद है, ट्रांसमीटर में विद्युत अवरोध के कारण 2:50 से 2:52 तक आप हमारा प्रसारण नहीं सुन सके। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार यानी 19 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा धान में श्री विधि अपनाएं, उत्पादन बढ़ाएं। इस विषय पर आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर से 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 को 11:30 से 12 तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद कार्यक्रम के आखिर में आइए अब आपको सुनवाएं कुछ कुछ होता है। इस फिल्म का गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत जतिन ललित का है।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है।
2: नीदरलैंड्स के समाज और यहाँ की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की

0: जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि भारत में एआई समिट का सफल आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मिलने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर, चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मंगलवार को इटली पहुंचेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य के कैप्टागन ड्रग्स जब्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशा मुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: बैडमिंटन में सात्विक राइजर रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोह रुजेफेई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their Majesties King William Alexander and Queen Maxima this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community event in The Hague, Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora.
0: Netherlands ke samaj aur yahan ki economy mein jo contribute kar rahe hain us par

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मलसोना गांव के प्रगतिशील किसान श्रीरंग देवबा लाड यानी दादा लाड को वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा लाड जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दादा लाड, आपने खेती के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के माध्यम से जो मिसाल कायम की है वो न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने की सूचना मिली तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और

0: इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को आप अपने जीवन, अपने गांव और खेती के सफर के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं?
1: ये तो पहली बार मैंने लातूर में था और दूरदर्शन के सामने ही बैठा था। जब पहले मैं न्यूज़ सुनी है तो मेरे पर मेरा भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे बारे में कह रहे कि और कोई दादा लाड है। तो तब तक कहीं सब अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जब फोन आने लगा तो लगा कि वो मेरे बारे में ही है। तो ये मिलने के बाद एक खुशी तो हो गई, इस बारे में खुशी ये बात की है, परंतु जब तक किसी बात को राज मान्यता नहीं मिलती तब तक तो कोई अंगीकार उसका नहीं करता। तो अभी तक तो कई सालों से कम 25 साल हो गए मैं टेक्निक किसानों के सामने रख रहा हूँ, परंतु जब ऐसे सरकार के माध्यम से वगैरह अखबारों से प्रसार माध्यमों से ये जब तंत्रज्ञान किसानों के पास जाएगा तो उसको लगेगा अरे इसमें कुछ तो भी दम है और इसके कारण ये तंत्र को किसान स्वीकारेगा और ये तंत्र स्वीकारने का जो किसानों का उपज बढ़ जाएंगे उससे मुझे बहुत खुशी होने वाली है। केवल वो ये कारण किसान अभी अपनाता है इसका आनंद मुझे हुआ।
0: दादा लाड, कपास तकनीक विकसित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप बताएंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
1: एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्रों की जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थखात निर्भर है, यानी कि कपास का पेड़ उनके लिए यानी तुलसी के जैसी श्रद्धा वाला पेड़ है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था और बैठने के बाद एक दिन ऐसा बैठा और उनके ढाली तरफ देखने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नीचे जो मोनोपोडियम जिनको कहती है वो बड़ी मोटी भी है और उसकी ऊंचाई मूल पौधे के बराबर है। तो और दूसरी जो सिंपोडिया जिनको कहते हैं वो ऊपर से जमीन से समांतर चलती है, वो छोटी वाली भी होती है और दोनों में फर्क ऐसा ये बड़ी और छोटी। बड़ी में तो डेंडों की संख्या बहुत कम लगती है, संख्या भी कम लगती है, उसका वेट भी बहुत कम होता है। और जो सिंपोडिया रहती है वो बड़ी छोटी वाली होती है, उसको डेंडू की संख्या ज्यादा लगती है और उसका डेंडू का वेट भी अच्छा होता है। तो मैंने ऐसा किया कि यही कैसा आना जाता खेती डेंडू कम देती है और डेंडू का वेट भी कम है और वो सिंपोडिया का जो डेंडू है वो ज्यादा देती है उसका वेट भी ज्यादा है। और फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ तो भी एक अड़सर है मोनोपोडिया। तो इसको निकालने का मुझे ऐसा लगा कि सब अनाज सिंपोडिया को दे दिया तो इसमें कपास का वेट बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे मन में लगा चिंतन के बाद। और फिर वो सही या झूठ है ये देखने के लिए मैंने मोनोपोडिया को 5 पौधे के मोनोपोडिया को कट कर दिया और जैसा कट दिया जैसा मैंने पकड़ा वैसा ही होने लगा। सिंपोडिया की लंबी बढ़ गई, सिंपोडिया के डेंडू की संख्या बढ़ गई, उसके वजन जो डेंडू 5-6 ग्राम का मिलता था अभी वो 8 ग्राम का मिलने लगा। एक फल फांदी पर एक 3-4 डेंडू लगते थे वो 8 तक 7-8 आने लगे और मुझे बहुत खुशी लगी कि मेरा चिंतन सही दिशा से चल रहा है। परंतु मेरे मन में तो खात्री हो गई ये सही दिशा है और ये तंत्र किसानों का भला करने वाला है, परंतु उस किसान स्वीकार करेगा का नहीं करेगा मेरे मन में आशंका होती। और किसानों को स्वीकार करने के लिए मुझे कई मात्रा में संघर्ष यानी झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं, समझाने का संघर्ष करना पड़ा।
0: कपास अनुसंधान और नए प्रयोगों के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर आपने उन्हें पार कैसे किया?
1: मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कृषि शास्त्रज्ञ भी वो बोलते थे कि भाई दादा लाड क्या है उनका चिंतन तो हम नहीं बोल सकते लेकिन हमारे अभ्यास से कि एक पौधे के समझो 3 मोनोपोडिया गई, एक पर 5 डेंडू बोले तो 15 डेंडू कम हो गए, 5 ग्राम बोले तो यानी 70-75 ग्राम का कॉटन कम हो रहा है और दादा लाड टेक्निक से गए तो 40% कपास का उत्पन्न घट जाएगा। और मैं तो कोई शास्त्रज्ञ, मैं किसान हूँ और फिर सुनने वाले किसान तो शास्त्रज्ञ के मानेंगे क्या मेरी मानेंगे, ऐसा एक बड़ा इसमें अड़सर था। और दूसरी बात तो फिर घर के लोगों को घर घर में तो एक बड़ी ढाली काटना, छोटे पार्ट भी कट गए फसल के तो किसान बहुत नाराज होता, वो 3 बड़ी बड़ी ढालियां काटना यानी पति को मान्य होगा है तो पत्नी आड़ आती थी, बेटे को मान्य होगा तो पिता आड़ आता था, ऐसा ही घर में का भी संघर्ष आता था। फिर मैंने उसमें एक किया कि संघर्ष मिटाने की कोशिश की है।
0: दादा लाड, आपकी तकनीक

0: इससे किसानों को उत्पादन लागत या फिर मुनाफे के स्तर पर क्या क्या लाभ हुआ है उसके बारे में बताएं।
1: मेरे तंत्र से एक हो गया कि पहले किसान 6 क्विंटल कपास लेता था, 6-7 पकड़ के चलो, 8 खाद ज्यादा डाले तो अभी 7,000 रुपये क्विंटल भाव पकड़ेंगे, तो 8 क्विंटल था यानी 56,000 एक एकड़ में किसान को मिलता था। अभी मेरे टेक्निक से वो चल रहा है तो 15 से 20 क्विंटल तक जाता है, तो अपन चलेंगे पकड़ेंगे 20 क्विंटल है, 25 क्विंटल तक जाता है, तो 1,20,000 का 7,000 रुपये पर क्विंटल पकड़ेंगे तो 1,40,000 रुपये। कहाँ 32,000, कहाँ 1,40,000, ये बड़ा अंतर है, ये किसानों का आर्थिक बड़ा लाभ होता है।
0: दादा, कृषि क्षेत्र में नवाचार चाहने वाले युवा किसानों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: एक तो नई पीढ़ी खेती में आने में उतनी ये नहीं है, उनको लगन नहीं है खेती की, और ये नए आएंगे तो उनका एक है कि खेती नहीं पूर्ति उपज नहीं आता, लेकिन अलग अलग फसल में, केवल कपास का फसल आपके सामने आया है लेकिन ज्वार का भी मेरा टेक्निक है, गेहूं का भी, ये तंत्र से खेती करने लगे तो उपज बहुत बढ़ती है। और कौन सा युवा नहीं चाहता कि पैसा नहीं मिले, ये तंत्र से खेती करने का जर युवाओं को सिखाया तंत्र और उनको भी पैसा मिलने लगा तो सब युवा भी खेती की तरफ आ जाएंगे, और खेती की मांग यही है कि पढ़े लिखे युवा खेती पे आ जाए, ये खेती की मांग है, और युवाओं को तो ये खातरी हो गई कि भाई इससे उपज अच्छी आती है और पैसा भी मिलता है, और ये तंत्र से, मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ, ये तंत्र से युवा खेती करने लगे तो कोई कमी पड़ेगी नहीं उनको पैसे की।
0: भविष्य में कृषि क्षेत्र में आप किन नए प्रयोगों या फिर योजनाओं पर काम करने का विचार कर रहे हैं?
1: अभी तो कैश क्रॉप पर मैंने काम किया, तो इसमें मुझे, मैंने प्रयोग किया है कर्नाटक में इंडी गांव है, वहाँ भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए अनाज भी होना चाहिए, तो मराठवाड़े के पकड़े तो ज्वार अनाज है और गेहूँ भी अनाज है, तो यानी इधर तो गेहूँ तो कभी कभी त्योहार के दिन खाते हैं, हर दिन का हर ज्वार का है, भाकरी का है, तो इसलिए यह अनाज उत्पन्न बढ़ने के लिए मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला है उनका ज्वार का। मैंने बताया कि अभी ज्वार का उत्पन्न है किसान 6-7 क्विंटल और 400 कड़ भी लेता है।
0: दादालाड जी, आपने अपने अनुभवों और खेती में किए गए नवाचारों के बारे में हमारे साथ बहुत सी बातें साझा की और प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि परभणी जिले या आपके गांव मलसोना और हम कह सकते हैं कि देश भर के किसानों के लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

3:20 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और जी शनिवार की दोपहरी है और बहुत गर्म है मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी स्टूडियो आई हूँ तो रास्ते को महसूस करती हुई आई हूँ। कोशिश कीजिए कि आप भी अगर बाहर निकलने को हैं तो पानी की बोतल और छतरी या टोपी कैप कुछ भी आप अपने साथ रखिए। गर्मी बहुत है लेकिन हमारी हिम्मत भी कुछ कम नहीं है। स्वागत आप सभी का एक बार फिर मन भावन प्रोग्राम में। शनिवार का दिन है, फुर्सत है आपके पास अपनी पसंद का गीत

हम तक पहुंचाइए, हम बड़े ही प्यार से आपके किसी अपने तक उस गीत को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। fmgoldairdelhi@gmail.com ये है जी पता जिस पर आपने अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है। एक बार दोबारा सुन लें, fmgoldairdelhi@gmail.com। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार, और जैसे कि हर बार की तरह होता है कि पहला गीत मेरी फरमाइश का आप सबके लिए।

भाई अपने अंदाज में हम इतना तो कह सकते हैं कि गर्मी बहुत है, और अगर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो फिलहाल तो कहीं ना जाएं आप, और अगर कहीं नहीं

भी जा रहे हैं तो भी FM गोल्ड 100.1 आपके साथ है। मन भावन प्रोग्राम है जी, आपकी पसंद का प्रोग्राम है। आप अपनी पसंद अपनों तक पहुंचाते हैं। कुछ खास दिन आज है तो भी हमें मैसेज कीजिए, किसी से नाराज़ हैं तो भी हमें बताइए, हम कोई गीत उनके लिए आपकी तरफ से बजा देंगे जी, यहाँ प्ले कर देंगे और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो उस गीत के माध्यम से उन तक पहुँच जाएंगी। बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं इंसान के, बहुत सारे मूड होते हैं। अब आप जिस भी मूड में हैं, बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, fmgoldaiadelhi@gmail.com। और जी यहाँ शुरू होते हैं हमारी जो फरमाइशें आई हैं उनकी शुरुआत करते हैं। गंज टंडवारा से शमशुल कमर राही हैं, शाहीन फातिमा हैं, अदनान खान हैं और अनु खान हैं। ये तो हमने जी पहला संदेशा पढ़ दिया और अब दूसरे संदेशे की बारी है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से ये मास्टर अशोक वर्मा है, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा है, शेख मूसा भाईजान है, भाई राजकुमार है और

खान है और अनु खान है। ये तो हमने जी पहला संदेशा पढ़ दिया और अब दूसरे संदेशे की बारी है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से ये मास्टर अशोक वर्मा है, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा है, शेख मूसा भाईजान है, भाई राजकुमार है और सुदामा नगर खंडवा से ये कौन है जी, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप जी हैं। तो ये हमने नाम पढ़े, हम ऐसे ही एक एक करके नाम हम पढ़ रहे हैं। आप बस सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ किस तरह से दे सकते हैं, आपको हमें अपने संदेशे भेजने हैं। और अशोक वर्मा जी, अशोक कुमार जी बहुत सारे संदेशे एक के बाद एक आप भेज रहे हैं, इसमें जो असल में हम तक पहुंचना चाहते हैं वो फिर नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए थोड़ा सा आप थोड़ा ख्याल कीजिए इस बात का। यहाँ पर मैसेज आया है, नमस्कार सीमा जी, आजकल ऑफिस में हमारी नाइट शिफ्ट चल रही है लेकिन आपके कार्यक्रम से बेशुमार मोहब्बत है, इसीलिए जाके हुए हैं। चलिए हमारा प्रोग्राम सुनने के बाद सो जाइएगा। आपने पहाड़गंज से हमें संदेशा भेजा है, मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन है, उषा मोहन है और टिल्लू नायक हैं। यहाँ पर जब मैं फुर्सत में बैठी थी थोड़ी देर पहले तो मैंने कुछ आपके नाम यहाँ लिख के रखे हैं, यानी कुछ संदेशे मैं पढ़ ही रही थी। तो यहाँ मुरादाबाद से मुकेश, शीतल कश्यप हैं, सोनू हैं, सुरेश हैं और राजपाल पंकज हैं, मानवी और तानवी हैं और लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जी हैं। ये भी एक संदेशा है, मुझे लग रहा है संदेशे बहुत सारे हो गए हैं। अब बारी है आपकी पसंद के गीत की, तो किसी एक की पसंद का गीत आपकी नज़र हम अब करते हैं। लीजिए सुनिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

एक बार फिर आप सभी का स्वागत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और जी, आपसे बात करते करते समय तो आगे निकल ही रहा है, 31, 32, 33, 34, 34, 3:34:55 हो गए हैं। फिर भी आप सभी को एक बार फिर बता दूं, fmgoldairdelhi@gmail.com इस पर आपको अपना संदेशा भेजना है, क्योंकि प्रोग्राम आपका मनपसंद है जी, मन भावन। और आज शनिवार की दोपहर ही आपके साथ मैं सीमा वर्मा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपना जो संदेशा है वो हम तक इस पते पर पहुंचाएं और आपका जो संदेशा है वो मैं आपके अपनों तक पहुंचाऊंगी। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी हैं, सजन खोरवाल हैं, दीपांशु हैं, और इन्होंने एक फिल्म की फरमाइश की है, यानी फिल्म की फरमाइश नहीं गीत सुनने की फरमाइश की है। और प्ले एनी सॉन्ग ये कौन हमें लिखकर भेज रहे हैं, पटियाला से मुकेश बाता और नीलम है इनके साथ, निहारिका हैं और वंश बाता हैं। ये संदेशा आ गया जी, और अब अगला संदेशा पढ़ रही हूँ। ये हमारे पास आया है, शनिवार से ही शनिवार का इंतज़ार रहता है, ये हमारे दोस्त हैं और देखते हैं कौन है ये जो ऊपर कोट बुलंदशहर से हमारे पास आया है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन हैं, शाहान नवाज हैं, सरफराज हैं, फरदीन, सुहान, अरजान, आबान और पूरा का पूरा अब्बासी परिवार है जी। मुझे भी बहुत इंतज़ार रहता है शनिवार से शनिवार का, क्योंकि शनिवार आपसे मुखातिब होती हूँ मैं। और चंडीगढ़ से हमारे पास जी ये संदेशा है बिमला अनेजा और सतीश अनेजा जी का, आप भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और आप बड़े प्यार से हमें रोज सुनते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर ये दूसरा जो मैसेज है वो मैं देखूँ किसका है भला, चलिए

एक थोड़ा सा इस तरफ भी देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जब मैं फुर्सत में बैठी होती हूँ और मेरे पास थोड़ा सा समय होता है तो मैं क्या करती हूँ कि आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उन मैसेजेस को लिख लूँ, ताकि किसी तरह से कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई छूट ना जाए। तो यहाँ पर हरियाणा रोहतक से अंकित कांगड़ा हैं जी, प्रिंस बोट हैं, सीता राम जी हैं और साहिल कांगड़ा हैं। गांव नथाना पंजाब से जसवीर जस्सी हैं, हरजिंदर चिंदी हैं और सीता और गीता हैं इनके साथ। और आइए अब एक जो संदेश है वो और पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर हम आपका जो जो गीत है, आपने जो फरमाइश की है वो भी ले लेंगे। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी हैं, कमला रानी हैं और गीतिका और भानु हैं। आपने हमें मैसेज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैसेजेस बहुत सारे हैं। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से ये विजय हैं जी और इनके साथ कविता हैं, विशाल हैं, सोनू मोनू और रानू हैं, देवराज जी हैं, सपना शिवी सोनाली हैं, पेंटर बाबू हैं, अनिल सोनी और दोस्त सुदामा हैं इनके साथ। तो मैसेजेस काफ़ी सारे हो गए हैं। अब काम करते हैं कि किसी एक की पसंद जो है उसे हम सुनते हैं और जो आखिरी में मैं ये पढ़ने वाली हूँ इन्हीं की पसंद का गाना सुन लेते हैं, क्योंकि ये गीत बड़ा प्यारा इन्होंने पसंद किया है। बागपत से संजय ढींगरा जी, नमन है इनके साथ, अपार ढींगरा है। और संजय जी किसको कहना चाहते हैं कि आप तो ऐसे ना थे। हाँ आइए सुनते हैं, ये गीत टाइटल ट्रैक है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं साथियों जिसमें एक ही गीत होता है लेकिन उसको मेल सिंगर भी गाता है और उसको फीमेल सिंगर भी गाती हैं। करना तो नहीं चाहिए लेकिन हम अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। कलाकार फूल की मानिंद होता है, कोई किसी से

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

स्वागत आप सभी का एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 के साथ जी। मन भावन प्रोग्राम आपका पसंदीदा प्रोग्राम है और जो गीत आपके मन को भाते हैं वो आप हमें फरमाइश के तौर पर

भेज देते हैं। आज अगर आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई ख़ास दिन है आपके लिए, तो हमें मैसेज कर सकते हैं आप fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। और यहाँ पर हमारे पास जो संदेश आया है, ये कहाँ से आया है, अग्रसेन यादव जी हैं। हम आपसे क्यों नाराज़ होंगे यादव साहब, आपने हमारा क्या ऐसा किया जो हम नाराज़ होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आँखों की बात है, नज़रों से कभी कोई चीज़ ओझल हो जाती है, और कोई बात नहीं है। और अग्रसेन यादव जी के साथ शकुंतला जी हैं और इनके साथ गरिमा है, और ये दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। अब दूसरा संदेशा लेना है मुझे। संदीप मक्कर जी हैं, ज्योति मक्कर हैं, मन्नत हैं, इनके साथ भरत हैं, और कमल सहानी जी हैं इनके साथ, और ये इन्होंने हमें जो संदेशा भेजा है वो जालंधर शहर से हमें संदेशा इन्होंने भेजा है। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है। और इसी तरह आप हमें मैसेज करते रहिए, पता हमने आपको बताया है, पता जो है वो है fmgoldaiadelhi@gmail.com। और मोताला बाज़ार से बबलू ठेकेदार जी हैं, इनके साथ शेख शगीर हैं और शेख वज़ीर हैं, और एक और नाम है इनके साथ जो कि हैं सोहेल शेख, ये इनका मैसेज आया है। और आप अपने संदेशे हम तक पहुंचा दीजिए, फिर आप ना कहिएगा कि देखिए अब टाइम जो है वो कम रह गया है, अभी हमारे पास समय है, आप अपने संदेशे हम तक पहुंचाइए। ये हमारे पास बबलेश पवार जी का संदेशा आया है, और चाय का टाइम हो गया, ये कह रहे हैं। अच्छा, चाय का टाइम हो गया आपका बड़ी जल्दी चाय पीते हैं आप। गांधी चौक से इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है। बाड़मेर से बबलेश पवार हैं, डैनी पवार हैं, इनके साथ मनीष हैं, और राम देवरा से इनके साथ दिनेश चौहान हैं, और डांगरी से बाबूराम जयपाल हैं। और अगला संदेशा जो है वो मैं लेती हूँ, बस ये बीच बीच में देखते रहना है हमने कि हमारा जो समय है वो हमारे पास होना चाहिए, और ज़्यादा नाम ना हो जाएं ताकि गीत कम ना पड़ जाएं। यहाँ पर हरियाणा रोहतक से हमारे पास अंकित जी का ये संदेशा आया है, और एक और संदेशा आया, फिल्म की फरमाइश भी इन्होंने की है। शब्बीर हुसैन साहब हैं, शहजाद हुसैन हैं, और मुजू बाब हैं, और आयजा अनम हैं, और ये इन्होंने फिल्म तो लिख दी है, बिल्कुल लिखी है, लेकिन अब देखना यह है कि हम आपकी फिल्म का गीत चला पाते हैं कि नहीं। सनावत से शेख मूसा जी हैं, और बानो भी हैं, इन्होंने भी हमें संदेशा भेजा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए, और अब मुझे लगता है कि अब एक गीत जो है वो आना चाहिए, क्योंकि नाम मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ दिए हैं। गीत आप तक पहुँच ही रहा है और पहुँच ही गया है, fmgoldaiadelhi@gmail.com पता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है जी ये, और आपका मनपसंद मनभावन प्रोग्राम। आज आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और हमारे साथ जो वक्त कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है उसके बारे में भी आपको बता दूं, 3:55:11 हो गए। अब आप समझ गए होंगे ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी जाफराबाद से ये हमारे पास श्री सुधाकर राजे जाधव जी का संदेश आया है। डॉक्टर प्रशांत हैं और इनके साथ कुमार सचिन हैं, कुमार प्रथमेश हैं, कुमारी प्रणाली हैं देशमुख, और कुमार सर्वद देशमुख हैं, और सानवी देशमुख हैं। इन्होंने हमें संदेशा भेजा। आपने बहुत सारे लोग हमें फरमाइश अपनी नहीं भेजते हैं ये सोच करके, चलिए आपकी फरमाइश हमारी बन जाएगी। तो ऐसा ही एक और संदेशा आया है, ये कहाँ से आया है, गांव लोहगढ़ से ये संदेशा आया है। स्वर्ण सिंह गिल हैं, दलजीत हैं, और राजदीप सिंह हैं, गुरनूर हैं इनके साथ, और इनके साथ दो और नाम हैं, गुरलाल हैं और अविराज सिंह जी हैं। और मुझे लग रहा है अब एक गीत जो है हम फटाफट सुन लेते हैं और देखते हैं कि ये पूरा हम सुन पाते हैं या नहीं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साथियों वेलकम बैक है जी आपका एफएम गोल्ड में, लेकिन प्रोग्राम जो है उसका समय जो है वो अब समाप्त होता है, लेकिन खुशी की बात है कि मन भावन आपसे रोज़ मुखातिब होता है ये कार्यक्रम। और फिलहाल सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए, इस कार्यक्रम से आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड। बहुत सारे कार्यक्रम अभी आपके लिए हमने लाने हैं, फिलहाल समय समाचारों का हो गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नीदरलैंड्स दोस्ती का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम में हैग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है।
1: नीदरलैंड्स के समाज और यहाँ की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर का तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। इस यात्रा का

देशीय द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होगी। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित अपने आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। नोटिस में सीबीएसई ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेजपिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशामुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोह सजेफेई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर और वक्त भी आप नोट करें 4:11:20। आइए साथियों आपको बताते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट

न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 बजे का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। साथियों, आप जानते हैं आपकी मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में 5 बजे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 पर आपसे मुखातिब होगा कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, जिसमें मैं सीमा आपके साथ रहूंगी और हमारे साथ रहेंगे कुछ चुनिंदा गीत 80 और 90 के दशक के। मेरी मुलाकात, मेरा साथ आपके साथ 6 बजे तक। 6 बजे हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 6:10 पर सदाबहार गीत एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। साथ रहेंगी रेशमा तिवारी। 6:20 पर शाम संस्कृत में समाचार होंगे और 6:30 बजे का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम मार्केट मंत्रा का रहेगा। इसी तरह हम आगे की जानकारी भी आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत एक साथ।

नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 के, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से एक रेडियो में युवावाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते हैं अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यहाँ जरूर कहूंगी कि आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, और रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड और व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड। मारे करे जुवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 और शाम 7:25 पर साथियों सांझ ढले कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा। आपके साथ इस प्रोग्राम में रहेंगी रेशमा तिवारी। और वहीं अगर हम बात करें रात 8:10 की, तो मधुरमा कार्यक्रम बहुत खूबसूरत कार्यक्रम जिसमें हम गीतों के शास्त्रीय अंग की बात करते हैं, ये भी अपने आप में एक खास प्रोग्राम है, इसे भी आप ज़रूर ज़रूर सुनिएगा। हमने शुरू में आपसे कहा था कि 4:20 पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हम सुनेंगे, आइए सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।
2: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Comptroller and Auditor General of India has issued an important notice for candidates selected for the post of accountant through combined graduate level exam CGLE 2025. Allocations of states and offices will be based on merit and candidates' preferences. Selected candidates must submit their personal details, attestation forms and state preferences online by 18th May 2026. Complete details available on the official website at www.cag.gov.in. Candidates can also fill their preference forms at www.cag.delhi.nic.in/state-choice. Central Pulp and Paper Research Institute has invited retired professionals from government departments, PSUs, universities, autonomous bodies and research organizations for consultant grade 2 and grade 3 posts on contractual basis. The walk-in interview will be held on 18th May 2026 at CPPRI, Saharanpur. Detailed eligibility criteria and terms available on the official website at www.cppri.res.in. I repeat, it is www.cppri.res.in.

0: www.ifm.org.in. Several government organizations and institutions have announced fresh recruitment and deputation opportunities. The Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India, New Delhi, has extended the last date for applications for the post of Scientist G on deputation basis up to 26th May 2026 for candidates from remote and specified regions. Complete details available on the official website at www.psa.gov.in. CRPF has announced a major recruitment drive for constable, technical and tradesman and constable pioneer posts with more than 9,000 vacancies for male and female candidates across India. The posts carry pay level 3. Online applications are open till 19th May 2026. Candidates must have at least metric qualification, while certain technical trades require additional qualifications. Details, state-wise vacancies and online application link is available at www.rect.crpf.gov.in. ICAR NIAP is conducting walk-in interviews for Young Professionals 1 and Young Professionals 2 positioned under different research projects. The posts carry a consolidated salary of 42,000 rupees per month. Interviews are scheduled on 18th and 19th May 2026 at the Institute campus in New Delhi. Candidates should check eligibility, qualifications and other details on the official website. And the website is www.niap.res.in. I repeat, www.niap.res.in. Islamic University of Science and Technology has invited online applications for the post of a professor in architecture under pay level 14. Applicants should have a PhD in architecture, strong academic background, and substantial teaching and research or professional experience. The last date for online application is 18th May 2026, while hard copies must be submitted by 25th May 2026. For details, kindly refer to the official website at this www.iust.ac.in. I repeat, www.iust.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
2: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट गुजरात, PMSSY नर्सिंग कॉलेज एम्स राजकोट के लिए नियमित आधार पर प्रोफेसर सह प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पद का नाम है प्रोफेसर सह प्राचार्य। वेतन स्तर होगा 13, 7वें CPC के अनुसार। रिक्ति है 1 अनारक्षित। प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड, विस्तार में विज्ञापन एवं जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। www.aimsrajkot.edu.in यहां पर जाएं और जानकारी प्राप्त करें। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें 3 वर्ष की अवधि तक उसे बढ़ाया जाएगा। इन पदों के नाम की जानकारी आप तक हम दे दें। PGT गणित में 1 पद है, काउंसलर के लिए 1 पद है, नर्सिंग सहायक के लिए 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए 1 पद, PEM PTI सह मेट्रन महिला 2 पद, सामान्य कर्मचारी 2 पद। संविदा की कुल अवधि किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हालांकि कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 11 महीने पूरे होने तक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कार्य निष्पादन समीक्षा और संस्थागत आवश्यकता के आधार पर अनुबंध को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख है वो है 18 मई 2026, और इंटरव्यू जो शेड्यूल्ड है वो है 22 और 23 मई 2026। आपको हम वेबसाइट की जानकारी दें ताकि आप वहां से आवेदन पत्र

और इससे संबंधित सारे शर्तें पात्रता देख सके www.sainikschoolpunglava.nic.in से डाउनलोड कर सके। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड श्री विजयपुरम अनिडको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं anniidco@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप जानकारी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ

0: 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं ANIIDCO@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप जानकारी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। TGT गणित में अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं। संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। TGT हिंदी के लिए अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं। संविदात्मक आधार पर TGT सामाजिक विज्ञान अनारक्षित 1 स्थान रिक्त है संविदात्मक। TGT मराठी में अनारक्षित 1 पद रिक्त हैं संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित 1 पद रिक्त है जो कि संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी 1 पद रिक्त है अनारक्षित। और प्रयोगशाला सहायक विद्यालय चिकित्सा अधिकारी दोनों में 1-1 स्थान अनारक्षित संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद 3 स्थान यहाँ रिक्त है संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा PO बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार जिला सतारा महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का www.sainiksatara.org.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। कुछ ही देर में हम कार्यक्रम सुनेंगे परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। कार्यक्रम परिक्रमा में मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
5: नमस्कार वैष्णवी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आर लिसनर्स। इट्स अ ब्यूटिफुल सैटरडे इवनिंग एंड टाइम फॉर आर डेली शो परिक्रमा। लिसनर्स, 30 मिनट्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट कॉल्ड डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्स्यूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड अ फ्लेवर ऑफ म्यूजिक टू। ऑल दिस एंड मच मोर विद द नेक्स्ट 30 मिनट्स। एंड वैष्णवी, लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम।
5: Several important agreements expected to be signed, including in the fields of semiconductor chips, AI and bilateral trade.
4: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे।
5: वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स रीवेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स इश्यूड सिंस 2011।
4: CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की।
5: एंड इन बैडमिंटन, इंडियन ड्यूओ सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी एंटर फाइनल्स ऑफ थाईलैंड ओपन आफ्टर अ थ्रिलिंग विक्ट्री ओवर मलेशियन पेयर इन द सेमीफाइनल्स।

0: And listeners, now time for our discussion segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about Sikkim's 51st Statehood Day and Prime Minister's visit to the UAE. Vaishnavi, Sikkim, it's a beautiful land where mountains touch the clouds.
1: Mm-hmm.
0: But beyond its breathtaking beauty lies a story that makes every Indian proud. Today, Sikkim is celebrating its 51st Statehood Day, and across the country, wishes have poured in from the nation's top leaders. President Draupadi Murmu describes Sikkim as a shining example of sustainable development.
2: राष्ट्रपति ने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता की सराहना की। वास्तव में सरबजीत, अगर हम देखें तो इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है। सिक्किम दुनिया का पहला और एकमात्र पूरी तरह से जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य है, जहाँ विकास और प्रकृति एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ते हैं।
0: एब्सोल्युटली वैष्णवी, सिक्किम इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेयर वी हैव सीन growth, but not at the cost of nature, not at the cost of rivers, forests and clean air.
2: बिल्कुल, यहाँ के किसानों ने जैविक खेती को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रकृति को सहेजते हुए पर्यटन का विकास किया गया और आधुनिकता के इस दौर में भी स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखा है।
0: वैष्णवी, इट्स बीन अ जर्नी फॉर सिक्किम एंड ऑफिशियली सिक्किम बिकेम इंडियाज 22nd स्टेट ऑन दिस डे इन द ईयर 1975 एंड दैट इज व्हाई स्टेटहुड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। बट द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हैड कंटिन्यूड थ्रू आउट द ईयर, इवेंचुअली कल्मिनेटिंग इन अ ग्रैंड सेरेमनी इन अप्रैल दिस ईयर वेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी जॉइंड द पीपल ऑफ द स्टेट इन गैंगटॉक। लेट्स शेयर अ डिटेल्ड रिपोर्ट on this with our listeners.
3: 16th May is celebrated as Sikkim Day, as on this day in 1975, Sikkim became part of India.
4: Initially, Sikkim was under Chogyal dynasty rule during the 17th century. However, by 1890, it became a protectorate state under British rule, who used it as a buffer state between China and British India. In 1947, as Sikkim became a part of India unofficially, its foreign policy, security and communication came under the realm of India, while maintaining its independence at the same time.
3: In 1973, the people started demanding a responsible government and a civil disobedience movement was established against the monarch. A referendum was held in which 97.5% of voters supported abolishing the monarchy. This led to Sikkim's official merger with India. To enable the incorporation of the new state, the Indian Parliament amended the Indian Constitution.
4: First, the 35th Amendment laid down a set of conditions that made Sikkim an associate state. A month later, the 36th Amendment repealed the 35th Amendment and made Sikkim a full state, adding its name to the first schedule of the Constitution.
2: इस दौरान प्रधानमंत्री ने सिक्किम में मिले स्नेह और आत्मीयता का भी उल्लेख किया। श्रोताओं, जो भी कभी पूर्वोत्तर गया है वे इस भावना को भली भांति समझ सकता है। कई बार मुस्कान के साथ परोसी गई स्थानीय चाय की एक प्याली भारत की एकता और अपनत्व का एहसास गहराई से करा देती है।
0: Yes, and Vaishnavi, heaven of the east. That's how Prime Minister described this beautiful state. And interestingly, this did not sound like a political line. It sounded personal.
2: बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने connectivity, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, खेल और युवाओं के लिए अवसर के बारे में बात की, क्योंकि दशकों से हिमालय क्षेत्रों के कई हिस्सों में लोगों को मुश्किल सड़कों, सीमित सुविधाओं और कम अवसरों से जूझना पड़ा रहा है।
0: Union Home Minister Amit Shah also praised Sikkim's achievements, saying the state continues to inspire the nation, whether through organic farming or redefining mountain tourism. The phrase redefining mountain tourism means a lot, Vaishnavi. Tourism in many places often becomes overcrowded and chaotic, but Sikkim offers something different. Clean streets, respect for nature, quiet monasteries and local markets selling handmade products.
2: बिल्कुल सही कहा आपने सरबजीत, कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम सिर्फ तस्वीरें लेके वापस नहीं लौटते हैं, बल्कि हम अपने वहां से शांति, सुकून और खुशी का एहसास लेकर के भी लौटते हैं। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को सिक्किम घूमने और वोकल फॉर लोकल पहल के तहत वहां के स्थानीय उत्पाद

0: तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।
1: Absolutely, Vaishnavi, and the Honorable Prime Minister has at various fora, you know, spoken about vocal for local, and he has been encouraging the citizens to go in for products made in the country itself. So because, you know, what is the reason behind this? Well, when someone buys local hand-woven products, especially from Gangtok, or tastes organic produce grown in Sikkim's villages, they are not only shopping, they are helping preserve livelihoods, traditions, and an entire way of life.
0: वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान श्री सिंधिया नामची पर्यटन सर्किट, भालेडुंगा स्थित स्काई वॉक परियोजना और नाथुला के निकट कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण पर्यटन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।
1: वेल, फॉर मेनी इयर्स पीपल स्पोक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट एज इफ इट वॉज डिस्टेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कट ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, बट टुडे the conversation is changing. Roads, railways, tourism, sports, digital connectivity and cultural exchanges are bringing the region closer to the national mainstream while preserving its unique identity.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर को भारत की अष्टलक्ष्मी बताया। ये 8 ऐसे राज्य हैं जो अपार शक्ति, सौंदर्य और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, और ये भावना सिक्किम से अधिक कहीं और दिखाई नहीं दे सकती हमें।
1: एंड दिस इंडीड वैष्णवी इज इंट्रीगिंग। व्हाट ट्रूली मेक्स इंडिया सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी? इज इट आवर लैंग्वेजेस, आवर फूड, आवर फेस्टिवल्स, आवर लैंडस्केप्स?
0: मुझे लगता है सरबजीत, इस सब सारे प्रश्नों का जवाब यही है कि मठों, ऑर्किड, बर्फों से ढकी चोटियों और जैविक खेतों से सजा एक छोटा सा हिमालय राज्य भी उतने ही गर्व और आत्मीयता से स्वयं को भारतीय महसूस करता है जितना राजस्थान के रेगिस्तान, केरल के समुद्र तट या दिल्ली की गलियां। यही भारत की असली ताकत है, विविधता में एकता और हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान के साथ जुड़ा राष्ट्रीय गौरव।
1: Very well said, Vaishnavi. Different stories, different cultures, different identities, yet one heartbeat. And Sikkim's journey beautifully reminds us of that truth.
0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात दौरे के बारे में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मित्रता अब केवल व्यापारिक संबंधों और तेल आपूर्ति तक सीमित नहीं रह गई है। आज ये साझेदारी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भविष्य को नई दिशा दे रही है।
1: एब्सोल्युटली, वेरी वेल स्टेटेड वैष्णवी। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रीसेंट विजिट टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज टेकन दिस पार्टनरशिप to an entirely new level. But it's very important to look into this question, that what does this really mean for the ordinary Indian? Does it mean cheaper and more secure energy for our homes? Does it mean more jobs for young engineers and skilled workers? Or does it mean India is preparing itself to lead the technologies of tomorrow?
0: इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, और इसके संकेत अभी से स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। सदियों से भारत और संयुक्त अरब अमीरात अरब सागर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। आधुनिक कूटनीति की शुरुआत से बहुत पहले ही दोनों देशों के व्यापारी इसी समुद्री मार्ग के जरिए मसालों, मोतियों, खजूर और कपड़ों का व्यापार किया करते थे।
1: But Vaishnavi, today the relationship has evolved far beyond trade ships and business deals. It has become a partnership built on trust, ambition, shared dreams for the future. And don't miss the scale of this growth. Trade between the two countries has crossed $100 billion for the first time.
0: जी सरबजीत, और एक पल के लिए अगर हम सोचे तो हर दिन हजारों व्यवसाय, कामगार, निर्यातक और परिवार इस मजबूत होती साझेदारी से लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे सूरत का कोई कपड़ा व्यापारी हो, कोची का कोई सी फूड निर्यातक, वहीं बेंगलुरु का कोई स्टार्टअप संस्थापक या दुबई में कार्यरत कोई तकनीशियन, ये सभी भारत के इस वैश्विक मंच पर तेजी से उभरने की इस बड़ी कहानी का हिस्सा हैं।
1: जी, एंड वैष्णवी, वी कैन नॉट मिस ऑन दिस दैट वन ऑफ द बिगेस्ट आउटकम्स ऑफ दिस विजिट इज एनर्जी सिक्योरिटी। इट्स अ बर्निंग टॉपिक इन टुडेज टाइम्स। एंड ऑफकोर्स, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ एवरी मॉडर्न नेशन, फ्रॉम द एलपीजी सिलेंडर इन अ मिडिल क्लास किचन टू फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। Energy touches everyday life.
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अब कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों के क्षेत्र में अपने सहयोग और मजबूत किया है। इसका मतलब ये है कि भारत खुद को इस तरह तैयार कर रहा है कि वैश्विक उथल पुथल या

0: अंतर्राष्ट्रीय संकटों के दौरान भी वे मजबूत से बना रहे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई परिवार आगे आने वाले मुश्किल समय के लिए बचत करता है। एक जिम्मेदार परिवार जरूरी चीजों का भंडारण करता है और सोच समझकर योजना बनाता है।
1: एब्सोल्युटली, एंड इंडिया इज नाउ डूइंग द सेम एट अ नेशनल स्केल, बट द विजिट वाज नॉट ओनली अबाउट ऑयल एंड ट्रेड, इट वाज अबाउट द फ्यूचर, अ फ्यूचर ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। इंडिया एंड द यूएई आर पार्टनरिंग टू सेट अप एन 8 exaflop supercomputing cluster, and that sounds highly technical, but its impact could touch millions of lives. Faster supercomputers can help India improve weather forecasting, scientific research, healthcare systems, defense technology and artificial intelligence innovation.
0: Shrutav, aaj kisi chote shahar mein baitha ek chhatra bhi kal inhi saajedariyon se viksit ho rahe infrastructure aur technique ki madad se artificial intelligence aadharit upkaran taiyar kar sakta hai. अवसरों का दायरा इतना व्यापक हो चुका है, और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आता है, क्या भारत एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभर सकता है?
1: Yes, indeed. The question is equally intriguing, Vaishnavi, and indeed, this is also a milestone for the country. The answer, of course, is slowly unfolding along the country's coastlines. A major agreement has been signed for developing ship repair and maritime infrastructure in Gujarat. Alongside this, there will also be skill development programs for India's maritime workforce.
0: श्रोता, इसका अर्थ ये है कि वेल्डर, टेक्नीशियन, इंजीनियर, लॉजिस्टिक पेशेवरों और शिपिंग व जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं।
1: Yes, Vaishnavi, and so interesting and nice that a young person from a coastal town who once searched for jobs abroad may soon find world-class opportunities within India itself. And that is the real transformation.
0: जी बिल्कुल, और इसी दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी और गहरा हुआ है। भारत अब रक्षा क्षेत्र को केवल बाहर से उपकरण खरीदने तक ही सीमित नहीं मानता, अब इसका जोर मेक इन इंडिया की सोच के अंतर्गत सह विकास, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है।
1: And perhaps the most beautiful part of this relationship, Vaishnavi, lies in the people-to-people connection. Millions of Indians living in the UAE are contributing every single day. Doctors, teachers, engineers, shopkeepers, entrepreneurs, construction workers and professionals. Their hard work has built bridges stronger than diplomacy itself.
0: श्रोताओ, घर भेजा गया हर रेमिटेंस भारत में कई सपनों को सहारा देता है। किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी पारिवारिक व्यवसाय की शुरुआत, एक नए घर का निर्माण या बेहतर भविष्य की उम्मीद, यही कारण है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात की साझेदारी इतने सारे भारतीयों को गहरे अपनत्व का एहसास कराती है।
1: एंड वैष्णवी, टुडे इंडिया इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द साइडलाइंस वेटिंग फॉर द फ्यूचर टू अराइव। इनफैक्ट इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टू बिल्डिंग दैट फ्यूचर। एंड परहैप्स द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस विजिट इज दैट इंडियाज राइज इज नो लॉन्गर अ प्रेडिक्शन, इट इज बिकमिंग अ रियलिटी दैट द वर्ल्ड इज एक्टिवली पार्टनरिंग विद, एंड दैट इज अ स्टोरी एवरी इंडियन कैन फील proud of.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है।
1: Yes, a major step towards preserving Nagaland's indigenous heritage has taken shape with the inauguration of the Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center in Kohima this month. The center aims to preserve, document and promote the rich traditions of the state's indigenous communities through art, crafts, music, folklore and storytelling. More details on this from our Kohima correspondent.
2: The Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center in Kohima was inaugurated by Advisor for Art and Culture, Government of Nagaland, K. Khongam Konyak on May 7. Constructed at a cost of over 1,283 lakh rupees, the project was jointly funded by the central and state governments. The three-story building houses a district museum, library, seminar hall, and dedicated tribal spaces representing all 16 tribes of Nagaland. The facility is expected to serve as a hub for exhibitions, research, learning, documentations, and cultural exchange, while also fostering unity and mutual understanding among tribal communities. Advisor for Art and Culture, K. Khongan Konyak, described the center as a living cultural space for future generations.
3: This center not merely as a place to preserve the past, but as a living

0: cultural speech, where tradition can be actively practiced, shared, and carried forward to future generations.
1: The project, first sanctioned in 2011, faced delays after funding was discontinued. The state government later revived the project using its own resources, leading to its completion earlier this year. The Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center now stands as a symbol of cultural pride, unity, and preservation for generations to come. For Parikrama, Asonyo from Kohima.
2: श्रोताओं, अब रुक करते हैं कोहिमा से पणजी की ओर। खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और शून्य हानि कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर बल देते हुए 42वें खनन सुरक्षा सप्ताह 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल गोवा में आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट।
3: इस अवसर पर खान सुरक्षा महानिदेशालय के उप महानिदेशक रामतार मीना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने तथा शून्य हानिकारी संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा,
4: हमारा जो पिछला सेफ्टी वीक का फंक्शन हुआ था 2016-17 में हुआ था, 2018 से हमारी माइंस काफी बंद हो गई थी और हम सबको ये खुश होना चाहिए कि इस बार हमारा कई माइंस चालू हुई है। हम लोग इस बार जो सेफ्टी वीक का ये फंक्शन कर रहे हैं, इसमें करीब 50 माइंस पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें गोवा राज्य की माइंस है और महाराष्ट्र की कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग का है कुछ माइंस, रत्नागिरी की एक तो माइंस है और रायगढ़ का कुछ माइंस है। तो सुरक्षा के प्रति हमारे जो कामगार हैं उनकी जो जागरूकता है उसको निरंतर बढ़ाने के लिए इस तरह का ये सेफ्टी का आयोजन किया जाता है।
3: कार्यक्रम में DGMS के वरिष्ठ अधिकारी, खनन कंपनियों के प्रतिनिधि तथा उद्योग से जुड़े भागीदार उपस्थित थे। गोवा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी से लगभग 50 खदानों ने 15 से 20 दिसंबर 2025 तक चले इस सप्ताह भर के आयोजन में भाग लिया था। इस दौरान सेमिनार, ट्रेड टेस्ट और फर्स्ट एडर प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य खदान सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। समारोह में एक स्मारिका का विमोचन किया गया, जिसके बाद विभिन्न सुरक्षा श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार वितरित किए गए। अगले खान सुरक्षा सप्ताह की मेजबानी वेदांता लिमिटेड को सौंपी गई है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
5: Well, as Maharashtra, along with other states, enters the second phase of the house listing and housing census today, let us go to Sindhudurg, district of Maharashtra, where a small village achieved a huge feat. We have a report.
6: Moot, a small village in Sindhudurga, has crossed a major milestone by becoming the first village in the state of Maharashtra to complete the self-enumeration process. It's a small village of just 36 houses, 43 families and a total population of 144. To elaborate further on how Moot village completed the self-enumeration process and how it inspired other villages to follow the same roadmap, we have with us District Collector of Sindhudurga, Trupti Dhodmise.
7: The first village which actually completed its self-numeration 100%, that is the village Moot in Vengurla Taluka, which actually comprises the population of 144. After that, more than 15 villages have completed the self-enumeration process. Seeing our achievement, Honorable Director Census Operations Nirupama Dange Ma'am also has taken the cognizance and appealed villages and district administration across the state to participate proactively in the self-enumeration process. So many villages in the state also have come forward after that and they have completed their self-enumeration process.
6: Moot village has set an example that when the government administration joins hands with common citizens and they work together towards a shared goal, small communities can achieve large targets. With Nilesh Joshi from Sindhudurga, this is Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
2: सरभ जी, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और घो सजे फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए थे।
5: In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans at the iconic Eden Gardens this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Lucknow Super Giants defeated Chennai Super Kings by 7 wickets at the Ikana Stadium last night, chasing a target of 188 runs. Lucknow Super Giants overhauled the winning mark in 16.4 overs, riding on Mitchell Marsh's fabulous innings of 90 runs in just 38 balls. Marsh was also adjudged player of the match.

0: Wasn't that beautiful, Vaishnavi?
1: Ji, bilkul.
0: And we are also remembering Maria Gethina Agnes. Today is her birth anniversary. Maria was an Italian mathematician, philosopher, theologian and humanitarian. The interesting part is that she was the first woman to write a mathematics handbook, the first woman appointed as a mathematics professor at a university, and the second woman appointed as a professor on an overall basis. She's credited with writing the first book discussing both differential and integral calculus. The Britannica defines her as to be the first woman in the Western world to have achieved a reputation in mathematics.
2: एक गहन आत्मविश्वास से भरकर सुबह निकल पड़ता हूँ घर से ताकि सारा दिन आश्वस्त रह सकूं। एक आदमी से मिलते हुए मुस्कुराता हूँ, वे एकाएक देख लेता है मेरी उदासी। एक से तपाक से हाथ मिलाता हूँ, वे जान जाता है मैं भीतर से हूँ अशांत। एक दोस्त के सामने खामोश बैठ जाता हूँ, वे कहता है तुम दुबले बीमार क्यों दिखते हो। जिन्होंने मुझे कभी घर में नहीं देखा वे कहते हैं अरे आप टीवी पर दिखे थे एक दिन। यही खासियत ही मंगलेश डबराल की कविताओं की कि वे बिना किसी भारी शब्दों के सीधे इंसान के भीतर चल रही भावनाओं को सामने ले आते थे। उनकी रचनाएं पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे ही मन की बात कह रहा हो। आज ही के दिन वर्ष 1948 में जन्मे मंगलेश डबराल हिंदी की आधुनिक कविता के प्रमुख और सम्मानित रचनाकारों में गिने जाते हैं।
0: और वैष्णवी, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा दैट शाम का समय है, इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग और इट्स अ सैटरडे इवनिंग, सो यू नो बिफोर वी वाइंड अप दिस

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये मिंढारी प्रेमनगर भगवानपुर नवापारा चिनिया महावीरगंज रामपुर कनकपुर कुंदीकला जामदोहर अखोरा बदौली जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या

0: 19 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गांव, बोड़ाझरिया, घासीडी, घड़गांव, बैगहवा, बैडाण, कंडराजा, चोरकी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, कुकुर गांव, कुदरा झरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए हम आपको बताएं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती आप सुनेंगे रात 9:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा पंडित कैवल्य कुमार गौरव का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद 5:10 पर आज की युववाणी होगी छत्तीसगढ़ी में। इसमें अपन गोठ में चर्चा का विषय है मन के अंदर के ऊर्जाला विकसित कराओ। साथ ही सुनेंगे क्रम आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में 6:30 पर कलाकार होंगे जवाहरलाल बघेल और साथी। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर सुनिएगा अमचेरी बाई और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी गीत।

7:21 पर होगा कार्यक्रम चौपाल। इसमें आप सुनेंगे आज की बात, पशुधन पर पौष्टिक चारा अजोला। किसानवाणी में आप सुनेंगे आज की सलाह, परंपरागत तरीके से मछली प्रसंस्करण। इस विषय पर जानकारी देंगी देवती जायसवाल। इसके अलावा होगा आज का प्रश्न और छत्तीसगढ़ी गीत। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। और अब कल के प्रमुख कार्यक्रम। कल रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में कल रात 10 बजे सुनिएगा विवेक सोनार का बांसुरी वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कल शाम 6:05 आप सुनेंगे खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की चिट्ठी, कानून की बात। इस कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार विषय पर अधिवक्ता असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल दुर्ग श्री सौरभ शेंद्रे से ली गई भेंटवार्ता। नमस्कार रायपुर, ये कार्यक्रम होगा रोज की तरह सुबह 7:05 पर। इसमें देश की वाणी आकाशवाणी में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री समीर शुक्ला से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक हटवार। कल सुबह 8:30 पर होगा बच्चों का कार्यक्रम किस लय। इसमें बच्चों की डायरी में चर्चा का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी। इन्हें भी जाने इस क्रम में आप सुनेंगे वार्ता प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए खतरनाक क्यों। वार्ताकार होंगी अणिमा श्रीवास्तव। साथ ही सुनेंगे प्रेरक प्रसंग और बाल गीत। कल सुबह 9 बजे कार्यक्रम खेल संसार में आप सुनेंगे साप्ताहिक खेल समीक्षा और अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता होंगे धर्मदीप डोंगरे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: मन के दिया ला बाती दे, अंधियारी हा खुद भाग जाही। हिम्मत के संग कदम बढ़ा, मंजिल तोर पास आ जाही।
1: डर ला मन के कोना मा धर, सपना के पंख लगा ले। हीरा असन चमकबे संगी, बस खुद ला पहचान ले।
0: संजा के बेरा माँ युवानी के अगुरा करत, रेडियो तीर माँ जुरिया के बैठे हमर जम्मो मयारू संगवारी मल्ला मोर यानी थनेश्वरी बघेल
1: और संग माँ मोर लिंकी साहू के
0: राम राम, राम जय जोहार। का बात है लिंकी, काबर अतका दुखी दिखा था जब ले आहस तब ले, कैसे एकदम कले चुप बैठे हस भाई?
1: का बताऊं थनेश्वरी, मोला लगा थे कि अब मोर अंदर कुछ नहीं बाँचे है, काम करे के मन नहीं लागे।
0: अरे ऐसा काबर कहा था भाई?
1: जौन सपना देखे रहे हो ना, तहु टूट गए। अब तो लगा थे मैं कुछ नहीं कर सकू।
0: ऐसे नहीं कहा संगवारी, हर मनखे के भीतर माँ एक हुनर और एक अलग ऊर्जा रही थे, बस ओकर पहचान करे की जरूरत होते।
1: मन मा ऊर्जा?

0: अब ओखर पहचान कैसे करबो?
1: बतावत हूँ, हर मनखे के मन मा एक ऊर्जा रही थे संगवारी। आज के जमाना मा लोगन हा बाहिर के ताकत ला खोजत हे, फिर असली ताकत ओकर भीतर में लुकाय हावे ओला नहीं देख पाते।
0: हाँ, पोट के हे संगवारी, हमन हा बाहर के चमक धमक मा और कोनो ला अपन ले आगू जावत देखथन ता अपन असली ताकत ला भुला जथन।
1: बिल्कुल, हमन हा सोचथन कि सफलता सिर्फ किस्मत ले मिलथे, फिर ऐसा नहीं है। असली ऊर्जा तो अपन भीतर में है, उही ला पहचाने के जरूरत है, मेहनत के जरूरत हावे।
0: सही कहे संगवारी, मोला सियान मन के गोठ हा सुरता आवत है। जिन मन का है, मन के खेत हा सुखा गे तो मैं पानी ला डार और बीजा ला बो, फिर देखबे फसल कैसे हरियाही तनला।
1: अपन मन के अंदर सुतत ऊर्जा ला जगाना बहुत जरूरी हावे। काबर की हर मनखे के भीतर एक पावर हाउस है, बस बटन दबा के बस देरी है हावे है नहीं है नहीं।
0: हाँ हाँ,
1: एकर बर कई ठन उपाय गला होते लिंकी।
0: संगवारी हो, मन मा सकारात्मकता लाए बर हमन ला भोर मा उठना चाहिए। जब चिरई मन चहकत रही थे, हवा हा सुघर रही थे, ए बेरा मा जागे ले मन मा सकारात्मकता आते। जैसे मोबाइल चार्ज होते वैसे मन घलो चार्ज हो जाते।
1: बिल्कुल बने गोट करे संगवारी, मन मा सकारात्मक ऊर्जा विकसित करे बर अच्छा संगति के होना घलो अब्बड़ जरूरी हावे। कहते ना, जैसी संगति राखिए तैसोई फल दीन।
0: थनेश्वरी, तोला हमर मन संग पढ़त रही सुरेश भैया सुरता हावे?
1: हावे ना संगवारी, कैसे भुला जहूं।
0: हाँ, 3 बेर 10वीं में फेल होय रहीस, फिर ओहा उही करले हार नहीं मानी संगी। आज गांव में सबले बड़े मुर्गी फार्म चलावा थे और 20 जन ला रोजगार घलो दे हावे।
1: का बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है।
0: परीक्षा के नंबर ले जिंदगी तय नहीं हुए,
1: नहीं हुए,
0: हिम्मत के संग आगो बढ़े ले होते।
1: बिल्कुल सिरतोन कहा था संगी हो, मन के भीतर के ऊर्जा ला विकसित करे बर आत्मविश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी हावे।
0: बिल्कुल जरूरी है संगी, यही आए जिन्हा हमन ला आगू बढ़े के रद्दा दिखाते।
1: बिल्कुल लिंकी, ते थॉमस एडिसन के बारे में तो सुने छोबे?
0: हाँ हाँ,
1: बल्ब बनाए बर 1000 बार फेल हुई, फिर ओखर मन के ऊर्जा है जो ताकत है हौसला है वो हा कभू नहीं बुझीस, ओमन ला अपन ऊपर विश्वास रहीस, जेखर सेती आज पूरा दुनिया मा उजियार हावे।
0: हाँ, फेल होना मतलब रुक जाना नहीं हो संगी,
1: नहीं है।
0: एकर मतलब होते और बढ़िया तरीका ले एक बार फिर कोशिश करना, माने दोबारा मौका मिलना है।
1: बिल्कुल संगवारी हो, सुरता राखो, तुम्हार भीतर माँ एक ऊर्जा हावे और ऊर्जा के गंगा बुहात हावे, बस ओला रद्दा दिखाए के जरूरत है, जेन हा रोज एक कदम चल के जीत ला अपन नाम कर सकत हो।
0: सिरतौन मा संगवारी हो, मनखे के सबले बड़े ताकत ओकर भीतर के ऊर्जा आत्मविश्वास होते। जेन अपन मन ला जीत लेते ओ दुनिया ला घलो जीत सकते।
1: बिल्कुल, अब यही ऊर्जा ला बुलंद राखे के जरूरत हावे।
0: हाँ हाँ।
1: संगवारी हो, दिया बाहर ले नहीं जरा, ओकर रोशनी भीतर के आगे ले निकलते।
0: वैसने मनखे के सफलता घलो ओकर भीतर के ऊर्जा ले जन्म लेते।

0: मोला मारे पीड़ित के बान रे संगवारी मोर संगवारी हो सुघर गीतला अपन सुरमा सजायरी ने भगवती साहू मन हा
1: और संग में सुने बर चाहरीन हमर संगवारी मन हा दत्रेंगे भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा मन हा लुकाऊपाली छतवन ले पुनीतराम सूर्यवंशी निर्मला सिंह निहारिका पंकज सिंह सूर्यवंशी मन हा ऐसने डंडी लोहारा बालोदले चाहरीन देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार डॉली बेबी पूजा आरती प्रभा देवी तामुरिया मन हा कोहराली ले चाहरीन कैलाश चंद्राकर मुकुद पुणेन्द्र साहिल चंद्राकर मन हा बोरसरा ले प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विभूति साहू मनहा सौंगा मगरलोड ले पुनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित कुमार देविका रानी गजेंद्र हेयांश कुमार चंदन मनहा
0: आज है दिन शनिवार तो हमार संगवारी मल्ला खास अगोरा रही थे भाई काबर अगोरा नहीं रही काबर की आज के दिन होते आप मन के चिट्ठी के बारी
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026 विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in
3: बदलो बदलो आदत बदलो
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
3: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: लिंकी
1: हाँ?
0: मैं बीच में अभी कहा रही हूँ ना चिट्ठी के
1: हाँ
0: तो संगवारी मन घलो कान दे के सुनत हुई कि ए मन हाँ कतिक बेर हमार चिट्ठी पातिर पढ़ी की के
1: हाँ भाई
0: काबक चिट्ठी में का लिखा है जाने के उत्सुकता तो हमला ज्यादा रही थे हमार ले ज्यादा संगवारी मन ला रही थे
1: हाँ बिल्कुल अब अगोरा ला दुरिया थन
0: हाँ शुरू कर थन आज के क्रम आप मन के चिट्ठी

0: लिंकी चिट्ठी लतो ते हाँ नंगा डरे हस कि मैं पढ़ू कह के भाई अब बता डार कौन संगवारी है का लिख के पठो है।
1: चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक मन हा के लिखे हावे 9 मई के दिन के चिट्ठी ला लिखे हावे। हमर छत्तीसगढ़ के महिमा बड़ महान हावे जेखर महिमा के बखान का करण आनी बानी के रुख राई सुंदर सुंदर किसान संगवारी के लहलहावत फसल रही थे और एकरे संगे संग हमर छत्तीसगढ़ के बोरे बासी ला तो फिर झन पूछ साग पान खोजे के जरूरत नहीं है नून मिर्चा गोंदली और एकरे संगे संग आमा की चटनी मिल जाए फिर का कहना खा ले दमदम ले पेट भर संग माँ कहूँ युवानी कार्यक्रम सुने खातिर मिल जाए ना त जान दे इसे लगते सोन माँ सुहागा हो जाते। शनिचर 9 मई के संझौती बेरा सूरज नारायण अपन ठौर मजावत रहीस उही बेरा मा 5:10 मा हमर मयारू संगवारी नीलिमा साहू और ऋषभ देव साहू हा परोसत आइस युवानी कार्यक्रम ला और ये दिन चल अकेला रे विषय और रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय मा गोट बात संग कार्यक्रम के शुरुआत करें। ईमान से गोट बात ला सुन के मोर अंतस मा माया के फूल बगरे लगिस और उही क्रम मा आप मन के चिट्ठी कार्यक्रम संग माटी के गीत कार्यक्रम मा श्रोता संगवारी मन के ईमेल संग पाती के बड़ सुघर ढंग ले समावेश करिस तन मन झूमगे सगे ऐसन सुघर आनंदमयी प्रस्तुति खातिर हमर मयारू संगवारी नीलिमा साहू और ऋषभ देव साहू के संगे संग युवानी परिवार ला अंतस ले हृदय ले बहुत बहुत धन्यवाद देवथन मया लगा के झोंक लुहू इही रिकम ले यहू संगी मन पाती भेजे रहीन आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह मोरस अनिल कुमार अजित कुमार आयुषी नंदिनी जंघेल बनहा ग्राम कोलिहारी दुर्ग ले सूरज भान साहू कमला बाई साहू मनहा धुर्रा बांधा भाटापारा ले प्रमोद देव कुमार नवीन कुमार युवराज साहू मनहा करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर श्रद्धा देवी लोचन लल्ली गिन्नी सहसपुर लोरमी ले छुटकू मोहित राम लोकेश रामकिशन दुलीचंद साहू सतीबाई भाऊ मनहा।
0: संगी हो ये तो आपन बहुत बढ़िया पाती लिखिया भाई कभू कभू जिंदगी में ऐसे पड़ाव घलो आते कि सोचे के मारे ना दिमाग घलो काम नहीं करे कि का करूं कि के हम दूसर ले सुलहा ले लेते हैं और उखर बाद लगते कि नहीं ऐसे हा बने रही तो हम उही कारज लगातन कभू कभू ज्यादा सोचे ले मन हा घलो भर जाते पूरा ही नहीं शांत अकेला के बुद्धि हा घलो काम आते और यहू बात हा पोट आए कि सिर्फ मनखे किताब समय ले ही मनखे हा नहीं सीखा भलुक परिस्थिति मा आए जम्मो कारण हा बहुत कुछ सिखा जाते और तब आभास होते कि कुछ दिन भर संग देवैया कतको मिल जाही जिंदगी में फिर अंततः मृत्यु मा कोनो एक झनला आघू ले जाएल पर थे एकरे सेती जरूरत मा एक दूसर के संग जरूर देवन फिर आशा कोनो ले ज्यादा झन राखन स्वयं अपन जिम्मेदारी मल्ला पुरोए के फरज मा आघू रहन मनुष तन मा तन मन की जिंदगी बड़ मेहनत और परिश्रम ले भरे हावे संगवारी हो और हम तो जानते छन थोकुन नहीं बहुत मेहनत हा मंजिल तक पहुंचाते बहरहाल ऐसने ही सुघर गोट बात ला 9 तारीख दिन शनिचर के आपन आप सबके कान तक पहुंचाई हमार संगी मन हा गीत संगीत के संग आपके आप सबके पसंदीदा क्रम आप मन के चिट्ठी मा श्रोता मन के विचार प्रतिक्रिया ला घलो जाने बर मिली सावे संगी संग ये दिन के कार्यक्रम के बहुत बढ़िया प्रस्तुति बर बधाई भेजे हो तेला मैं हा कार्यक्रम के माध्यम ले संगवारी लीनीमा साहू और ऋषभ देव साहू करा अमरावत हा पाती खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आगू गला आपके पाती के अगोरा रही जरूर पठो ता लिंकी तोर हाथ में औपाती दिखत है
1: हाँ अब अगोरा लदुहात औ संगी मन के पाती आए हवे तहु मल्ला हमन हा
0: बिल्कुल भाई बता डार मैं हा अगोरा करत हूँ।
1: तारीख 12 मई दिन मंगलवार के युवानी के बगियाला महकाइन हमर दू रेडियो कंपियर साथी तृप्ति भारती औ ललिता साहू मन हा ए दिन मा अपन गोठ ला अपन गोट माँ मुकुटधर पांडे जी के लिखे कविता ले करिन पढ़ाई लिखाई ज्ञान के गोट बात करिन संगे संग दोस्ती करे बर नवा रद्दा अपनाए बर किहिन और मेहनत और विद्या ले बल मा जीवन मा जीवन ला सफल बनाए के बात करिन ए बड़ निक लागे से और हमरो मन हा

कहना चाहत है संगवारी हो, ए सुघर जिंदगी माँ संगी हवय दया मया के सुघर दिया बाती है, औ सुरता माँ सुमत के तेल डार के प्रेम भाईचारा ले एला संगी बगराव कर बगरावन औ अक्षर ज्ञान के अंजोर करन, औ ए दिन सुनन सवाल जवाब अंक 229 के जवाब संग माँ अंक 230 बर सवाल लिखे रहिन, ए दिन कोयली कस गुरतुर गुरतुर माटी के गीत सुनिन जिन्हा हमला मोह डारिस, दिन के सफल प्रस्तुति पर युवानी अनुभाग तृप्ति भारती और ललिता साहू के संग जम्मू संगवारी मल्ला हमर डहाल ले गाड़ा गाड़ा बधाई भेजा था वन, और यही रिकम ले संगी मनहा पाती औ भेजे हावे जिन मनहा भी भड़गा कोंदा ले श्याम संगी मरावी राजकुमार मरावी रानी रजनी मरावी मनहा राहुल पूजा मरावी मनहा ऐसने ही भंगी टोला ले पाती पठोय हावे ननका राम धुर्वे जामुनबाई धुर्वे फिरत राम धुर्वे मालती धुर्वे और देवरी भाटा ले मुकेश कुमार रजक युवान रजक हान्या रजक तनुक रजक और संगवारी मनहा

0: ले श्यामसंगी मरावी, राजकुमार मरावी, रानी रजनी मरावी मन ह, राहुल पूजा मरावी मन ह, ऐसने ही भंगी टोला ले पाती पठोय हावे, ननका राम धुर्वे, जामुनबाई धुर्वे, फिरत राम धुर्वे, मालती धुर्वे और देवरी भाटा ले मुकेश कुमार रजक, युवान रजक, हान्या रजक, तनुक रजक और संगवारी मन ह।
1: संगी हो बचपन में कतिक बड़का बड़का शौक रहीस ना, ये बनबो वो बनबो, फिर हाँ। जब बने के पारी आते ता मेहनत था घलो रोवा देते, सिर तो बात है कि नहीं
0: हाँ।
1: कोनो संगी मन हा ननपन के शौक ला पंख दे के उड़ान भरते, ता कोनो हा उड़े के प्रयास मा दिन रात परिश्रम करते, दसवीं कक्षा में जाए के बाद पास होए के संसो हा पेर देवाए फिर ओखर बाद का विषय ला धर के आगू बढ़बो यहू हा सतावे, वो वक्त कौन जनी का सोच के हमन हा बहुत सोचन, सोच तो बहुत बड़का बड़का सोचन, जानो मानो बारहवीं के बाद पास हो गए कि बस हमर नौकरी मिल जाए। अब पहुंच गए धन कॉलेज मा, ओखर संगे संग आने आने प्रतियोगी परीक्षा हो जाते, तब समझ आईस कि भाई मन पसंद के पद पाना है ता अलग से घलो कस के पढ़ेल पर थे
0: हाँ।
1: और तब लागते कि अपन भीतर के कौशल प्रतिभा ला चिन्हेला, और आज उही दमले कतकोन प्रतिष्ठित व्यक्तित्व मन हा निखरे हवे। हम आज के युवा मन ला चाही कि अपन भीतर के हुनर ला चिन्हो और ओमा मन लगा के बूता करो, ईमान से अतका सुकून और उन्नति मिली कि संतुष्टि मिल जाही। ये झन सोचो कि पढ़ लिख डारे हन अब नौकरी के फिकर के बोझा मा मुड़ी पिरात हन, पढ़ाई लिखाई और काखरो ले कहींचो ले मिले ज्ञान हा व्यर्थ नहीं जाए संगवारी हो, ध्यान हाँ। रखो यहू सोचना चाहिए हमला कि घर मा घलो कतकोन बूता होते, खेती होते, कई ठन व्यवसाय होते, पैतृक व्यवसाय घलो होते, काबर नहीं ओला आगू बढ़ाया जाए, भाई सब झन नौकरी करही त बाकी ला घलो तो संभाले बर चाहिए, कोनो सोचे के गोठा है संगवारी हो, युवा संगवारी मतलब खास करके एकर बर कई ठन विकास के नाम पर योजना घलो हावे, लाभ उठाना चाहिए
0: हाँ।
1: ऐसने ही गोठ मल्ला धर के कौशल विकास ऊपर बने विस्तार ले गुड बात ला सुने हाँ। और इही दिन मंगल के ज्ञान ला बढ़ाए के क्रम सवाल जवाब घलो जाने सुने हाँ। मनोरंजन के गीत तो बड़ सुहाई से कहा था और बढ़िया प्रस्तुति बर बधाई पाती भेजे हाँ। तेला संगीत तृप्ति और ललिता साहू करा अमरावत हन, आप जम्मो संगवारी मल्ला तो अतका सुघर पाती भेजे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन, आगू वाला पाती जरूर पठो अगोरा रही। लिंकी
0: हाँ।
1: अगला पाती तोर हाथ में दिखत है, बता डार भाई।
0: हाँ, दिन 14 मई 26 के कार्यक्रम पहुना जोहार मा आयुर्वेदिक डॉक्टर गुलशन सिन्हा से नीलेश साहू और थनेश्वरी बघेल मन बातचीत करीन, जिनमें मुख्य बात लागिस कि आजकल युवा मन सोशल मीडिया ला देख के दवाई खावत है तेनहा सही नहीं है, डॉक्टर के पास जाके दवाई लेना चाहिए। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के पहल के बारे में बताइन, आयुर्वेदिक में पंचकर्म जैसे बिहनिया नहाओ और शरीर में तेल लगाओ और धूप में बैठ के जिन पंच थेरेपी के काम करे अब नहीं करे, जेखर ले कई ठन बीमारी होवत है, ज़्यादा तेल नहीं खाए के बाद योगा करे के बाद ला जोर दिस और किहिन की खान पान ला समय में करना चाहिए, फायदा के विस्तार ले बात बताइन, चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद के महत्ता ला विस्तार ले बताइन, डॉक्टर गुलशन सिन्हा और भेंटकर्ता थनेश्वरी बघेल नीलेश साहूला बधाई। क्रम माटी के गीत में सुघर गीत और क्रम हमर गाँव में संगी मन के गाँव ला जानो, जीवन में काम अवैया बात बताइन, तेखर बर वर्षा गोस्वामी और थनेश्वरी बघेल ला बहुत बधाई। चिरमिरी कुरसिया ले पाती भेजे हवे इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे मनहा।
1: सगी हो कोनो भी कारज बर एक लक्ष्य बना लेवे ना और उमा धुन धर के बूता करबे ना त लक्ष्य के करीब पहुंच जाथन, ऐसे ही लक्ष्य के बिना जिंदगी दिशाहीन, जिंदगी विषय ऊपर बढ़िया गोटला फरियाएं मैं औ वर्षा। संगी हो सोचा ना सियान मन या बड़का मन हा कोनो बात में रोक टोक नहीं करतीन, सोच रद्दा ला नहीं दिखातीन त सीतोन में हम हा भटक जाते और अनुभव ही हमला सही दिशा देते, ये ला ध्यान रख के उकर बात ला कभू झंटार हो। संगवारी हो स्वास्थ्य ही सबले बड़का धन माने जाते, एकदम सोला आना पोट गोटा है, बीमारी है कोनो मनखे ला देख के या उकर धन दौलत ला देख के नहीं आवे, तेकरे सेती काम बूता के संगे संग अपन सेहत के ख्याल घला बहुत जरूरी।

जरूरी है भाई, हम स्वस्थ रहिबो तभी तो हम काम कर पाबो। बहुत बढ़िया गोट बात संग ही बात ला विस्तार ले बताइन क्रम पहुना जोहार में डॉक्टर गुलशन सिन्हा मन विस्तार ले बताइन है। और माटी के गीत संग संगी मन के गांव के बारे में घलो जाने बर मिली से ए दिन के खास क्रम हमर गांव में सुन के आप जम्मो संगी मन बधाई पाती भेजे हो तेला ये कार्यक्रम के माध्यम ले वर्षा गोस्वामी तक अमरावत हाँ। और मैं तो यही करा झोंक डरे हूँ भाई। और डॉक्टर गुलशन सिन्हा और नीलेश तीर आपके बधाई ला अमरावतन पाती खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आगू गला आपके पाती के हमर ला अगोरा रही जरूर पठाओ। तो लिंकी पाती तो हमर कर आउ हावे फिर चलना एक ठन गीत सुन लेथन।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहिन ये सुघर माटी के गीत ला जिनला अपन सुर में सजाए रहिन विदुषी ममता चंद्राकर और साथी मन हा।
1: और सुने पर चाहे रहिन हमारे संगवारी मन हा पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता मन हा।

0: मेघाराम चिल्फीले, शुभम पटेल, दिव्या दीपांजलि, दीपक संतोषी, रामकुशल दीपांशु पटेल मनहा। कन्या जिला बालाघाटले अखिलेश कुमार यादव, ज्योति अंकित, श्रद्धा सौरव यादव मनहा। बलौदा छत्तीसगढ़ले दिलहन गौतम, अंजलि आनंद, समृद्धि पटेल मनहा। अम्बागढ़ चौकी ले रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस, रिहान खान मनहा।
1: लिंकी, तोर हाथ में पाती तो अवहावे भाई,
0: हाँ
1: ता बताडार कौन संगवारी हा कालिक के भेजे हावे?
0: पाती पठोय है जिला धमतरी मगर लोड ले पुनुराम साहू मनहा
1: कालिक के
0: लिखे हावे। 30 अप्रैल के दिन कार्यक्रम में आईस दुर्गा साहू और प्रांजल हा गोट बात की शुरू करीन कि मन ला हमेशा खुश रखना चाहिए। फिर ए बात मा मोर मन हा गवाही नहीं दिस, काबर की सबो दिन है एके बरोबर नहीं रहा है। कोनो बखत समय ऐसे आ जाते कि लाख उपाय करबो तो हमर मन हा खुश नहीं हो सके। धीरे धीरे जब समय बीत जाते औ दुख हा दुरिया जाते तो ओ कारण हा मन मोटाए मा लग जाते। तब सरलग खुशी के दिन हा आ जाते। अब ये सब सोच विचार हा सब अपन ऊपर रथे। आज मोर पारी है कार्यक्रम के कड़ी मा घलो पारी रहीस मोनिका साहू के जौन हा अपन गुरतुर गोठ बात संग सुघर सुघर गीत ला सुने। एखर बर मोनिका ला बहुत धन्यवाद। आखिर मा अंतस के आरो कड़ी मा 5 ठन पाती पढ़ेगी। पाती लिखने वाला श्रोता मन हा एक एक पाती मा अपन संग 5-5, 6-6 नाम लिखे रहिन। जैसे कोनो फरमाइश कार्यक्रम आए यहाँ थोरकन उचित नहीं लागिस। अंतस के आरो पाती ला अंतस के आरो जैसन रहन देवो, मोर यही कहना है बस।
1: तो संगवारी हो, आप मन पाती बहुत बढ़िया पठोए हो, आप मन के सुझाव समीक्षा सबों के स्वागत रहते हो, बहुत बढ़िया बात लिखे हो आप मन की दुख घलो ज्यादा दिन रहा नहीं, सुख घलो ज्यादा दिन रहा नहीं, तो हमन हा हमेशा खुश भी नहीं रह सकन ना हमेशा हम दुख भी नहीं रह सकन। तो यहू बात है, बहुत बढ़िया पाती खातिर आप मला धन्यवाद करबो और आपके जो बात है ओला हमन हा बिल्कुल ध्यान में रखबो। पाती खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो लिंकी,
0: हाँ
1: अगला पाती तोर हाथ में दिखत हावे।
0: हाँ ए पाती आ रही है 2 मई दिन सनिचर के बर लिखे हावे में हमर 2 मयारू कंपेयर संगवारी दुर्गा साहू और संग मा आ रही नीलेश साहू जिन्हा अपन गोठ मा सियान मन के मदद करो मा सुघर गोठ बात करिन कार्यक्रम ला गति प्रदान करिन। संग मा आप मन के चिट्ठी मा जम्मो श्रोता संगी मन के पाती और मेल ला ध्यान लगा के शामिल करिन और माटी के गीत मा सुघर सुघर गीत सुनाइन, बड़ आनंद लागिस। संगवारी हो बड़ मेहनत ले चिट्ठी पाती ला लिख के भेजथन और कार्यक्रम मा पाती ला शामिल करथो तब मन हा खुशहाली ले भर जाते। ता आज के सुघर प्रस्तुति खातिर दुर्गा साहू और नीलेश साहू ला सारथी परिवार कोती ले सुघर अकन गोट बात पर गाड़ा गाड़ा बधाई भेजे।
1: आपो मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद देवथन और बधाई घला देवथन संगवारी हो। और संगवारी मन कहाँ हावे रिंकी?
0: एमन संगवारी मन ही बेमेतरा ले सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत सारथी मनहा।
1: और संगवारी हो पाती खातिर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करत हन। आप जम्मो जेन संगवारी मन के पाती शामिल हो ते मतलब बधाई है भाई। और आगू गला ज्यादा ले ज्यादा हमर तीर पाती भेजू तेकर बर हमर पता ला लिखाओ। हमर पता हवे क्रम आप मन के चिट्ठी युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ पिनकोड है 4920001 और ईमेल के माध्यम ले हमर तीर अपन गुड बात ला भेजू तेकर बर पता हवे AIRYOUTH9@gmail.com और सब्जेक्ट कोड हवे Y8। तो संगवारी हो आप मन अतका सुघर सुघर विचार प्रतिक्रिया हमर तीर भेजथव, बढ़िया लागथे और सबोला हमन हा शामिल घलो करथन। हमरो मन में उत्सुकता रथे कि पियर पियर पाती में कौन जनी का लिखा हुई जाने बर उत्साह रहीथन। तो आप मन से हमरो एक ठन नानचून शिकायत है और निवेदन घलो हावे। जैसे हर क्रम बर ईमेल आईडी के संग हमर सब्जेक्ट कोड हावे वो मा आप मन अपन जोन भी बात है ओला सही कोड मा लिख के भेजो। अब बहुत झन संगी मन हा माटी के गीत के फरमाइश लिख के आप मन के चिट्ठी मा भेजत हावे और आप मन के चिट्ठी क्रम में केवल नाव ला लिख के शामिल करे बर हमला अनुरोध करते और कई जन संगी

हवे जेमन ह एके ईमेल आईडी म 4-5 झन अलग अलग गांव के संगी मन के नाव ला भेज देथे। ऐसे झन करो, सही सब्जेक्ट कोड ला लगावा। आप जम्मो श्रोता संगी मन के से निवेदन हवे, आशा है ये बात ला आप मन हा खचित ध्यान राखू। आप मन ला हमर क्रम मन के सब्जेक्ट कोड ला बता देथन। हमर क्रम माटी के गीत बर हमर कोड हावे Y9, आप मन के चिट्ठी बर हावे Y8, क्रम हमर गांव बर हावे Y11, क्रम सवाल जवाब बर हावे कोड Y13 और क्रम अंतस के आरो बर हावे Y10। ता आज के क्रम आप मन के चिट्ठी इहे तक।

संगवारी हो चिट्ठी पाती तो हो गए भाई, फिर मन करत है हमर की गीत सुने के, चलो भाई आपो मल्ला सुना देथन ये सुघर माटी गीत।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहें सुघर अकन माटी के गीत ला जिनला अपन सुरमा पिरोरहीन लता खपड़े मन
1: अभी गीत ला सुने बर चाहरीन हमारे संगवारी मन परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी खुमेंद्र तुसारनी मसिया पीपर पारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर कोरासी छत्तीसगढ़ ले पवन कुमार साहू क्रांति देवी पंकज सुस्मिता दीपिका साहू पथरिया छत्तीसगढ़ भरेवाले चंदुलाल नारायणी नोमेश नेहावानिया सिंगरौल बोगाटोला मोहला मानपुर ले मानिक राम सिन्हा तारामती मुनिंद्र इंदु चांदनी सविता देवी सिन्हा बंगला मटिया बालोदले शिव कुमार अंगारे अंजनी त्र्यंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे मनहा लिंकी
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026 विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in
1: कैसे लिंकी तो लिंकी लिंकी के अब्बर दिले चिल्लावत हो ते सुन भी नहीं करस भाई
0: अरे कायले बता डर भाई
1: बता था सुन हाँ। एक झन मोर संगवारी हेवा वह आन प्रदेश के रहे जेन हा कहत रहीस कि एक बार तुम्हारी हाय रहे हो तो देखे हो का गर्मी पड़ते भाई वहाद मनखे झूलत जाई तैसे गर्मी लागते घाम लागते का आदरी से
0: ओकरो कहना सही है थनेश्वरी फिर ये गर्मी हा सिर्फ हमारी यहाँ नहीं है जम्मो जगह मा मार तपत हवे कहूं ज्यादा तो कहूं कम
1: ये तो सिरतुन गोठाए हाँ। भाई सही कहा थस तै तेखर सेती कहिथन संगी हो पहिरे ओढ़े के संगे संग खान पान ला घलो बने चेत लगा के खाए पिए करो काबर हाँ। की शरीर हा सेहत के बात हवे हा औ गाहे लू लगे घलो बांच जही शरीर हा ठंडा रही अपने सेहत बर तो हाय जी
0: गर्मी के दिन आते आते ता फल फूल हा और पेय पदार्थ हा आगू आगू मा चौक चौराहों में घलो सज्जा थे
1: माने ते आवत खनी देखे हस लिंकी
0: हाँ
1: तभी कहा था आज कैसन खाए पिए के गोट गुठियावत है इसे कही के तब भाई अतिक सुघर गोट बात चला थे तब चल मैं हाँ सुना था ये सुघर गीतला
0: हाँ

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघनकन माटी के गीत ला, जनला सुर देरहीन गंगा दास मानिकपुरी और साथी मन हा।
1: अभी गीत ला सुने बचारी हमारे संगवारी मन सांकरा राजनांदगांव ले नारायण लाल साहू, कुलवंतीन दिवेंद्र प्रताप, नेहा मिलिन दिलेश्वरी, प्रणय तारुद्र साहू मन हा। लिंकी टाइम ला समय ला देखा तेज छते है,
0: हाँ
1: गोड़ बात करत जाए के बेरा हो गया हवे, तो संगवारी हो जाए के पहली बता देथन काली के कार्यक्रम युवानी, काली के कार्यक्रम युवानी सजी हिंदी में, जमे आप मन सुनो आज मेरी बारी है और नए तराने। और आज के कार्यक्रम कैसे लागी चिट्ठी पाती के माध्यम ले जरूर बताओ, अगोरा रही और ही गोड बात संग आज के युवानी ले अपन संगवारी थनेश्वरी बघेल
0: और संगमा लिंकी साहूला देवो विदा,
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के

0: पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर। सुनो।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा

0: वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
1: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। केंद्रीय गृह मंत्री काली ले 3 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत हैं। ये दौरान उमन हा मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करें और प्रदेश के जनजातीय गांव मन में अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाही। अब समाचार विस्तार ले। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। एकर अनुसार सबो विभाग संभागीय आयुक्त कलेक्टर और विभागाध्यक्ष मनला सरकारी संसाधन के बने उपयोग और गैर जरूरी खर्चा ऊपर नियंत्रण राखे बर कहे गए है। वित्त विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव डहार ले जारी ये निर्देश ला तत्काल प्रभाव ले लागू कर दे गए है। ये निर्देश अवैया 30 सितंबर तक प्रभावी रही। निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्री परिषद निगम मंडल और आयोग के पदाधिकारी मन हा अपन काफिला मा सिर्फ जरूरी गाड़ी मन के ही उपयोग कर सकी। एकर अलावा सबो सरकारी गाड़ी मन ला इलेक्ट्रिक गाड़ी मा बदले के निर्देश दे गए है। पेट्रोल और डीजल में होवैया खर्चा ला कमती करे बर और एकेच दिशा में जाने वाला अधिकारी मन बर वाहन पुलिंग व्यवस्था लागू करे बर कहे गए है। उन्हें जरूरी काम के अलावा राज्य सरकार के खर्चा में शासकीय सेवक मन के विदेश यात्रा ऊपर पूरा रोक लगे रही। जरूरी होए मा मुख्यमंत्री के मंजूरी लेबर पड़ी वर्चुअल और ऑनलाइन बैठका ला ज्यादा बढ़ावा दे जाही। उन्हें शासकीय भवन मा ऊर्जा की बर्बादी ला रोके बर जरूरी उपाय करे जाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली ले 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरा में आवत हैं। यह दौरान उमन हा 19 मई के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करही। बैठका में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संघरा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होही। बैठका के तैयारी के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय काली मंत्रालय में उच्च स्तरीय और समीक्षा बैठका करें और अधिकारी मन ले जरूरी निर्देश दीन। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरा के बारे में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा हा पत्रकार मन ला बताइन कि डायल 112 आपातकालीन सेवा के विस्तार करे जावत है। एकर तहत केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह 18 मई के रायपुर में 400 नवा गाड़ी के शुरुआत करी। ये दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राज

0: एक ठन नवा फॉरेंसिक लैब और जांच भर 33 ठन सर्व सुविधा युक्त वाहन के सौगात घलो देही। श्री शर्मा हा बतन की बस्तर के नेतानार सुरक्षा केंद्र हा पहले ऐसन जगह है जिला जन सुविधा केंद्र के रूप में बदले जावत थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपन बस्तर प्रवास के दौरान ये केंद्र के उद्घाटन कर ही। ये केंद्र में अस्पताल, स्कूल, बैंक और आंगनबाड़ी जैसन जरूरी सुविधा दे जा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा आज जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल में जाके तैयारी के जायजा लीन और अधिकारी मंडला जरूरी निर्देश दीन। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिला के कोसला गांव पहुंची नौ चौपाल लगाइन। ए दौरान उमन हा लोगन ले सीधे चर्चा करीन और सरकार के आने आने योजना में हुए काम के जानकारी लीन। उमन हा ग्रामीण मन के समस्या सुनी नौ अधिकारी मंडला उखर निपटारा करे के निर्देश दीन। ए मौका में मुख्यमंत्री हा कहिन कि सुशासन तिहार के उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और योजना मन के फायदा आखिरी मनखे तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री आज कोरबा जिला के लेमरू गांव घलो पहुंची नौ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही उनके नवा बने आवास के उद्घाटन करीन। ये दौरान उमनहा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राही मनला अंशदान की राशि के चेक घलो दिन। राज्य सरकार हा ग्रामीण महिला मंडला ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त बनाए बर बछर 2026 ले 2031 तक के अवधि बर द्वीप्ति योजना ला मंजूरी दे दे हैं। ये योजना के तहत गांव मन में सोलर दीदी तैयार करे जाही जौन मंडला सौर ऊर्जा के प्रणाली के स्थापना, संचालन और रख रखाव के प्रशिक्षण दे जाही। ए माइलोगिन मनहा सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसन ऊर्जा सुविधा के संचालन करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मैं आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश के जनजातीय गांव तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाए जाही। ये अभियान प्रदेश के 8,000 ले ज्यादा गांव मनमा चलही। आदिम जाति विकास विभाग के ये अभियान मा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ले जुड़े गांव मनला शामिल करेगी। रायपुर जिला ला छोड़ के प्रदेश के सबो जिला में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजना के फायदा पात्र लोगन तक पहुंचाए जाही। अधिकारी मन हा गांव गांव जाके जन सुनवाई करही और आदि सेवा केंद्र में मामला के निपटारा होही। ये दौरान सिकल सेल और टीबी जांच बर स्वास्थ्य शिविर घलो लगाए जाही। IPS अधिकारी अरुण देव गौतम ला छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक बनाए गए है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका सिंह ये संबंध में आदेश जारी कर दिन है। राज्य सरकार हा करीब 1.5 साल पहले ओमनला प्रभारी DGP के जिम्मेदारी दे रही। IPS अरुण देव गौतम ला संयुक्त राष्ट्र पदक के अलावा सराहनीय सेवा बर भारतीय पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा बर राष्ट्रपति पुलिस पदक ले सम्मानित करे जा चुके हैं। ओमनहा छत्तीसगढ़ कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हावे। राज्य शासन दहारले स्पष्ट करे गए है कि प्रदेश में ईंधन के पर्याप्त स्टॉक हवे और पेट्रोल डीजल के वितरण में सरकार दहारले सरलग निगरानी राखे जावत थे। यही बीच रायपुर कलेक्टर हा पेट्रोल के ब्लैक मार्केटिंग ला रोके बर एक ठन हेल्पलाइन नंबर जारी करे हैं। उन्हें शक्ति जिला में कलेक्टर हा पेट्रोल डीजल के बिक्री के बारे में सख्त आदेश जारी करे हैं। अब पेट्रोल और डीजल के बिक्री सिर्फ संबंधित वाहन में ही करे जाही। कलेक्टर के आदेश ला नहीं माने मा पेट्रोल पंप संचालक मन ऊपर कार्रवाई करे के चेतावनी देगी हवे। रायपुर में सफाई व्यवस्था देखैया कंपनी के कर्मचारी मन के आंदोलन आज तीसरा दिन घलो जारी रहिस। हड़ताली कर्मचारी मन हा आज दलदल सिवनी में उग्र प्रदर्शन करिन। ये दौरान पुलिस के जवान और हड़ताली कर्मचारी मन के बीच झूमा झटकी।

0: भलो होइस। कंपनी के आरोप है कि नगर निगम डाहर ले करीब 78 करोड़ रुपया के भुगतान नहीं करे गए है। ये हड़ताल में कचरा गाड़ी चलैया चालक मन घलो शामिल हैं, जौन मन हा वेतन बढ़ाए के और सही बेरा में भुगतान करे के मांग ला लेके प्रदर्शन करत हैं। ये कर्मचारी मन के हड़ताल में जाए शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के व्यवस्था में घलो बाधा पड़े है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। ए बखत के अंक में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के संबंध में जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में तेज गर्मी के संगे संग आंधी और हल्का वर्षा के दौर शुरू हो गए है। मौसम विभाग के अनुसार अवैया कुछ एक दिन तक प्रदेश में धूप और छांव के स्थिति रही। अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा होए के या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। वहीं कुछ एक जगह में अंधर चले के और आकाशीय बिजली गिरे के आसार है। यह बीच मानसून आज अंडमान सागर निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल के खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं। एकर 26 मई तक केरल पहुंचे के उम्मीद है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। केंद्रीय गृह मंत्री काली ले 3 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत हैं। ये दौरान उमनहा मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करही और प्रदेश के जनजातीय गांव मन में अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् वैश्विक समाह्वानान् निवारणाय विश्वसनीयस्य भविष्यस्य कृते सज्जतायाः च आपूर्ति श्रृङ्खलायाः निर्माणार्थं भारत नेदरलैंड्स देशौ सहभागित्वं कुर्वन्तौ स्तः। भारतमवसराणां भूमीति वर्णितम्। सेनाध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना पाकिस्तानं भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं प्रदातुं भारतस्य विरुद्धं कार्याचरणाय च सावधानं कृतम्। पश्चिम बंग सर्वकारेण 11,000+ प्रदीयमानानां जाति प्रमाणपत्राणां पुनः सत्यापनं कर्तुं आज्ञापितम्। सीबीएसई इत्यनेन 12 कक्षायाः छात्राणां कृते उत्तरपत्राणां द्विस्तरीय पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया घोषिता। अपि च थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपांत्य चक्रीय क्रीडायां मलेशिया देशस्य युगलं पराजित्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारत नेदरलैंड्स देशौ विश्वस्यापि समाह्वानानां निवारणाय विश्वसनीयं पारदर्शकं भविष्यस्य कृते आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। यत् सः बहुविध संकटैः ग्रस्तम् आपद्दशकम् इति वर्णितम्। नीदरलैंड्स देशस्य हेगनगरे स्वस्य पंच देशानां यात्रायाः क्रमे सामुदायिक कार्यक्रमं संबोधयन् प्रधानमंत्री श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वं कोविड-19 महामार्या वर्तमान संघर्षेण उद्भूत ऊर्जा संकटं चेत्यादीनां अभूतपूर्व प्रतिसंधिं सम्मुखीकरोति।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: सः सावधानम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या निराकरणे विफलतया वैश्विक विकासलाभः व्यतिक्रमितः भविष्यति तथा च जनसंख्यायाः विशालः भागः निर्धनतायां निमग्नः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः

दिनांका द्वाविंशति दिनांक पर्यन्तं प्रति विषयाय 700 रूप्यकाणां शुल्केन मूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां प्रतिबिम्बित प्रतिलिपिं प्राप्तुं अन्तर्जालीय माध्यमेन आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन आगामि दिनद्वयोः अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु उपहिमालयीय पश्चिम बंगे सिक्किम राज्ये असमे मेघालये तथा दक्षिण कर्नाटके अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अनेन विभागानुसारेण श्वः अरुणाचल प्रदेश केरल माहे तमिलनाडु

0: में मेघालये तथा दक्षिण कर्नाटके अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अनेन विभागानुसारेण श्वः अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा करैक्कल चेत्येत्येषु क्षेत्रेषु अपि एतादृशी एव स्थितिः भविष्यति। विभागेन उक्तं यत् बिहारे राज्ये, आन्ध्रप्रदेशे, छत्तीसगढ़राज्ये, पूर्वी राजस्थाने, झारखण्डे, लक्षद्वीपे, मध्यमहाराष्ट्रे, मराठवाडायां, जम्मूकश्मीरप्रदेशे, लद्दाखे तथा देशस्य उत्तरपूर्वीय भागेषु च अद्य गर्जनेन तीव्रवातैश्च सह झंझावातस्य संभावना विद्यते। विभागेन झारखण्डे, मध्यप्रदेशे तथा राजस्थानस्य केषुचित् स्थानेषु उष्णतरंगस्य स्थितेः अपि घोषणा कृता। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपांत्य चक्रीय क्रीडायां मलेशिया देशस्य गोह सेफेई तथा नूर इज्जुद्दीन इत्यमुं च पराजित्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य आतिथेय कोलकाता नाइट राइडर्स इतीदं दलं ईडन गार्डन्स इत्यत्र गुजरात टाइटन्स इत्यनेन सह क्रीडिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यनेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं जवाहरलाल बघेल और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ददरिया।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लीजिए अब सुनिए जवाहरलाल बघेल और साथियों के स्वरों में ये छत्तीसगढ़ी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे जवाहरलाल बघेल और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
7: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए दिशा निर्देश जारी किए, सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगा

0: प्रतिबंध, मंत्रियों के काफिलों की गाड़ियों में की जाएगी कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी रायपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। वित्त विभाग ने शासकीय खर्चों में मितव्ययता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों तथा विभाग अध्यक्षों को सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा जारी इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ये निर्देश आगामी 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे। निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारी के काफिले में केवल जरूरी वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाहन पूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर राज्य शासन के खर्च पर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भौतिक बैठकों के स्थान पर वर्चुअल और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि डायल 112 आपातकालीन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री श्री शाह 18 मई को रायपुर में 400 नए वाहनों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राज्य को एक नई फॉरेंसिक लैब और जांच के लिए 33 सर्व सुविधा युक्त वाहनों की सौगात भी देंगे।
1: 112 की सुविधा थी वो अब तक 16 जिलों में लागू थी और इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा था। वो पूरे प्रदेश में 18 की सुबह प्रारंभ हो जाएगा। 400 गाड़ियां पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पहुंचेंगी। हमारे ही पुलिस लाइन से इसको माननीय अमित शाह जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ कर दिया जाएगा।
0: श्री शर्मा ने बताया कि बस्तर का नेतानार सुरक्षा केंद्र पहला ऐसा सुरक्षा शिविर होगा जिसे जन सुविधा केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बस्तर प्रवास के दौरान इस केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
1: हमारे जो सुरक्षा के कैंप हैं, उन कैंपों को अब सुविधा के केंद्रों में बदल दिया जाए। नेतानार वो पहला स्थान है जहां केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के सुरक्षा के कैंप को सुविधा के केंद्र में बदलने जा रहे हैं। हमारे सुरक्षा के कैंप जितने हैं वो सारे सुरक्षा के कैंप आने वाले समय में पंचायत के भवन, स्कूल के भवन, आंगनबाड़ी के भवन, चिकित्सालय हो सकते हैं।
0: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के बस्तर प्रवास को लेकर आज जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ईंधन की वितरण व्यवस्था पर प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है। इस बीच रायपुर कलेक्टर ने पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं सक्ती जिले में कलेक्टर ने डिब्बा और बोतलों में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले के कोसला गांव पहुंचे और चौपाल लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोसला गांव के महतारी सदन और हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
2: सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी को 1 महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है।

मुख्यमंत्री आज कोरबा जिले के लेमरू गांव भी पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के नवनिर्मित आवास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राहियों को अंशदान की राशि का चेक भी प्रदान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आगामी 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान प्रदेश के 8000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारी गांवों में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। इस दौरान सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए द्वीपती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी, जिन्हें सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं सोलर मिल कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसी ऊर्जा सुविधाओं का संचालन करेंगी। योजना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर के कुछ समूह पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। रायपुर में सफाई व्यवस्था संभाल रही कंपनी के कर्मचारियों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताली कर्मचारियों ने आज दलदल सीवनी में उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के जवानों और हड़ताली कर्मचारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। कंपनी का आरोप है कि नगर निगम द्वारा करीब 78 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। इस हड़ताल में कचरा गाड़ी चलाने वाले चालक भी शामिल हैं, जो वेतन बढ़ाने और समय पर भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था बाधित हुई है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले की विशेष अदालत ने वाड्रफ नगर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुनाया गया है। आरोपी को एंटी करप्शन ब्यूरो की अंबिकापुर शाखा ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। इस बीच मॉनसून आज अंडमान सागर निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। इसके 26 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने कबीरधाम प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अधिक पौधरोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने करीब 1.5 साल पहले उन्हें प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रमेश कुमार डटसेना और सूरजपुर जिले की शिवनंदनपुर नगर पंचायत के लिए रितेश जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और राजनांदगांव जिले के माड़ीतराई गांव में प्रशासन ने छापामार कार्रवाई कर करीब 2,300 बोरी खाद जब्त किया है। अधिकारियों ने खाद गोदाम को सील कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगा प्रतिबंध। मंत्रियों के काफिलों की गाड़ियों में की जाएगी कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी रायपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की

0: से सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं, आइए सुने चित्रपट संगीत।

0: मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजों में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म हम के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, हमें खेद है, ट्रांसमीटर में विद्युत अवरोध के कारण आप हमारा प्रसारण 6:53 से 6:58 तक नहीं सुन सके।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: डिस्को डांसर, इस फिल्म का गीत आपने सुना विजय बेनेडिक्ट और साथियों की आवाजों में। अनजान के लिखे गीत को संगीत दिया था बप्पी लाहिड़ी ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार, एस जानकी और जावेद जाफरी की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम मेरी जंग।
1: Welcome, friends, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
2: No!
3: No!
1: Samba?
2: No!
3: No!
1: Rumba?
3: No!
1: Samba?
3: No!
1: Tequila?
3: No!
1: Tango?
3: No!

किशोर कुमार, एस जानकी, जावेद जाफरी और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे फिल्म मेरी जंग का ये गीत। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: कार्यक्रम सुनिया जम्मो संगवारी मल्ला भूषण
1: अउ मनीषा के राम राम।
0: मनीषा
1: हाँ,
0: एसो के घाम गर्मी कतका पड़त तिला ते देखते हस है ना। और मंझनियागंज से घर ले बाहर निकलबे ना तहन तो लग लग लग लग करे लागथे। और कैसे में तो मनीषा ए साल ज्यादा गर्मी पड़त है।
1: अब कैसे करबे भूषण, कतको घाम कर है नहीं। ये देखते कहते अच्छा सा बड़ घाम पड़त है कही के लग लग ले है नहीं। तो किसान मन के मन ला घाम में निकले ले पर थे और झेलत तो हमन रे भाई ये गर्मी ला। अब बेरा बेरा के बात आए भूषण, अतका गर्मी पड़त तेकर पाछू कारण आजकल के आधुनिक रवैया हर घलोक बड़ कारण है। और पेड़ पौधा सब कटावत जाते भूषण, तरिया डबरी पटावत जाते, खपरा छानी मन सब ढलावत जाते, बिना पेट्रोल के चलैया साइकिल गाड़ा बैला में नंदावत जाते और नवा नवा कारखाना फैक्ट्री मन खुलत जाते।
0: चेतन के मनीषा बेरा बेरा की बात तो आए भाई। और बेरा का है आधुनिक हो गए, सुख सुविधा तो मिला।

0: लगथे हमला आज जउन हमला तकनीकी सुविधा मिले हे ना एमा कारखाना फैक्ट्री जोन खुले हे ओकरे द्वारा ही ये संभव हो पाए है ना। अब घंटों काम जोन है वो मिनटों में करत है मनीषा है तो ये भाई तकनीकी जोन सुविधा हमला मिले है ना एकरे बदौलत फिर जानता है ना सुख सुविधा जे है ओकर कुछ नकारात्मक प्रभाव घलो रहते तो एकर प्रभाव हमर पर्यावरण पर घलो पड़त है। और का है ना आज जोन अतका गर्मी पड़त है ना तेकर पाछू यही कारण है काबर पर्यावरण जो है प्रदूषण देखे बर मिलत है काबर कुछ हद तक पर्यावरण के ऊपर घलो यह निर्भर करते जोन गर्मी है तेन है। और ते देखे हो कि जेन जगह के नज़दीक में जैसे कारखाना फैक्ट्री है ना वो जगह ज़्यादा गर्मी जना थे बजाय पेड़ पौधा वाले जगह के है ना।
1: एकदम सही कहा था भूषण। आज देख हमर देश के आबादी हर घलोक बढ़ात जाते है नी जेखर कारण जम्मो जिनिस के पूर्ति ह घला एक ठा चुनौती हो सकत है नी होते जाते। अब खान पान के सामग्री कहान कपड़ा लत्ता सब महंगाई बढ़त है। बढ़त आबादी के चलत गांव में जौन परिया भाटा रहे ना तहु ह नहीं बाँच पावते और एखर ले घला कई प्रकार के समस्या हमर मन करा आवाज जाते।
0: आबादी बाढ़ गए मनीषा देख और गांव में तो अभी ऐसे है ना कि हमन आस पास देखे हो जगह जगह पर लड़ाई हो जाते आबादी जमीन तेमेगा तभी का है हमन खे हमारे गांव में हमन पशुपालक आवन और वही गाय मन पर चारा गाह जरूरी है और ऐसा में आबादी बढ़ गए है तो हमला चारा गाहक समस्या हो गए है। और ये जोन समस्या है बढ़त जाते और एक से का है जोन हमारे पशुपालक है ये मनला चारा के जोन व्यवस्था है ओला करे बर मुश्किल हो गए काबर अभी गर्मी के दिन है कांदी लुएल जावे तो एक बोझा कांदी नहीं मिले मेड़ पार मन सब सूखा आए खेत खार में तो धान बोई तो धान लुआ गए कहाँ कांदी मिली भाई ते चारक समस्या जोन है ना ये बाढ़ गए है है कि नहीं।
1: हाँ एकदम सही कहा था भूषण ते हाँ अब देखते हाँ चारा के गोट करे हस ना ता ये समस्या तो हावे फिर जी हाँ समस्या रहते तो वहाँ समाधान भी जरूरी होते ता ए खातिर हमन पौष्टिक चारा के व्यवस्था करे खातिर ये अजोला के खेती कर सकथन और एला करे के पहली है नी कैसे हमला करना है एकर हमन अपन आने कार्यक्रम में घलो गोट करे हावन।
0: और ये अजोला के गोट तो हमन करते रहथन विशेषज्ञ मन सन घलो एकर बारे में चर्चा हो हवे है ना। तो ये जो अजोला है ना मनीषा ये एक किस्म के काय हरियर तैरिया जैसे पानी में तैरत रहते नहीं वैसे ढंग के जली फल ना है और एकर बड़वार बड़ होते और एकर जो उपयोग है ओला हम पशु के चारा बर कर सकथन काबर बताऊं ये जो अजोला है ना इमा भरपूर मात्रा में ना प्रोटीन खनिज आयरन कैल्शियम और विटामिन भरपूर मात्रा में मिलते ये कारण एकर जोन खेती है ना पशुपालन पर बहुत उपयोगी है और माने जाते भाई कि ये अतका भरपूर मात्रा में प्रोटीन खनिज कैल्शियम मिला थे तो आने चारा से तो यह उपयोगी रहबे करी है ना। फिर देख मनीषा गुड बात तो हमन करबो कार्यक्रम जारी है भाई ता चल सुनथन ये संदेश ला।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अजोला है ना भूषण, यह एलाना हमन हा तरिया डबरी गड्ढा और पानी है नी, ये जगह में उगा सकथन। एक बार उपरहा बहुत अकन हमला जमीन के जरूरत नहीं पड़े है नी, ये पानी के ऊपर चटाई ऐसा फैल रहते हैं। और एकर खेती करना है ना तो हमला पानी वाले जगह खोजेल लग है नी, या पानी सकेलन अपन घर के बारी बखरी जमा एक ठन छोट कन टंकी ऐसा घलो बना के हम इला उगा सकथन।
3: और एकर जो खेती है नदी तो बहुत आसानी से और कम खर्चा में हमारे किसान संगी मन कर सकते। बाड़ी ऐसी जगह जी ना पेड़ पौधा तो बाड़ी बखरी में रहते देखे हो।

है ना, तो पेड़ पौधा रहे जिस जगह, मतलब आधा गांव आधा छांव रहते नहीं गा, ऐसे जगह में एक बना लेन गड्ढा। गड्ढा ऐसे रहा है मनीषा की 6 से 8 फीट वह लंबा रहा है, 4 फीट चौड़ा रहा है, 1 फीट के वह गहरी रहा है। ऐसा गड्ढा करके ना उसमें हम चाहन तो झिल्ली जोन पनकापड़ आते तीन ला काट के, या फिर तिरपाल अगर बने अच्छा दिन, मतलब लंबा समय तक ये खेती ला करना है तो हम तिरपाल लगा देन, काबर वो मजबूत रहते पानी निथरे नहीं, है ना। ऐसे करके ओमा पानी भर देन, और पानी कतका भरना है 10 से 15 मतलब इंच तक पानी भरना है हमें, है ना। और फिर ओमा 15 किलो बारीक माटी और 2 से 3 किलो सड़े हुए गोबर खाद, है ना, ये सब ओला डाल देन और घोल देन। और घोले के बाद जैसे वो तैयार हो गए ना, तो उसमें हम 500 ग्राम से 1 किलो माने आधा 1 किलो अजोला के जो बीज है तेला में डाल देन। और फिर देखन कि ये जो अजोला है, मैं पहली घरों कह रहा हूँ कि अगर बढ़वार बिकट है कहीं के, है ना, तो ये 2 से 3 दिन में ये जो अजोला है ना ये फैले के चालू हो जाते हैं।

डाल देन और घोल देन। और घोले के बाद जैसे वो तैयार हो गए ना, तो उसमें हम 500 ग्राम से 1 किलो माने आधा 1 किलो अजोला के जो बीज है तेला उसमें डाल देन। और फिर देखन कि ये जो अजोला है, मैं पहली घरों कह रहा हूँ कि एक बढ़वार बिकट है कहीं के, है ना। तो ये 2 से 3 दिन में ये जो अजोला है ना, ये हा फैले के चालू हो जाते हैं। तो एक बढ़वार ज़्यादा है ना, तो ये 15 से 20 दिन में ही यहाँ एला हम एक एक दो दो किलो चाहन ना तो एला निकाल सकथन। मतलब जैसे उसमें फैल गया अजोला है, तो जाली के माध्यम, जैसे हमारे टुकनी नहीं रहते घर में, टुकनी हो गए, छन्नी हो गए, एकर माध्यम से ओला हम निकाल के पशु मन के चारा खातिर, पशु गाय हो गए, बकरी बकरी हो गए, या अपन मुर्गी, एकर चारा पर घलो उपयोग कर सकथन। और देख मनीषा, गुड बात तो करबो, फिर बेरा है किसान वानी के, और एकर प्रोजेक्ट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: गाड़ी बैला ला सजा दे भाटो, बिहाव माने पर जाबो, ऐसन सुघर गीत ला स्वर दे रहीन जवाहरलाल बघेल त्रिवेणी और रागनी है।
1: मनीषा हाँ। देख हमन भाई आज अलग बारे में गोट करत रहे है ना, और ये बने प्रोटीन आयरन ऐसन वाला चारा हमर पशु मन बर होते कहते है ना, तो ये जो है मुर्गी पालन वाला जो किसान है हुमन एकर उपयोग कर सकते चारा के रूप में, मछली पालन जो किसान करे थे ओहू एकर घला उपयोग कर सकते है ना, तो प्रोटीन आयरन कहाँ था हमारे जिसे शरीर बढ़ रहे थे मनखे के अच्छा खाबो तो अच्छा रिबो हमन है ऐसे
0: हाँ।
1: सोचता नहीं गा, और इसने हमारे पशु मन के बढ़िया ध्यान रखना है तो ओकर सेहत ऊपर घलो ध्यान देना जरूरी है, और ओकर ऊपर कोनो बीमारी झन आवे रोग झन आवे तो भाई खाना पीना है जरूरी है, तो भाई अजोला जो है अभी के बेरा में जानकार मन घलो के है कि एक सर्वोत्तम चारा हो सकते हैं जम्मो जो हमारे पशु है तेकर मन पर, और भाई गोट करत रहे हैं जैसे मछली के चारा बार, तो वैसे जानता हो संगवारी हो आज के सलाह हमार क्रम होते
0: हाँ।
1: जेमा हमार नवा नवा जानकारी आप मल्ला देवत रहते हमार विशेषज्ञ के माध्यम ले, तो वैसे आज के सलाह क्रम है आज जेमा आप मल्ला सुने पर मिल ही सुघर जानकारी परंपरागत तकनीक से मछली प्रसंस्करण, और विशेषज्ञ हवे देवती जायसवाल जी एमन है सहायक प्राध्यापक फिशरीज पॉलिटेक्निक धमधाले हैं दाऊ जी वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अर्जुन दले, तो आवो सुनथन आज के सलाह ये क्रम।
2: संगवारी हो बेरा बेरा मा नवा नवा जानकारी नवा नवा तकनीक के विषय में हमारे विशेषज्ञ मन बतात रही थे, और विषय गला अलग अलग रही थे, कभी पशुपालन कभी मछली पालन कभी खेती किसानी कभी साग भाजी तो कभी फल फलहारी और कभी फूल, तो भाई आज हमन बात करबो मछली पालन विषय में, और आज हमार गुड़ बात के विषय जेन है वो ये है कि परंपरागत तरीका ले हमन मछली के प्रसंस्करण कौन ढंग ले कर सकता उन्हें कले लाभ काका होते, और ये विषय में गुड़ बात करे खातिर आज हमारे संग है विशेषज्ञ देवती जायसवाल।

0: या आप मन ह सहायक प्राध्यापक हैं फिशरीज पॉलिटेक्निक धमधामा दाऊश्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्गमा। देवशी जी आप मन के देवती जी आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: देवती जी सबले पहले तो ये बताते हो कि प्रसंस्करण के जरूरत मछली पालन में काबर पड़ते हैं।
1: मछली में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। इसमें प्रोटीन भी अधिक मात्रा में होती है जो सूक्ष्म जीवों के लिए अच्छा भोजन बन जाता है। गर्मी मौसम में यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। मछली मरने के बाद उसके शरीर में एंजाइम की जो सक्रिय हो जाते हैं जिससे सड़न शुरू हो जाती है। अगर सही समय पर प्रसंस्करण न किया जाए तो मछली कुछ ही घंटों में खराब हो सकती है, इसलिए इसे जल्दी सुरक्षित करने के लिए हमको प्रसंस्करण करना आवश्यकता है।
0: जी ये तो आप मन बड़ सुघर बात के हो कि भाई हमला नुकसान झन हुआ है, हमला मछली पालन करत बखत सावधानी रख के हमें फायदा मिला है। अच्छा ये बताते हो कि प्रसंस्करण की हमन बात करत हन तो सबले आसान जो प्रसंस्करण की विधि है ये कौन सी?
1: मैडम सबसे आसान और सस्ता तरीका है मछली को सुखाना। इसमें मछली को साफ करके धूप में सुखाया जाता है। यह विधि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उपयोग होती है क्योंकि इसमें किसी मशीन या ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं होती है। धूप की गर्मी में मछली की नमी कम हो जाती है जिससे बैक्टीरिया नहीं बढ़ते हैं। इस विधि में मछली लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और आसानी से बाजार में बेची जा सकती है।
0: मैंने ये देखे जाए कि भाई धूप में अगर हमन सुखली मला सुखा देथन तो ओला ज्यादा वेरा तक हमन रख सकथन।
1: जी
0: अच्छा सुखाए के घलो के एक समय होत हो ना कि कितना से कितना वेरा तक ओला सुखाना है तो ये विषय में थोड़कन विस्तार ले बताते हो।
1: मछली को सुखाने में आमतौर पर 2 से 4 दिन का समय लगता है जो मौसम और धूप पर निर्भर करता है। तेज धूप होने पर मछली जल्दी सूख जाती है जबकि ठंड या बारिश में ज़्यादा समय लग सकता है। मछली को अच्छी तरह सुखाना जरूरी है नहीं तो उसमें नमी रह जाने पर खराब हो सकती है। बीच बीच में मछली को पलटना भी जरूरी होता है ताकि वह समान रूप से सूखे। सही तरीके से सुखाई गई मछली लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।
0: देवती जी हमने एक बात सुनी है कि मछली में नमक लगा के घला ओला प्रसंस्कृत करे जा सकते
1: जी,
0: तो क्या ये बात सही है और नमक लगाए ले का फायदा होते?
1: मैम नमक लगाने से बहुत ही फायदा होती है मछलियों को। नमक लगाने से मछली में मौजूद पानी बाहर निकल जाता है जिससे बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है। नमक एक प्राकृतिक संरक्षक की तरह काम करता है। यह मछली को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। इसके अलावा नमक लगाने से मछली का स्वाद बढ़ सकता है और बदल सकता है जो कुछ लोगों को पसंद आता है। यह विधि बहुत सस्ती और आसानी है इसलिए किसानों के लिए यह विधि बहुत ही उपयोगी है।
0: जी अच्छा देती जी हमन बात करते रहे कि मछली मल्ला सुखा के ज़्यादा बेरा तक हमन उला प्रसंस्कृत करके रख सकते हैं।
1: जी
0: फिर ये बताते हो कि जैसे हर काम पुता में सावधानी रखे की जरूरत पड़ते तो जब हम इला सुखाए बर रखथन तो इमा का का सावधानी रखन?
1: सावधानी रखने के लिए हमको मछली को हमेशा साफ और ऊंची जगह पर सुखाना चाहिए ताकि धूल और गंदगी न लगे। मक्खियों और कीड़ों से बचाने के लिए मछली को जाल या कपड़े से ढककर रखना चाहिए। मछलियों को एक दूसरे से थोड़ा अलग फैलाना चाहिए ताकि हवा अच्छी तरह लग सके। समय समय पर मछली को पलटना जरूरी है ताकि वह समान रूप से सूखे। अधूरी सूखी मछली जल्दी खराब हो सकती इसलिए उसको पूरी तरह से सुखाना जरूरी है।
0: देवती जी एक प्रश्न मन में आवा थे कि हम एक शब्द सुनथन ध्रुमीकरण।
1: जी
0: तो अगर हम मछली पालन के विषय में बात करन थन तो ये ध्रुमीकरण का होते?
1: ध्रुमीकरण एक पारंपरिक विधि है मैडम। वो क्या होता है उसको धुआं देके हम मछलियों को पानी रहता है उसको हम लोग कम करते हैं जिसमें मछलियों को लकड़ी में धुएं से पकाया जाता है। इसमें मछली को आग के ऊपर लटकाकर धीरे धीरे धुएं में रखा जाता है। धुआं मछली की नमी को कम करता है और उसमें मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करता है। साथ ही इससे मछली का स्वाद और खुशबू में बढ़ोतरी हो जाती है। यह विधि मछली को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के साथ साथ बाजार में उसकी कीमत को भी बढ़ा देती है।
0: जी अब बात कीमत के है तो भाई रुपया पैसा के बात जहां आते तो किसान संगवारी मन का हम हर एक मन के मन के यही विचार होते कि कमती रुपया पैसा खर्चा करके हम ज्यादा ले ज्यादा लाभ ले सकन। फिर ये जिन आप मन तरीका बता था तो ये खर विषय में बताती हूँ कि ये तरीका मन महंगा होते कि

0: इसमें कितना लागत लगे?
1: ये सभी पारंपरिक तरीके बहुत ही सस्ते और आसान होते हैं। इनमें किसी महंगे उपकरण या मशीन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो जो गांव में किसान रहते हैं वो अपने तरीके से इसको अपना सकते हैं। किसान अपने घर या खेत पर ही इन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। धूप में, नमक से और लकड़ी से जैसी सामान्य चीज़ों से ही प्रसंस्करण किया जा सकता है। इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह बहुत लाभदायक और सुलभ तरीका है।
0: जी दीति जी, अब बात करते हैं स्वाद काबर की स्वाद स्वास्थ्य और रुपया पैसा सभी मायने रखते
1: जी।
0: तो अब स्वास्थ्य की अगर बात है और स्वाद की बात है, तो ये बताते हो कि ये जिन विधि आप मन बताए हो इमा जो विधि अपना के मन मछली पालन करथन या प्रसंस्करण करथन, तो इमा सबले बने स्वाद काखर होते?
1: धूम्रीकरण में मछली का स्वाद सबसे अलग और स्वादिष्ट होता है। इसमें लकड़ी के धुएं की जो खुशबू होती है मछली में आ जाती है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाती है। कई बाजारों में धुएं से जो फीस को हम लोग मांग करते हैं, वो हालांकि स्वाद व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है। कुछ लोग नमकीन या किड़वन मछली भी पसंद करते हैं।
0: और अब अगर हम हमारे किसान संगवारी मन के लाभ या फायदा की बात करें, तो वो कैसे हमारे संगवारी मन कमा सकते हैं?
1: किसान मछली को प्रसंस्करण करके लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। इससे उन्हें नुकसान कम होता है। वे मछली को दूर दराज के बाज़ारों में बेच सकते हैं, जिससे अच्छे दाम मिलते हैं। प्रसंस्कृत मछली की मांग भी ज़्यादा होती है, खासकर सूखी और धुआं दिखाया हुआ मछली की। इस तरह किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और इसे एक छोटे व्यवसाय के रूप में अपना कर सकते हैं और इससे अपना मुनाफा कर सकते हैं।
0: जी दीति जायसवाल जी, अपन आए हमारे संगवारी मल्ला बड़ सुघर सुघर विस्तार पूर्वक ये जानकारी देव कि परंपरागत तरीका ले हमन मछली प्रसंस्करण कौन प्रकार ले कर सकता है, ये महंगा घला नहीं हुआ है। तो ये हमारे किसान संगवारी मन के फायदा खातिर आपमन बड़ सुघर सुघर घूट बताए, ये खातिर आपमन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम।
2: संगवारी हो, आज के सलाहक्रम में अभी सुनें परंपरागत तरीकों से मछली प्रसंस्करण विशेषज्ञ रहीं देवदेव जायसवाल, सहायक प्राध्यापक फिशरीज पॉलिटेक्निक धमधा, दाऊजी वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग, और एकल गोड बात करें रहीं मोनिका हर।

मनीषा देख भाई, आज ओला गोट बात करत रहे हमन हा, और वैसने आज के सलाह करम रही से है ना, यहू में जो मछली प्रसंस्करण है एक बारे में हमन हा जाने न, सुने न, है नी वैसने भाई हमार एक औ फोन इन कार्यक्रम होते मंगलवार के जेन ला हमन काय कीतन हेलो किसान वाणी, जेमा हमार संगी मन हमन ला फोन लगाते हैं, तो ओकरे से जुड़े ये जो सूचना है मनीषा तेन ला में यहां पढ़थो ना। संगवारी हो, अवैया मंगलवार 19 मई 2026 के प्रसारित होइया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय रही धान में श्री विधि अपनाए उत्पादन बढ़ाए। ये विषय में आप मन अपन जिज्ञासा उस समस्या के समाधान पाए खातिर स्टूडियो में जो हमार विशेषज्ञ रही वो है मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पांडा दुर्गले। और आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए पर हमन ला फोन कर सकते हो। हमार फोन नंबर है, पहले यह फोन नंबर है 400-3482, दूसरे यह फोन नंबर है 400-3483, और तीसरे यह फोन नंबर है 400-3484, और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। अभी जो कार्यक्रम है तेकर रिकॉर्डिंग 19 मई के ही हो ही 11:00 बज के बिहनिया 11:00

0: 11:30 बजे ले 12 बजे तक करे जाही। और ये कार्यक्रम के जोन प्रसारण है मंगलवार के ही साझा 7:30 में करे जाही। आप मन अपन जोन समस्या रही ओकर समाधान पाए पर हमार बताए जोन फोन नंबर है ओमा फोन कर सकते हो। सूचना यही तीर समाप्त हुई से।
1: संगवारी हो आप मन के फोन के अगोरा रही और संगे संग आप मन ला अगोरा है हमार आज के प्रश्न के। बेरा है कृषक प्रश्न मंच के। ता आप मन हाँ पेन उठा लो और हमार आज के प्रश्न ला लिखाओ। हमार आज के प्रश्न है मछली के प्रसंस्करण कौन से कारक ऊपर निर्भर करते। प्रश्न ला मैं एक बार और पढ़ा था। मछली के प्रसंस्करण कौन से कारक ऊपर निर्भर करते और एक सही उत्तर आप मन पाती के माध्यम ले या ईमेल के माध्यम ले हमार तीर 7 दिन के अंदर पठो दू ताकि आप मन के नाम हमन कार्यक्रम में शामिल कर पाबो। हमार पता है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com और हमार पाछू हफ्ता आजे के दिन के प्रश्न रही से विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 के प्रमुख विशेषता का रही और एकर सही उत्तर है नवा तकनीक मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान मल्ला प्रशिक्षण देना। और सही पाती पठोया संगवारी मन के नाम है ग्राम तरपोंगिले मुकेश कश्यप अंजलि मौली वेदांशी मंदाकिनी और विमल कश्यप ग्राम करहिले अनिल बघेल लक्ष्मी वैभव और वैशाली बघेल ग्राम तुलसीले शांति तरुण दामनी कल्पना ओम और मिठी सिरमौर ग्राम करेलीले थनेन्द्र साधना लक्की और खुशबू बघेल पिपरियाले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता समडेल नवापाराले मुकेश गुप्ता श्रद्धा अदिति राधे दीपक और अंकुर राघव गुप्ता कोई ग्राम भंगिटोला ले ननका राम धुर्वे जामुनबाई फिरत राम और मालती धुर्वे ग्राम भड़गा कोदवा गोड़ान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी और राहुल मरावी मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार योगेश और राहुल साहू। सही पाती पठोया जम्मू संगवारी मल्ला बहुत बहुत बधाई।
0: मनीषा देख हमार संगवारी मन तो हमार जो आज के प्रश्न है एकर जवाब हमार तीर भेजते वैसे हमार जो हलो किसान वाणी के संगे संग शुक्रवार के दिन हलो चौपाल घलो होते
1: हाँ।
0: तो संगी मल्ला यहू बता देथन जो हमार फोन इन कार्यक्रम है उमे हमार जो विशेषज्ञ आते तो आप मन बढ़ चढ़ के मा हिस्सा ले सकते हो
1: भाई है ना। सही बात है।
0: तो देख गुड बात औ करबो मनीषा फिर सुनथन ये सुघर गीत ला जेला स्वर दे हवे चतुर राम साहू कांति यादव औ गीता भट्ट मन।

0: संगवारी हो अभी सुनेन सुघर गीत जौन ला स्वर देनी से चतुर राम साहू कांति यादव और गीता भट्ट मन
1: मनीषा भाई पानी के जोन मूल्य है तेला तो जानते सच और हमारा सन किसानहा आदमी ओकर ले ज्यादा औ का जान सकते अब तक घाम में बारी बखरी जाथन कोनो दिन पानी भुला जथन है देखो वे कतका लहर तहर हो जथन तो संगी हो पानी बचाना बहुत जरूरी हवे और वैसने ढंग के गाना रहिस है और एक संग ये रहिस किसान वाणी और एक प्रायोजक रहिस है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और बेरा हो गए जाए के जाए पहली बता दे काली कार्यक्रम
0: हाँ भूषण जाए के पहली बता देथन काली के कार्यक्रम काली संझा आज के सलाहक्रम में सुनबो फसलों में रोग पहचान के आसान घरेलू तरीके विशेषज्ञ हुए डॉक्टर सोनल कुमार चंद्राकर और कृषक प्रश्न मंच

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म सनम बेवफा में। गीतकार थे सावन कुमार, संगीत महेश किशोर का था।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब

0: मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मां। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
2: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम। का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पामेला चोपड़ा की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार शिवहरी, फिल्म का नाम चांदनी।

श्रेया घोषाल और पामेला जैन की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म विवाह का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप हमारी इसी सभा में रात 9:15 पर भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं अमचेरी बाई और साथी। पहले सुनिए अमचेरी बाई, राजकुमार अग्रवाल और जगदीश के स्वरों में केदार दुबे की रचना।

0: संसार बिहनिया ताकत रही थी, संसार बिहनिया ताकत रही थी।
1: कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति राजकुमार अग्रवाल के स्वर में

राजकुमार अग्रवाल के गाए इस छत्तीसगढ़ी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त तो होता है। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थे अमचेरी बाई और साथी। आकाशवाणी का

गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त तो होता है। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थे अमचेरी बाई और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में जगह बनाई। सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी में डच हॉकी कोचों की सराहना की। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी और संजना ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट।
2: भारत की टॉप पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गोफ सेफेई और नूरुजीदीन को 1 घंटे और 22 मिनट तक चले मुकाबले में 19-21, 22-20, 21-16 से हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल का टिकट कटाया। मलेशिया जोड़ी ने दमदार आगाज किया और उतार चढ़ाव भरे पहले गेम को 21-19 से जीत लिया। वहीं दूसरा गेम और भी ज्यादा नाटकीय रहा, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सात्विक और चिराग ने पहले गेम के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और संयम दिखाया। 20-20 से बराबर पर आने के बाद सात्विक ने एकदम सही जगह पर शॉट मारकर जरूरी पॉइंट बनाया और दूसरा गेम 22-20 से जीत लिया। इसी लय को बरकरार रखते हुए जोड़ी ने आखिरी गेम में अपना दबदबा बनाए रखा और गेम को 21-16 से जीतने के साथ ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: संजीव, 2024 में इस जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में मैच डबल्स खिताब जीता था, उसके बाद चाइना ओपन में एक फाइनल का सफ़र है, उसके बाद ये फाइनल नसीब हुआ है। एक कदम की दूरी है अब खिताब से।
1: जी बिल्कुल, और जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने यहाँ पिछले टूर्नामेंट में खिताब जीता था, यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और जिस तरह से खेल रहे हैं, खासतौर पे अगर आप सेमीफाइनल की बात करें, हालांकि हर एक राउंड में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है, बट सेमीफाइनल में अगर आप देखें तो डाउन थे, पहला गेम हार चुके थे और उसके बाद वहां से वापसी करते हुए उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया और जिस तरह से, जैसे तीसरे दूसरे और तीसरे गेम की बात करें, खासतौर पे दूसरे, पहला गेम तो
0: बराबरी का रहा काफी,
1: 21-19 से हार गए, लेकिन दूसरे में 22-20 से जीते और तीसरा का स्कोर 21-16 रहा। तो मैं ये स्कोर बता के ये मतलब बताना चाह रहा हूँ कि फिटनेस को लेके इनका हमेशा इशू रहा है। हाल के 1-2 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो फिटनेस की समस्या से जूझते रहे हैं दोनों, नहीं पार्टनर में अगर एक भी कोई कभी समस्या हुई तो वो दोनों जोड़ी पर, हाँ, उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो एक गेम डाउन होने के बाद वापसी करते हैं, दूसरे गेम में भी फाइट करते हुए 22-20 से जीतते हैं, तो ये बताता है कि फिटनेस का लेवल क्या है अभी और किस तरह से उन्होंने फिटनेस हासिल कर ली है। खेल में तो कभी वर्ल्ड नंबर वन जोड़ी रह चुकी है, खेल में तो कभी इनके सवाल ही नहीं था कि उनका खेल डाउन है या आउट ऑफ फॉर्म है, फिटनेस का इशू हमेशा रहा था। बट ये जो स्कोर लाइन है, मैं इस बता के इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जबरदस्त फिटनेस है। अब उनके सामने फाइनल में लियो कर्नांडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी है, ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, दोनों थॉमस कप डबल्स में जीत चुके हैं और ओवरऑल कई खिताब जीत चुके हैं और इनके पास भी काफ़ी अनुभव है और देखना है कि किस तरह का इस मैच में इनका खेल रहता है। दोनों की उम्र थोड़ी कम है इनसे, एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते।

0: बट ओवरऑल जिस लैब दिख रहे हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, हम खिताब जीतने की उम्मीद कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि ये जोड़ी इस साल की और इस सीजन के अपने पहले फाइनल को एक अच्छे खिताब में कन्वर्ट करती हुई नजर आए। रियाद में सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश कुजूर और मोहम्मद अफसल ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट में अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। भारत ने एक रजत और दो कांस्य पदक भी अपने नाम किए।
2: सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय धावकों की रफ्तार का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश ने पुरुषों के 200 मीटर रेस 20.77 सेकंड में पूरा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.44 सेकंड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। उनके साथ ही भारतीय स्प्रिंटर गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर का कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 800 मीटर रेस में 1:48.24 सेकंड के समय के साथ भारत के मोहम्मद अफसल ने देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक पुरुषों की 4x100 मीटर रिले टीम ने जीता। भारत के लिए एक और कांस्य पदक 110 मीटर बाधा दौड़ में एम कृषिक ने 13.90 सेकंड के समय के साथ अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: संजीव, सभी खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है रियाद में, लेकिन एक नाम भारतीय एथलेटिक्स में थोड़ा धीरे से लेकिन अपनी रफ्तार से बहुत तेजी से सामने आ रहा है, अनिमेश कुजूर। छत्तीसगढ़ से आते हैं, 100-200 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। कितनी संभावना है इस खिलाड़ी में नजर आती है, जो कि स्प्रिंटर अब तक भारत में बीते कुछ समय से एक ब्रेक लगा हुआ था, ये खिलाड़ी आया है।
0: देखिए, ये नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम है और रेगुलर ये क्लॉक कर रहे हैं, 10.2 है, 10.4 है, तो इस तरह से लगातार वो, हालांकि जो रिकॉर्ड है 10.18 है। अब हमें इंतज़ार है कि कब एक कोई भारतीय 10 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़े। 200 में भी इनकी टाइमिंग अच्छी है और एशियन गेम्स में हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि एशिया में चाइना के, जापान के, इवन कुछ और देशों के ऐसे एथलीट हैं जो 10 से कम दौड़ने वाले हैं, बट यहाँ पर वो दिन वो होता है कि वो दिन किसका अच्छा रहता है। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम एशियन लेवल पे एक अच्छे एथलीट के तौर पे उभर रहे हैं। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मेहनत भी करते हैं और लगातार ये उस टाइम को मेंटेन किए हुए हैं। अब उनके जहन में भी ये बात होगी कि किस दिन हमारा 10 सेकंड से कम टाइम निकले। फिलहाल उम्मीदें जो आप कह रहे हैं कि उनसे क्या हम उम्मीद करें, तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है और अगले एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का थोड़ा टफ होता है 100 मीटर 200 मीटर, बट एशियन गेम्स में मुझे लग रहा है कि वहाँ हमारी निगाहें रहेंगी कि वो पोडियम पे आए।
1: जी बिल्कुल, उनको पोडियम में देश देखना चाहेगा, जो कि उनके 9 सेकंड उतने ही होंगे जो नीरज चोपड़ा के लिए 90 मीटर का एक बेंचमार्क था, और पदक में बदलते हुए ये खिलाड़ी आपको आने वाले समय में नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान आज नीदरलैंड्स में क्रिकेट की चर्चा की और नीदरलैंड्स क्रिकेट में भारतीय समुदाय के योगदान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की और नीदरलैंड्स ने T20 विश्व कप में भाग लिया और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया।
3: अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरु और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को ट्रेनिंग देने वाले डच कोचों का भी उल्लेख किया।
3: भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, इसमें कोच मरीन का अहम रोल है।
1: हम हॉकी की बात तो अक्सर करते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक इमर्जिंग टीम है नीदरलैंड्स, नो डाउट। वर्ल्ड कप में जिस तरह का वो भारत और नीदरलैंड्स का मुकाबला था, भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की थी, लेकिन अच्छा खेल और अच्छी खेल भावना नजर आई।
0: हाँ बिल्कुल, और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया

0: जाहिर तौर पे ये जो हम देखते हैं कि नीदरलैंड्स हॉकी में जबरदस्त उनका रिकॉर्ड रहा है,
1: जी
0: पिछले कुछ 2-3 दशकों से, 4 दशकों से तो नीदरलैंड्स की टीम ने हॉकी में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, और खिलाड़ी ही नहीं बल्कि वहाँ से अच्छे अच्छे कोचेज निकले हैं, और उन्होंने सही कहा कि उनकी देखरेख में भारतीय टीम, उन्होंने नाम भी लिया विमेंस
1: जी
0: टीम
1: बिल्कुल
0: के कोच का। और क्रिकेट की तो जो बात है, नीदरलैंड्स ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी टीम नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत कम है, वहाँ बहुत कम लोग हैं,
1: जी
0: बाहर से जो जाके लोग वहाँ बसे हैं इधर भारतीय उपमहाद्वीप के, वही खेलते हैं, वहाँ के भी लोकल अब खेलने लगे हैं, और फाइट देती है वो टीम,
1: जी
0: तो इसकी चर्चा उन्होंने की, और जाहिर तौर पर उनको इससे एक प्रेरणा मिलेगी वहाँ के क्रिकेट प्लेयर्स को।
1: जी बिल्कुल। और क्रिकेट की बात हुई है तो बात अब आईपीएल की भी कर लेते हैं, जहां कोलकाता में इस समय गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बना लिए थे। इससे पहले लखनऊ में कल मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा कर चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की राह को थोड़ा और मुश्किल बना दिया। एक रिपोर्ट।
2: प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार 3 जीत का क्रम तोड़ दिया। लखनऊ में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए। टीम के लिए कार्तिक शर्मा ने 42 गेंद पर सर्वाधिक 71 रन की पारी खेली थी। एलएसजी के लिए आकाश महाराज ने 3 विकेट लिए। 188 रन के लक्ष्य को मिशेल मार्श की 38 गेंद पर 90 रन की तूफानी पारी ने एलएसजी ने बेहद आसान बना दिया, और टीम ने 20 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। जोश इंग्लिश ने 32 गेंद पर 36 और निकोलस पूरन ने 17 गेंद पर नाबाद 32 रन बनाकर मार्श का बखूबी साथ दिया। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद सीएसके अंक तालिका में 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि एलएसजी अंतिम और 10वें स्थान पर है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब लखनऊ इस टूर्नामेंट से एक अच्छा फेयरवेल लेके विदा होना चाहता है अगले सीजन के लिए, लेकिन इस फेयरवेल ने चेन्नई की राह थोड़ी मुश्किल कर दी।
0: हाँ बिल्कुल, चेन्नई के पास अब जो अब बाकी के 2 मैच बचे हैं, तो ये टीम जीतती है तो 16 अंकों तक पहुंचेगी। फिर भी देखना है कि बाकी टीमें और जो ऊपर हैं, आरसीबी है, गुजरात टाइटंस है, सनराइजर्स है, पंजाब किंग्स है, इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर ये सारे अपने अपने मैचेस जीतने में सफल रहे तो फिर चेन्नई के लिए मुश्किल है। और फिलहाल जो आज का मैच अभी का चल रहा है वो भी काफ़ी रोमांचक हो चला है, गुजरात और केकेआर के बीच।
1: जी बिल्कुल, केकेआर के लिए कहना गलत नहीं होगा, डू और डाई है कि आज अगर आप जीत नहीं दर्ज करते हैं तो इस प्रतियोगिता में आपके लिए आगे का सफर लगभग समाप्त हो जाएगा।
0: बिल्कुल, और अगर आज गुजरात की टीम जीत हासिल करती है तो मुहर लग जाएगी एक तरह से, वो 18 अंक पहुंच जाएंगे और उनके अभी 2 मैचेस बाकी हैं, तो आप मान सकते हैं कि ये टीम पहुंच जाएगी प्लेऑफ में, जबकि केकेआर का सफर खत्म हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, तो गुजरात की नज़र होगी कि टेबल टॉप करे और कम से कम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रहते हुए अपनी टैली को समाप्त करे।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए केकेआर के लिए तो यही है कि अगर वगर में भी उनको रहना पड़ेगा, अगर वो बाकी बच्चे में अपने मैच जीतते भी हैं तो ये गारंटी नहीं है कि वो आगे चले ही जाएंगे, बट हाँ ये है कि ये जीतने के बाद उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। अभी जो मैच की स्थिति है, 15वां ओवर चल रहा है, 175 रन बन गए हैं 2 विकेट पर, रघुवंशी अंकृष रघुवंशी क्रीज पर है, और अगर ये रहते हैं तो अगले 5-6 ओवर में ये 225 तक टीम पहुंच सकती है, और ऐसे में देखना होगा कि गुजरात की तरफ जिनके पास एक से एक बढ़ के बैट्समैन हैं किस तरह वो टारगेट हासिल करते हैं। बट ओवरऑल जो अब ये ईडन गार्डन पर मुझे लग रहा है कि 1 महीने के बाद ये मैच हो रहा है, लास्ट जो यहाँ मैच हुआ था तकरीबन उसके 1 महीने बाद यहाँ पर मैच चल रहा है, और एक वहाँ जो दर्शक पहुंचे होंगे उनको एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात की टीम को भी किसी भी स्कोर पर आप कम नहीं आ सकते हैं, तो उम्मीद होगी कि आने वाले समय में एक अच्छा मैच यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। और क्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं भारोत्तोलन की। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने आज महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठा करके 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। और श्रोताओं, अब

0: समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। संजीव आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते

0: तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित

0: एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने

गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत। फिल्म सिलसिला के लिए धुन बनाई थी शिव हरि ने।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: चित्रपट संगीत में अब आइए सुनते हैं फिल्म सितारा का गीत। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार आर डी बर्मन, आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर की।

राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल ओर आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: दिल एक मंदिर है।
0: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
1: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
0: फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
2: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया।
0: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: को भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था,

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।

0: मेरे लिए।
1: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है, कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई मोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: न रोना के तू है भगत सिंह की माँ।

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,
5: तू कितना

0: नब्बे के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल तारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पर जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा

कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने

0: ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान, ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khyal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया

0: वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing